0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: आज तो वाकई में मौसम बड़ा बेईमान है आज क्या कल रात से इतनी बारिश हुई लेकिन कंप्लेंट बिल्कुल नहीं कर सकते बिकॉज वी नीड बारिश सुबह के 5:06 फ्राइडे मॉर्निंग विशिंग यू ऑल अ लवली मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें रियली होप आपकी मॉर्निंग की शुरुआत बेहतरीन तरीके से हो चुकी है ऑफकोर्स काम पर जाने वालों प्लीज बी वेरी केयरफुल अगर आप रास्ते पर हो ड्राइव सेफली ड्राइव केयरफुली एक छोटा सा मैसेज एक छोटा सा पैगाम अगर बाकी रोड यूजर्स को इत्तला करना चाहे तो देन 5499-1294-9999-2999 पर या फिर किसी का आज बर्थडे है या फिर हाय हेलो गुड मॉर्निंग बोझ जो भी कुछ आप शेयर करना चाहें नीतू आपके साथ 7 बजे तक

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:14. It's a very good morning once again. आप सभी को हरियाली और रास्ता. ऐसे ठंड के मौसम में बारिश जब होती है तो हरियाली छा जाती है. Please be very careful. कई पर क्यूपिप की ओर से आ रहे थे जोरों की बारिश. इधर थोड़ी सी थम गई है मौका में, लेकिन माइट भी कि आपके यहाँ जोरों की बारिश हो. डू लेट मी नो ऑन 5:92. अभी के लिए आपके मैसेजेस का स्वागत करते हैं. और धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति, हरक परिवार, मौदारबिया से थैंक यू. नेक्स्ट गाना आपके नाम यहाँ पर. चलिए मैं देखती हूँ कौन है. मैं हूँ जिया फ्रॉम यूनियन पार्क. नमस्कार माई डियर, प्लीज डेडिकेट अबव द गाना टू माई डैड शिवम महादेव. आज वो 42 ईयर्स के हुए हैं. उनकी पत्नी है वानी, भाई यादव, केशव, कृषिव, सब परिवार की तरफ से एंड रेडियो मस्ती टीम की तरफ से ढेर सारा प्यार और हार्दिक शुभकामनाएं. प्यारी सी ज्योति शातुबेनागस से हैं. आशनी, रेखा, सुरेखा एंड द मदर फैमिली, प्रणाम आपको भी. हेलो जी, डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू माई सिस्टर इन लॉ मिसेस मितो चतन. आप रहते हैं कहाँ से? यूनियन वेल से हैं. सभी जीतू गोई परिवार, खास तौर से चतन एंड जीतू गोई परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. नेक्स्ट गाना आपके लिए भी फैमिली है. आप आ जाओ फ्रॉम होशनुआ. इट्स पोरिंग डाउन हैविली. ओ हो, यानी कि नॉर्थ में भी जोरों की बारिश. प्लीज बी वेरी केयरफुल, स्पेशली दोज हिटिंग द रोड. ड्राइव केयरफुली, हाँ, धीरे धीरे चलिएगा. हैवी रेन एट अमोरी एज वेल. थैंक यू अब्दुल सैराबानू. हैप्पी फ्राइडे टू यू टू. एंड नेक्स्ट गाना आपके लिए भी चलाते हैं. यहाँ पर है मिस्टर टोनी फ्रॉम रोजबुआ. प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड. आप कहते हैं हाँ जी, बारिश हो रही है. और आज आप कहते हैं

I'm in a competition with no one. Hmm. I've no desire to play the game of being better with anyone. मैं सिंपली ट्राई कर रही हूँ टू बी बेटर दैन द पर्सन आई वॉज यस्टरडे. दैट्स ट्रू. कभी कभी हम इस दुनिया में ना बाकी सबसे कंपटीशन में लगे हुए हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं. आप बेहतर इंसान हैं, उससे उठकर आप बेस्ट इंसान बनने की कोशिश करें तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: दिल लगता नहीं तो बस हमारे हम सफर बन जाए on 549912994.

0: एवरग्रीन सदाबहार मूवी दैट वाज एक फुल चार काउंटी मुकेश एंड लता जी की आवाजों में
1: राइज एंड शाइन स्टार्ट फ्रेश स्टे शार्प वेक अप विद द वर्ल्ड वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती.
0: Let me wish happy birthday to Sneha Lobina Voshnu, 18 years old already, and Dadi Sadhana, Dada Mukesh, Lal Machi se aapke sabhi parivar, and of course Radio Musty team ki taraf se aapko hardik shubhkamnaen. Vedita, Suriname se thand lag rahi hai, my dear. Apne aap ko dhank lijiye music ke kambal mein.

बात सो ट्रू कि मोहब्बत बड़े काम की चीज है अगर आप उसको महसूस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि मोहब्बत क्या चीज है सो मोहब्बत कीजिए प्यार बांटिए और जितने भी आपके नेगेटिव सोच है वो सब दूर हो जाएंगे 5:39 बस थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: आपका आपकी हर दुआएं बस कबूल हो जाए यही हम प्रार्थना करते हैं. 544 चलिए जी शुरुआत आपके साथ.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज जो है ना ग्रहों की चाल ये संकेत दे रही है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और आर्थिक उन्नति के नए द्वार खुल सकते हैं. जिम्मेदारियां भले ही बड़ी हुई महसूस हो लेकिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको हर चुनौती से आगे निकाल के आपको वो क्षमता है और कोई नई शुरुआत आज आपके मन में आकर आकार ले सकती है जो आने वाले समय में लाभ का कारण बनेगी.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज का दिन आपको समाज में सम्मान और पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है. आपके अनुभव आपकी समझ और आपके द्वारा किए गए कार्य लोगों की नजरों में आपकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करेंगे. यदि आप सामाजिक या सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो प्रशंसा और सम्मान मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. वैसे किसी छोटी यात्रा का अवसर भी मिल सकता है जो भविष्य के लिए एकदम फायदेमंद लाभदायक साबित होंगे.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: वेल आज का दिन आपको जीवन में संतुलन की महत्ता का एहसास कराएगा. आय और व्यय के बीच सही तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा. कुछ परिस्थितियां आपको असहज कर सकती हैं लेकिन आपकी सूझबूझ आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल देंगी. यहाँ पर आपके लिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. कार्यक्षेत्र में यदि किसी निर्णय को लेकर डिसीजन को लेकर मन उलझा हुआ था तो जल्दबाजी से बचें.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज का दिन आपको सफलता और

0: सावधानी दोनों का संदेश दे रहा है। कार्यक्षेत्र में कोई उपलब्धि आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। वही मौसम के बदलाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दैट्स व्हाई स्वयं को आप अपना ध्यान रखिएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन के मामलों में ईमानदारी और सही मार्ग अपनाना आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा। कोई काम जो लगभग पूरा हो चुका था उसमें अचानक रुकावट आ सकती है, लेकिन नो वरीज, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप में वो क्षमता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ पाएं।
1: लियो सिंह राशि।
0: वेल, आज ग्रह आपको धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाने वाली है। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव मन को बेचैन कर सकती हैं, लेकिन याद रखें कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। किसी भी डिसीजन या वादे को करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। तालमेल और बल्कि जी हाँ की आदत आज आपके लिए परेशानी कर सकती है, मानी कि अगर आप बैलेंस ना करें तो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। इसलिए ज़रूरी कार्य समय पर पूरा करें। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें क्योंकि उधार दिया गया धन वापस मिलने से देरी हो सकती है।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: आज सितारे आपको जोखिम लेने से बचने की सलाह दे रहे हैं। किसी भी ऐसे कार्य में हाथ ना डालें जिसमें अनिश्चितता अधिक हो। यदि कोई सरकारी कार्य लंबे समय से रुका हुआ था तो उसके पूरे होने के संकेत भी मिल रहे हैं। हालांकि कुछ काम अंतिम समय में अटक सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: वेल, आज सफलता आपके साथ कदम मिलाकर चलती रहेंगी। बस आपको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी जिससे आप महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने में सक्षम रहेंगे। यदि किसी सरकारी योजना में निवेश का विचार हो तो उसमें लाभ के संकेत भी मिल सकते हैं।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: ऑलराइट, आज कुछ लोग आपकी प्रगति से असहज महसूस कर सकते हैं और आपके मार्ग में बाधाएं डालने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी और आत्मबल आपको विजयी बनाकर रखेंगे। आपका व्यक्तित्व और प्रभाव लोगों के बीच अलग पहचान बनाने में आप यानी कि सहायक होगा। यदि किसी काम को लेकर लंबे समय से तनाव था तो आज उसमें राहत मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में विशेषकर आंखों का ध्यान रखें।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति साबित होगी। आपके मधुर शब्द और विनम्र व्यवहार लोगों का दिल जीत सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नए अवसर दिख सकते हैं, दस्तक भी देंगे। नौकरी या करियर से जुड़े कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा क्योंकि अनावश्यक खर्च भविष्य में परेशानी का कारण भी बन सकते हैं।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन कई अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। आपके कार्यों की सराहना होगी, आपकी पहचान मजबूत होगी। हालांकि कोई महत्वपूर्ण सौदा अंतिम क्षणों में अटक सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। संयम और धन दोनों का सही प्रबंधन आज आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: वेल, आज आपके भीतर ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का अद्भुत संचार रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और कार्यकुशलता लोगों को प्रभावित करेगी, प्रशंसा भी दिलाएगी। प्लीज वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, अभी मौसम खराब है। परिवार और विशेषकर बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है जो आपको मानसिक सुकून देगा।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: फाइनली आज का दिन खुशियों और शुभ समाचारों की सौगात लेकर आ सकता है। सुबह से ही ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो आपके मन को प्रसन्नता से भर दें। हालांकि बड़ों या किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है जिसका कारण आपकी जल्दबाजी या अत्यधिक उत्साह बन सकता है। जस्ट बी केयरफुल एंड वैवाहिक जीवन में भी धैर्य और समझदारी बनाए रखना वेरी इंपॉर्टेंट। बस आपकी विनम्रता और सच्चाई ही रिश्तों में आई दूरी को मिटाने का काम करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड

हर मौसम अपना जलवा दिखा जाता है ना, गर्मी का मौसम अलग, सर्दी का मौसम अलग, और जब बारिश होती है तो और भी मजा आता है। लेकिन हाँ, बीमार मत होइएगा, जस्ट बी वेरी केयरफुल। 5:57 छह बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। A very good morning, Sonam Bhola. Petite Rivière se heavy rain, cold, lekin acha lag raha hai. Jai Mata Di aapko Premila ji, Prendi Papa, aise bahut barish ho rahi hai aapke yahan bhi. So chali, apna khayal rakhiye, Pati Ranjit ka bhi. And good morning aapko, Kumar and Devishan family. Good morning, Kavita, saath mein hello ji. Sweetie, Kamlesh, Shishna, Yohan, Rohan, Ragini ji. Mosal Mosal Susi se.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: 6 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता। नमस्कार आपको।
6: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सुप्रभात आप सभी लोगों को। सबसे पहले हम स्थानीय स्तर की बात करते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में आने वाले युवाओं और किशोरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेषज्ञों ने इस बढ़ते खतरे के प्रति चेतावनी दी है। सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े कानून को और सख्त बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत जुर्माना और जेल की सजा दोनों बढ़ा

0: आई जाएंगी। ट्रेड यूनियन जगत ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे श्रमिकों की अभिव्यक्ति और विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने बजट बहस के दौरान वर्ष 2026-2027 के लिए कानूनी सुधारों और संविधान के आधुनिकीकरण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने शागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की प्रक्रिया में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया और कहा कि अब ब्रिटिश संसद की मंजूरी का इंतजार है। शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता का मुद्दा एक बार फिर ब्रिटेन में राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। ग्रेट ब्रिटिश पीएससी ने पूर्व ब्रिटिश मंत्री एल कॉन्स से मॉरिशस को शागोस सौंपने से पहले जनमत संग्रह और समझौते की वित्तीय शर्तों पर उनका रुख स्पष्ट करने को कहा। उभरती और दोबारा फैलने वाली बीमारियों के खतरे को देखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र के देशों ने स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया है। मॉरिशस में आज क्षेत्रीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने और साझा रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक कैंपस स्थापित करने की मांग उठी है। वहीं बजट में 2,220 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती, विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति और चिकित्सा कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा भी की गई है। और वित्तीय अपराधों की रोकथाम के क्षेत्र में मॉरिशस ने अपनी विशेषज्ञता अफ्रीकी देशों के साथ साझा की है। अध्ययन दौरे पर आए प्रतिनिधियों ने संपत्ति घोषणा प्रणाली और वित्तीय निगरानी तंत्र का अवलोकन किया है। और इस्लामी नववर्ष 1448 के 10वें दिन मुसलमान यौम अशूरा मना रहे हैं, जो इस्लाम के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं को याद करते हुए श्रद्धालु इबादत और दुआओं में शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला में राजधानी काराकास के निकट आए दो शक्तिशाली भूकंपों में कम से कम 188 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं कई देशों ने सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो, चला बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर। मौसम का हाल आम हालत, दक्षिण पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल हमारे इलाके पर अस्थिर बादलों का असर है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर सुबह के समय बादल घिर आएंगे और वर्षा होती रहेगी। कभी कभार बारिश तेज होगी और बादल भी गरजेंगे। चंद इलाकों में कोहरे छाएंगे और दृश्यता कम होगी। दिन के दौरान बारिश कम होगी पर ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होती रहेगी। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और दक्षिण पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके खुली जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं, विशेषकर बारिश के समय। प्रवाह रेखा के पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण की ओर से 3 मीटर की लहरें उठेंगी। खुले समुद्र में विशेषकर दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। दिन के दौरान बाद में समुद्र में सुधार आएगा। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। चंद जरूरी सलाह, जब बादल गरजे जनता को सलाह दी जाती है कि आप घर के अंदर रहें, खुले मैदानों में तथा समुद्र में न निकलें और पेड़ों के नीचे भी पना न लें। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर। इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। आपकी और हमारी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 बजे।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

सुबह सुबह टिप टिप बरसा पानी, बस रोमांटिक वादा है, लेकिन हाँ मौसम खराब ही हो सकता है और ज्यादा. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली आप जो काम पर जा रहे हैं, बच्चे लोग स्कूल कॉलेज के लिए जाएंगे, तो स्वेटर रेन कोट छाता वगैरह भूलिएगा मत. एंड 5499-1294 पर आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच. इस बरसाती मौसम में नीतू भी आपके साथ है 7 बजे तक. इट्स राइज एंड शाइन ऑफ कोर्स ऑन रेडियो मस्ती एंड नेक्स्ट गाना आपके नाम चलाते. अरे बाप रे बाप, इतना लंबा मैसेज. हेमलता भजन फ्रॉम पुएर्टो पिमो, कैसी है नीतू? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सो मच. मैं आपकी बेटियां हैं वर्षाली, वर्षिका, वर्षिना, ग्रांड डॉटर दिव्यांशी, युवांश और अभिनव, मेघराज, शिव, दामगी, साथ में स्वीटी है, भारती, विक्रम, सभी नेफ्यूज, नीसेस, फ्रेंड्स, स्पेशली आपके पति ऑफकोर्स, आपके भाई विक्रम एंड आपके पूरे परिवार के नाम थैंक यू सो मच यहाँ पर हमारे हम सफर बनने के लिए. रघुजना परिवार ख्याल से खास तौर से आपके नाम दूतिका एंड प्यारी सी रेखा, अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको भी. बेटा अंश पों बोजो से एंड हमारे लिए भी, ओ थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू. नमस्कार बॉम्बू से हैं धनेश्वर जी, प्यारी पत्नी है सुनीता, साथ में संजीव, निशा, मीना, ऋषि, तहान, हंसवी, दाविद परिवार, थैंक यू सो मच आपको भी. बस जब भी बारिश होती है तो मूड अलग सा हो जाता है, प्लेलिस्ट जैसे भी हो वो बदल ही जाती है. तो इस मौसम को आप एंजॉय कीजिएगा एंड केयरफुली अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलें.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: जब बारिश ऐसे होती है तभी मस्त मजा आता है ऐसे गाने सुनकर. Thank you so much. Lalita and Jeetan family jogging and listening. वैसे north में तो बारिश हो रही है ना. Please be very careful. लेकिन exercise चुस्ती दुरुस्ती भी it's very important. हेलो नीतू, रेखा हूँ मैं. आज पति सतीश राम प्रसाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप रहते हैं बेलेर. सो हार्दिक शुभकामनाएं आपकी तरफ से रेखा. बेटा अभिषय, बेटी है रक्षा, बहन कविता, मोहन, अंबिका, प्रेमिला, सब की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. मनीष अमर राजा बानी जिस एक फैमिली है खुबलाल रिव्या जोपा से वेरी गुड मॉर्निंग. Best wishes to you, Keshav and Keshni of Rodrigues. आज आपकी शादी हो रही है. शनीश, जेसिका, रविश, प्रीशा, लवशा, डियर वंस की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. जोड़ी सलामत रहे. प्रणाम जी, यहाँ पर काफ़ी जो पेरेंट्स हैं इस बारिश के चलते पूछ रहे स्कूल हैं कि नहीं. स्टेबल कनेक्टेड टू रेडियो. अगर कोई कम्युनिकेट होगा तो डेफिनेटली आप तक पहुँचाएंगे. ज़रूर साथ निभाते रहिएगा. नमस्कार जी, आप हैं अंजू लोहर फ्रॉम मोगू पॉपुलर मुसेस. आप कहती है प्लीज नेक्स्ट गाना गुजार टू माय भाभी राजवंती मोलाई ऑफ वाहोश जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. हार्दिक शुभकामनाएं मामा किसनावती, भाई गणेश, लोहर परिवार, बेटा है नितेश, बेटी नताशा, छोटे से शिवांश एंड बाबूराम लोहर मोलाई मलू एंड रेडियो मस्ती फैमिली की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. बारिश को तो आप देख पाएंगे लेकिन जो हवाएं हैं धीमे धीमे चल रही हैं या फिर तेज़ हवाएं चल रही है उनको आप महसूस कीजिएगा. महसूस करते करते हम भी पहुंच जाएंगे 6:30 के पूरे समाचार बुलेटिन की ओर. थैंक यू सो मच. सुबह के 5 बजे से आप ही हमारे म्यूजिकल हम सफर बने रहे. टेक केयर.

6:30 बजे के समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। 26 जून शुक्रवार का दिन। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में आने वाले युवाओं और किशोरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी

0: टी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेषज्ञों ने इस बढ़ते खतरे के प्रति चेतावनी दी है। सार्वजनिक सभाओं से जुड़े कानून को और सख्त बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत जुर्माना और जेल की सजा दोनों बढ़ाई जाएगी। ट्रेड यूनियन जगत ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे श्रमिकों की अभिव्यक्ति और विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने बजट बहस के दौरान वर्ष 2026-2027 के लिए कानूनी सुधारों और संविधान के आधुनिकीकरण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की प्रक्रिया में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया और कहा कि अब ब्रिटिश संसद की मंजूरी का इंतजार है। शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता का मुद्दा एक बार फिर ब्रिटेन में राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। ग्रेट ब्रिटिश पीएसी ने पूर्व ब्रिटिश मंत्री एलकॉन्स से मॉरिशस को शागो सौंपने से पहले जनमत संग्रह और समझौते की वित्तीय शर्तों पर उनका रुख स्पष्ट करने को कहा। मॉरिशस के ऊर्जा मंत्री पैट्रिक असियावादेन ने पूर्व सरकार पर पेंशन निधियों के कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-2027 के बजट में घोषित पेंशन सुधार देश की वित्तीय स्थिरता और भावी पीढ़ियों के हित में आवश्यक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला में राजधानी काराकास के निकट आए दो शक्तिशाली भूकंपों में कम से कम 188 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। बात कर रहे थे हम सुर्खियों में ड्रग्स के बारे में। सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में आने वाले युवाओं और किशोरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेषज्ञों ने इस बढ़ते खतरे के प्रति चेतावनी दी है।
1: ये प्रवृत्ति चिंताजनक है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हार्म रिडक्शन यूनिट के अधिकारी डॉक्टर नीतीश राज सुकुल के अनुसार साल 2025 में 173 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 139 थी। इससे भी ज्यादा चिंता वाली बात ये है कि ड्रग्स के शिकार नौजवानों में से लगभग 10 में से 6 सिंथेटिक ड्रग्स का सेवन करते हैं, जो आज युवाओं के बीच सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। वे बताते हैं, हमारे पास पिछले 5 सालों के आंकड़े हैं। 2021 में स्वास्थ्य संस्थाओं में 117 एडमिशंस, 2022 में 97, 2023 में 126, 2024 में 139 और 2025 में 173 भर्ती किए गए, सभी नौजवान हैं। सबसे ज्यादा सिंथेटिक ड्रग्स के मामले हैं, 25-35%, हेरोइन ड्रग्स और बाकी गांजे के मामले हैं। हम उनका साथ देते हैं, खासकर मानसिक और सामाजिक स्तर पर।
0: खबरों को आगे बढ़ाते हैं। आपको हम याद दिला देते हैं कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस समस्या को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। और आप जैसे सुन पाए, विशेषज्ञों का कहना है कि सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए जागरूकता, रोकथाम, समय पर उपचार और परिवार तथा समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को इस खतरे से बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर भी जोर दिया। सार्वजनिक जुटावों से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर जल्द ही अधिक कड़ी सजा का प्रावधान लागू हो सकता है। वित्त वर्ष 2026-2027 के बजट में सरकार ने पब्लिक गैदरिंग एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित बदलावों के अनुसार सार्वजनिक जुटावों से जुड़े अपराधों के लिए अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया गया है, जबकि अधिकतम कैद की अवधि, जी हाँ, जुर्माना 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया जाएगा, जबकि अधिकतम कैद की अवधि 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी जाएगी। इस प्रस्ताव ने ट्रेड यूनियन जगत में चिंता पैदा कर दी है। ट्रेड यूनियन नेता नरेंद्रनाथ गोपी का मानना है कि कानून को और सख्त बनाने

0: से यूनियनों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है तथा विरोध प्रदर्शनों और जन आंदोलनों को हतोत्साहित किया जा सकता है। इस पर पेश है याचना मिश्रा का विवरण।
1: मॉरिशस में वर्तमान कानून पहले ही सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों को नियंत्रित करता है। किसी बैठक या मार्च का आयोजन करने के लिए आयोजकों को कम से कम 7 दिन पहले पुलिस कमिश्नर को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए। उन्हें स्थान, समय, अवधि, आयोजकों की जानकारी और मार्च के मामले में प्रस्तावित मार्ग या रूट का विवरण देना चाहिए। पुलिस कुछ शर्तें भी लगा सकती है या किसी सभा पर प्रतिबंध भी लगा सकती है यदि उसे लगे कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा या समुदाय के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। वर्तमान कानूनी ढांचे के बारे में DSP लिडिया लाम बताते हैं।
2: L'intervention de qui tout rassemblement de 12 personnes ou plus dans l'espace public, excluant certaines conditions qui sont dûment mentionnées dans la loi.
1: किसी भी सार्वजनिक जगह पर 12 या उससे ज्यादा लोगों वाले जुटाव अवैध हैं, बशर्ते कानून में मौजूद शर्तों का पालन किया जाए। किसी भी जुटाव का आयोजन करने से पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखित अर्जी भेजनी चाहिए, जुटाव के 7 दिन पहले ही। पुलिस कुछ शर्तें रख सकती है और यदि पुलिस को लगे कि सुरक्षा को लेकर कोई भी खतरा हो तो पुलिस को इस जुटाव को रद्द करने का पूरा अधिकार है। लेकिन बजट में घोषित संशोधन के साथ दंडों को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं अधिकतम कारावास यानी जेल की सजा 4 वर्षों से बढ़ाकर 5 वर्षों का कर दिया जाएगा। नरेंद्रनाथ गोपी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये उपाय एक गलत संदेश देता है। उनके अनुसार इससे ट्रेड यूनियन की गतिविधियों और आंदोलनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वे बताते हैं, उन्होंने ऐसा करके श्रमिक संघों की गतिविधियों पर ही रोक लगा दी क्योंकि वे ऐसे जुटावों का आयोजन करते रहते हैं। अब तो ऐसा करने के लिए सेना और पुलिस का समर्थन भी प्राप्त होगा। इस प्रकार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शन करने के अधिकार के सम्मान के बीच बहस शुरू हो चुकी है।
0: मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने कल बजट पर जारी बहस में भाग लेते हुए अटॉर्नी जनरल कार्यालय की उपलब्धियों और वर्ष 2026-2027 के बजट में घोषित प्रमुख कानूनी उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के दौरान 20 से अधिक विधेयकों का मसौदा तैयार किया गया है। इनमें लॉ रिफॉर्म कमीशन एक्ट और सर्टिफिकेट ऑफ करेक्ट एक्ट भी प्रमुख हैं। गाविन ग्लोवर ने कहा कि सरकार ने संविधान के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही संसद में पेश किए जाने वाले क्रिमिनल कोड बिल में वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या फेमिसाइड को भी कानूनी प्रावधानों में शामिल किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने ब्रिटेन द्वारा शागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। उन्होंने इस समझौते तक पहुंचने की प्रमुख घटनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि अब केवल ब्रिटिश संसद में इस समझौते की पुष्टि के लिए आवश्यक विधेयक पर विचार होना बाकी है। हालांकि ब्रिटेन में इस विधेयक पर बहस की तिथि अभी तय नहीं की गई है। उन्हें सुनते हैं।
3: This is not a matter to be settled by lucky you quick draw strikes, but by patience and diplomacy. The bill did not feature in the King's speech a few weeks ago for the next parliamentary session, but it remained listed on the UK Parliament website with a date for debate to be confirmed. The proof of the pudding is, they say, in the eating. Only yesterday, the Attorney General, Lord Hermer, addressing the House of Commons Justice Select Committee, came out strongly in favor of the ratification of this treaty, and later his office issued a statement, and I quote, "The Attorney General was reflecting on the government's long-standing position, which is that the government remains committed to the agreement with Mauritius as the best way to safeguard the long-term future of the base, and continues to work closely with the US and Mauritius on the next steps. The government will bring the bill back to Parliament to be ratified as soon as practicable And for now, we can

0: continue to operate as normal, end of quote. The question, therefore, Madam Speaker, as you usually put to us, the question, therefore, is no longer whether, but it is when.
1: शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता का मुद्दा ब्रिटेन में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रेट ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्शन कमिटी पीएसी की चीफ एग्जीक्यूटिव क्लेयर ब्लीवॉन ने पूर्व ब्रिटिश मंत्री एलकॉन्स को पत्र लिखकर शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर उनका पक्ष जानने की मांग की है। एलकॉन्स ने हाल ही में ब्रिटेन के सशस्त्र बल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। गत 13 जून को द टेलीग्राफ में प्रकाशित एक लेख में एलकॉन्स ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रिटेन को अपनी शासन व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। क्लेयर ने अपने पत्र में ये भी पूछा है कि शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता के किसी भी हस्तांतरण से पहले क्या शागोस वासियों को जनमत संग्रह का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने समझौते के तहत प्रस्तावित वित्तीय प्रावधानों की उपयुक्तता पर भी सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने ये जानना चाहा कि शागोस और ब्रिटेन की संप्रभुता समाप्त करने का निर्णय क्या वास्तव में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। मॉरिशस की शागोस द्वीप समूह के ही मुद्दे पर रहते हैं। शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता का मुद्दा ब्रिटेन में, जैसे मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम की ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर बहस जारी है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। बात करें अब हम मॉरिशस की ऊर्जा के बारे में, सीबी के बारे में। मॉरिशस के ऊर्जा मंत्री पैट्रिक असियावादेन ने पूर्व सरकार पर पेंशन निधियों के कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-2027 के बजट में घोषित पेंशन सुधार देश की वित्तीय स्थिरता और प्रभावी पीढ़ियों के हित में आवश्यक कदम है।
0: Nous devons avoir également le courage de reconnaître une réalité qui s'impose à nous.
2: हमें अपनी समक्ष खड़ी सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। नॉन कंट्रीब्यूटेबल पेंशन प्रणाली आज ऐसे मोड़ पर है जब उसके अस्तित्व, उसकी कारगरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि हम इसी प्रणाली पर अड़े रहे, बिना बदलाव, बिना सुधार, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ जाएंगे? डॉक्टर नवीन राम गुलाम हमारे या हमारे बच्चों के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का सोच रहे हैं। इसी कारण मैं कहता हूं कि देश की बागडोर संभालना आसान काम नहीं।
0: C'est pour cette raison que je dis que gouverner c'est pas facile.
1: स्वास्थ्य संबंधी खतरों से सुरक्षा के लिए सीमाएं रक्षा की पहली पंक्ति मानी जाती हैं। क्षेत्र में उभरती और पुनः फैलने वाली बीमारियों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी उद्देश्य से 22 से 25 जून तक मॉरिशस में हिंद महासागर आयोग द्वारा आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला में विशेषज्ञों, स्वास्थ्य अधिकारियों और सीमा नियंत्रण सेवाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान स्वास्थ्य जोखिमों की रोकथाम, समय रहते पहचान और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। हिंद महासागर आयोग के महासचिव डॉ. इब्राहिम नोबेया ने कहा कि एबोला, चिकुनगुनिया और हंटा वायरस जैसी बीमारियां आयोग के सभी सदस्य देशों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने इन स्वास्थ्य चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने और रोकथाम के लिए साझा क्षेत्रीय रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आश्री बेचू की रिपोर्ट पर सुनते हैं डॉ. इब्राहिम नोबेया को, जिनसे उनसे आशी बाचू ने बात की। विवरण याचना मिश्रा का है।
3: या certaines maladies qui ne connaissent pas les frontières. Donc nous devons nous prémunir.
2: कुछ बीमारियां सीमाएं नहीं देखती हैं, बचाव जरूरी है। ऐसी बीमारियों का संबंध सभी सदस्य देशों से है। हमने अनुभव बांटा और साथ मिलकर सोच विचार किया कि कैसे इन बीमारियों से बचा जाए।
3: Comment on peut aborder, comment on peut se prémunir contre ces maladies.
1: सतर्कता केवल यात्रियों तक ही सीमित नहीं है, पशु और पशु उत्पाद भी बीमारियों का प्रसार कर सकते हैं। महामारी वैज्ञानिक रानी और प्रतिक्रिया विशेषज्ञ डॉक्टर लोवना विगाप्पा मांगू के अनुसार पशु स्वास्थ्य और पशु उत्पादों से

0: मंदिर जोखिमों की मजदूर की मजबूत निगरानी की कमी खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है और महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है. उनको सुनते हैं.
1: कुछ मवेशी लाए जाते हैं और यदि एक बीमार हो तो सभी मवेशी संक्रमित हो सकते हैं. कई फार्म तक ये फैल सकती हैं, कई जगहों तक ये बीमारी फैल सकती हैं. उन्हें मारना पड़ता है जिससे आर्थिक नुकसान होता है और खाद्य सुरक्षा कम होती है. इसी कारण सीमाओं पर निगरानी बढ़ाना ज्यादा जरूरी है.
0: नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि राम नौजादिक का कहना है कि नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित कैंपस की स्थापना अब समय की आवश्यकता बन गई है. उनके अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और प्रशिक्षण मानव संसाधन तैयार करने के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टरों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा में बनाए रखने के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां और सुविधाएं उपलब्ध करानी जानी चाहिए. ये मांग ऐसे समय में सामने आई है जब बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 2220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है. सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी है वहां विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी. इसके साथ ही चिकित्सा और नर्सिंग अफसरों के लिए अधिक विशेषीकृत प्रशिक्षण यानी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कार्यक्रम भी शुरू की जाएगी. राम नौजादी को सुनते हैं जिनसे बात की शबनीज उजिया वाइदाली ने.
1: नर्स मॉरिशस में काम करने के लिए उत्सुक नहीं है. वे यूरोप या न्यूजीलैंड में काम करना चाहती है. मैंने साफ साफ कहा था कि एक कैंपस या स्कूल ऑफ नर्सिंग कायम करना चाहिए था. सभी फैकल्टीज के साथ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था. क्या एक डॉक्टर को एक सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव से कम पगार मिलना चाहिए? हम आय की सीमा को नहीं देख सकते हैं. एक स्वास्थ्य आयोग का गठन किया जाना चाहिए. एक व्यक्ति को डॉक्टर बनाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, खासकर पढ़ाई में. अब डॉक्टर को 50 से 60 हजार रुपए तक का ही पगार मिलता है. दो नर्स 50 मरीजों को संभाल रहे हैं, उसी उपकरण उसी पलंग पर जो पुरानी हो चुकी है. एरिया हेल्थ सेंटर में डॉक्टर आधे दिन के लिए ही आते हैं. प्रशिक्षण जरूरी है. डॉक्टर को इंसेंटिव्स दिया जाना चाहिए अस्पताल में काम करने के लिए. एक स्वास्थ्य आयोग का गठन किया जाना चाहिए. पगार का स्केल बढ़ाना चाहिए ताकि डॉक्टर भी ये काम करने के लिए प्रोत्साहित हो, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र में.
2: कमीशन ला सांते कि सेला पेय एन लुट ला पेय कि अटिरे प्लस रेंट डन ले सर्विस पब्लिक.
0: मॉरिशस ने संपत्ति घोषणा और वित्तीय अपराधों की रोकथाम के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता अफ्रीकी देशों के साथ साझा की है. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बुधवार 24 जून को अपने रिजवी के मुख्यालय में अफ्रीका के कई देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. इस प्रतिनिधिमंडल में बुर्किनाफासो, माली, कोमोरो, मडागास्कर, केप वर्दी और कोंगो लोकतंत्र गणराज्य के प्रतिनिधि शामिल थे जो अध्ययन दौरे के तहत मॉरिशस की प्रणाली का अनुभव प्राप्त करने पहुंचे हैं. प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस की उन विभिन्न संस्थाओं का भी दौरा करेगा जो वित्तीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई और निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाती है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से आयोजित इस पहल के माध्यम से प्रतिनिधियों को मॉरिशस में संपत्ति घोषणा से संबंधित कानूनी ढांचे तथा निगरानी और नियंत्रण तंत्र को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला. ये दौरा एफसीसी के लिए वित्तीय अपराधों की रोकथाम के क्षेत्र में मॉरिशस के अनुभव साझा करने और इस दिशा में कार्यरत अफ्रीकी संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने का भी महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ. इस संबंध में एफसीसी की डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की एक्टिंग हेड अश्विना रंगासामी पसुआमेन ने विस्तृत जानकारी दी.
1: मॉरिशस ने कानून में बदलाव, डिजिटलाइजेशन, विरासत के डिक्लेरेशन में पारदर्शिता आदि के माध्यम से अपनी प्रणाली कैसे मजबूत की, इस पर हमने अपना अनुभव साझा किया. अन्य देशों ने अपनी प्रणालियां कैसे ठोस की, इस पर भी हमने सीखा. इस फोरम में हमने एफसीसी के प्रति अपनी कटिबद्धता दोहराई. साथ में हमने समावेश, ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार तथा अन्य वित्तीय अपराधों के खिलाफ संघर्ष को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
3: La transparence et surtout la lutte contre la corruption et tout man crime financier.
0: मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर

0: के चार सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस्लामी नववर्ष 1448 के 10वें दिन दुनिया भर के मुसलमान यौम अशूरा मना रहे हैं। अशूरा का दिन इस्लाम के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि इस दिन कई महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी जिन्हें श्रद्धालु श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत, दुआ और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हमारी टीम पोर्टलिस के सुबाची परिवार से मिला और अशूरा के महत्व तथा उससे जुड़ी परंपराओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। सुमेरा अकबरी की ये रिपोर्ट।
1: खानदान की दीगर मेंबरान इस अहम तारीख की नियामतों से मुस्तफीद हो रही है। मुहर्रम के इस 10वें दिन को यौम आशुरा कहा जाता है। शमीमा फजर से पहले उठी हैं और रोजे से हैं।
2: मेरी ज़िंदगी में यौम आशुरा की बहुत बड़ी अहमियत है। सिर्फ ये एक कहानी नहीं है, एक चीज़ जो हो चुका है ये सिर्फ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है मेरे स्पेशल मेरी ज़िंदगी में। इन दिनों में मैं सबसे पहले एजुकेशन को फैलाती हूँ, औरतों में मैसेज को फैलाती हूँ जो मैसेज कुरान का है, हदीस का है, और दूसरा यह है कि मैं रोज़ा रखती हूँ। तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं रोज़ा रखती हूँ, कुरान के रिसिटेशन करती हूँ और ज़िक्र करती हूँ, फैमिली के साथ बैठकर हम अज़कार करते हैं।
1: हज़रत मोहम्मद के हदीस के हवाले से ये रोज़ कलीमुल्ला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जीत का अक्कास है। सेंटर डे डॉक्यूमेंटेशन सुर इस्लाम के सदर यूसुफ जुमन बताते हैं, सामने समुंदर था, बीच में मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल और उनके पीछे फिरौन और उसकी फौज थी, हजारों फौजी थे। ये देखकर बनी इसराइल के लोगों ने मूसा से कहा कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं बच पाएंगे। हजरत मूसा ने कहा कि मेरा रब मेरे साथ हैं और वो मेरी रहनुमाई करेगा। अल्लाह ने उनसे कहा कि तुम अपनी लाठी से समुंदर को छू लो। उन्होंने रब के फरमान पर ऐसा ही किया और समुंदर के दो टुकड़े हुए। उनके गुजरने के बाद जब फिरौन और उसकी फौज आ रहे थे तो वो सब गर्क हो गए। दुनिया भर के मुसलमान यौम आशुरा पर हजरत मूसा की याद में दो या तीन रोजे रखते हैं।
0: बात करें हम फुटबॉल विश्व कप 2026 के बारे में। आपको कल रात 12 बजे यानी कि रात 12 बजे के खेले गए मैचों के बारे में थोड़ा बात करें, उनके स्कोर के बारे में बात करें। ग्रुप ई में एक अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। 12 बजे रात को खेले गए मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को बुरी तरह हराया यानी कि 2-1 के स्कोर से, और आइवरी कोस्ट ने क्यूरासाव को हराया 2-0 यानी कि 2-0 के स्कोर से। और इसी ग्रुप में जो पहला क्वालिफाई टीम हुआ है वो है जर्मनी और फिर है आइवरी कोस्ट, और बेस्ट थर्ड श्रेणी में इक्वाडोर भी राउंड 16 के लिए क्वालिफाई हो गया है। सुबह 3 बजे खेले गए मैच में ग्रुप एफ में नेदरलैंड ने चुनीजिया को 3-1 के स्कोर से हराया है। जापान और स्वीडन ने ड्रॉ किया और इसमें राउंड 16 के लिए नेदरलैंड पहला, दूसरा जापान और बेस्ट थर्ड के लिए स्वीडन क्वालिफाई हुआ है। अभी जो मैच जारी है ग्रुप डी में पैराग्वे अभी खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फिलहाल स्कोर 0 है, और चुनीजिया ने यूएसए को हराया 2-1 के स्कोर से। याद रखिए इसमें राउंड 16 के लिए यूएसए पहले से ही क्वालिफाई हो चुका है। और बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंपों में व्यापक तबाही मचाई है। अब तक कम से कम 188 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि राहत एवं बचाव दल ढही हुई इमारतों के मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हुई है। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार पहला भूकंप रिक्टर

पैमाने पर 7.2 तीव्रता का था। इसके एक मिनट से भी कम समय बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। ये भूकंप USGS के भूकंप अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1900 में वेनेजुएला के तट के निकट 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसे सैन नोसिनो भूकंप के नाम से जाना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया भूकंपों में से एक वर्ष 1900 के बाद देश में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल है। अधिकारियों के अनुसार कई इमारतें क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो गई है, जिससे जनहानि बढ़ने की आशंका हुई है और राहत एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और सहायता कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। पढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे इलाके पर अस्थिर बादलों का असर है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर विशेषकर बारिश होगी। कभी कभार बारिश तेज होगी और बादल भी गरजेंगे। चंद इलाकों में कोहरा छाया रहेगा और दृश्यता कम होगी। दिन के दौरान वर्षा थोड़ी थम जाएगी, पर रह रहकर ऊंचाइयों पर बारिश होती रहेगी। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होगी। हवा पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके खुली जगहों पर बारिश के समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण की ओर से जुआर उठेंगे जो 3 मीटर के होंगे। खुले समुद्र में विशेषकर दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। बाद में दिन के दौरान समुद्र लगूनों में उसकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। चंद जरूरी सलाह, जब बादल गरजे तो जनता को सलाह दी जाती है कि आप घर के अंदर रहें, खुले मैदानों में, समुद्र में तथा पेड़ों के नीचे आप पना न लें। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरी समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल पर हमारे सहयोगी कादर का भी। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, सुन पाएंगे शुभ समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

शुभ समाचार सुनिए। नेहरू रोड पुचिराफ्री में, नेहरू रोड पुचिराफ्री में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आनंदनी दर्शन, श्रीमती आनंदनी दर्शन जिन्हें पैदाश नाम कालिका, जिन्हें आनंदनी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ ही आज दिन के एक बजे उनके पति गिरजानंद दर्शन के घर पुचराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल पुचराफे की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। एवेन्यू जॉन कैनेडी वाकुआ में, एवेन्यू जॉन कैनेडी वाकुआ में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पार्वती बेसे, श्रीमती पार्वती बेसे पैदाश नाम एनान, और जिन्हें सरोत्य के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11 बजे उनके घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे में, महात्मा गांधी रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री रमेश चुरामन, श्री रमेश चुरामन जिन्हें पोलसन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर लेस्पेरेंस त्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। मेलिश स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड में, मेलिश स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री सतीश लाल बिहारी, श्री सतीश लाल बिहारी जिन्हें सीताराम दास के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज उठाई जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। उनके बेटे मनवीर सिंह लाल बिहारी के घर से समय

के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। अकेथलीन बगामिया रोजबेल में, अकेथलीन बगामिया रोजबेल में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड की श्री राजी सिंह सिबा जिन्हें राजेश ताइयो के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके भाई जयराज सिबा के घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन चुड़िया 1 PM। टागोर रोड नुविया मिल्ट्रियोली में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड के जनाब मंसूर अफजल उलियाओ इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज सुबह 10 बजे इनके भाई अहमद उलियाओ के मकान नुविया मिल्ट्रियोली से उठाकर दफनाने के लिए प्रेंदीपापाई का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल चुड़ी अट्ठा नहीं है। मेफ्लावर स्ट्रीट ग्रांड पॉइंट ओपीमा में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवयानी तिलकधारी पैदाशम सिगन और जिन्हें देवयानी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनके बेटे अनूप तिलकधारी के घर ग्रांड पॉइंट ओपीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट ओबीश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। रायरो डीप रिवर में 93 साल के 93 ईयर्स ओल्ड के श्री बेवसन अपा जिन्हें भीम अपा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे रत्नाजी अपा के घर डीप रिवर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाजिलो ओलिविया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन चुड़िया 10 AM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री सुलेश गोकुलक जिन्हें सुलेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो SSR अस्पताल में अटेंडेंट थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी उनकी पत्नी माला गोकुलक के घर मौलाशो से उठाकर इस दोज की शमशान भूमि ले जाएगी। समय और दिन के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। लारी कुवान क्यूपिप में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री पंसामी रासेन जिन्हें कुमारन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे उनके घर क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9 AM। रामसुंदर लेन सोलफेरिनो नंबर तीन वाकुआ में 53 साल की 53 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ईश्वरी जालिम पैदाश नाम आगाची और जिन्हें गीता के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके पति राजेश जालिम के घर सोलफेरिनो वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बैलेंस सोलफेरिनो नंबर 5 वाकुआ की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। विक्टोरिया लेन रोशनो में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री संजीव ओरिसिंकाला अपादू जिन्हें संजीव के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनकी माँ राधिका अपादू के घर रोशनों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM। 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री दीपनाथ अलोल जिन्हें शैलेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे मोगा फ्यूनरल पुचित रिवियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। चतरगुन लेन लिस्कालिए में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांताबाई कुसनिया गणेश पैदाश नाम कुसनिया और जिन्हें शांता के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके बेटे मोहन गणेश के घर लिस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासेकारांग लिस्काली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। तमिल टेम्पल रोड लाग्रमो सेंट पियर में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सारादम्बाल मुचिया पैदाश नाम मुचिया और जिन्हें देवी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे उनके बेटे सदासिवेन मुचिया सिवेन के घर लाग्रमो सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोंसा सेंट पियर की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: Good Beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: Yes, 26th of June और आज एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है दिन की बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है भाई। ऐसा है कि बारिश की बूंदें और ठंडी हवा और लगता है कि आज रोड्स पर ट्रैफिक भी बहुत कमाल का होने वाला है, इसलिए घर से 5-10 मिनट पहले ही निकल लीजिए और फिर देखिए साहब थोड़ी तो कसरत होगी लेकिन फिर भी असर पड़ ही जाएगा। सो ड्राइव सेफ एंड पेशेंस को अपना बेस्ट को पैसेंजर जो बना लें। 26th of June, आज बर्थडे है अर्जुन कपूर का। सो अर्जुन कपूर के साथ अपना बर्थडे मना रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू सेंड इन योर मैसेजेस 5491294 पर और मुझे बताइए कि किसको आज सरप्राइज कर सकते हैं। और वहीं पर आज है वर्ल्ड ड्रग डे, यानी कि एक छोटी सी याद कि हेल्दी चॉइसेस और पॉजिटिव कंपनी ही लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो चलिए इस मॉर्निंग के अंदर जहाँ पर बारिश खुलकर हो रही है, खुलकर जीते हैं जिंदगी को भी म्यूजिक के साथ।
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: चलिए आवाज थोड़ा साथ नहीं दे रही लेकिन फिर भी लगे हुए हैं अपनी बातें करने में और यहाँ पर किसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशल डे तो बनाएं और किसी को लेकर रेडियो पे चले आए। चल देखते कौन है हमारे साथ। हेलो
3: हेलो। हाँ बोला।
2: अरे नमस्ते।
3: हाँ नमस्ते। से क्या?
2: अच्छा आज तो हलवा पूरी और साथ साथ में खीर क्या क्या पकने वाला है? अमृता जी।
3: हाँ बेटा बोला।
2: अच्छा पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा मैसेज।
3: हाँ

0: रेडियो मस्ती।
1: तो दादी जी आपको बहुत सारा प्यार हमारी पूरी टीम की तरफ से, और 74 साल के हो गए आप।
2: हाँ
1: तो आज क्या प्लान है दादी, क्या करने वाली दादी?
2: आज लड़का लोग आए बेटा, सांच के लड़का लोग आई हम सब पका के देवेला खाए के लड़का हुए लोग नहीं सकीला पकाए बेटा।
1: अरे अरे अरे अरे देखिए सबसे बड़ा प्यार और ये गिफ्ट यही होता है कि पूरी परिवार का साथ रहे, सब साथ में मिलकर रहे, ऐसे दिन को मनाएं। सो आप ऐसे ही अरे क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। सो आपको बता दें कि आपको लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से मिल रहा है एक वाउचर 500 रुपए का, कांग्रेचुलेशंस। और आपको आज और कल में आकर ये वाउचर ले जाना होगा। दादी आज तो थोड़ी सी बारिश हो रही है, छतरी लेकर आने वाएंगी कि नहीं? छतरी लेकर आ जाओ आज, आज मौसम ऐसे ही हो रहा है ना, थोड़ी सी बारिश हो रही है ना।
2: अच्छा
1: हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। आपके जो सन इन लॉ है अनूप, उन्होंने मैसेज भेजा और बोला कि दादी को बहुत सारा प्यार दो।
2: अच्छा
1: हाँ। चलो तो आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से दादी जी। और ऐसे अपने दिन को मनाए, जिंदगी को जिए जी भर के। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।
2: अच्छा बेटा, बहुत धन्यवाद तुम्हारा बेटा।

0: मौसम ऐसा हो रहा है बाय गॉड की आवाज़ भी साथ नहीं दे रही। लेकिन ऐसे भी कुछ टीम्स हैं जिनका लग रहा है कि सपोर्टर साथ दे रहे हैं लेकिन वो खुद का साथ नहीं दे पा रही। चलिए बात करेंगे स्पोर्ट्स की। लेट्स टेक ट्यून
1: रेडियो मस्ती। स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज
1: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: चलिए आप स्पोर्ट्स की दुनिया में एंट्री मारते हैं और आ गए अरविंद हमारे साथ देने के लिए।

0: Good morning.
1: Good morning, Apko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. FIFA World Cup 2026 के नॉकआउट राउंड में 32 टीमें 32 टीम्स होंगी। कल नेदरलैंड्स, जापान और स्वीडन एक ही ग्रुप से तीनों क्वालिफाई हुए। जर्मनी और आइवरी कोस्ट भी लास्ट 32 में गए। इक्वाडोर भी जा सकता है। ग्रुप ई में कुरासाओ को 2-0 से हराया आइवरी कोस्ट ने। जियोमांडे और सांगारे का एक एक गोल कुरासाओ को अलविदा। पहली बार वर्ल्ड कप में आए दिल जीत कर जा रहे हैं। इक्वाडोर ने जर्मनी को चौंकाया 2-1 से इक्वाडोर की जीत। फिर भी जर्मनी अपने ग्रुप में टॉप आया। इक्वाडोर के पास 4 अंक हैं जो क्वालिफिकेशन के लिए काफी हो सकता है। अगर इंग्लैंड अपने ग्रुप में पहला स्थान लेगा तो नॉकआउट राउंड में उसका सामना इक्वाडोर से होगा। ग्रुप एफ से भी 3-1 से हराया। एक ऑन गोल, फिर ब्रोबरे का एक गोल, वन हेके ने भी एक गोल स्कोर किया। इसी ग्रुप में जापान और स्वीडन के बीच मैच ड्रॉ 1-1। स्वीडन का गोल इलांगा ने स्कोर किया ग्योकेरेस के पास पर। जापान और स्वीडन दोनों नॉकआउट राउंड में पहुंचे। इस प्रकार राउंड ऑफ 32 16वें दे फिनाल में जापान का मुकाबला ब्राजील से होगा। मोरक्को का सामना नेदरलैंड से। अगर स्कॉटलैंड क्वालिफाई हुआ तो उसका सामना मेक्सिको से होगा। और फ्रांस वर्सेस स्वीडन, अगर फ्रांस अपना ग्रुप टॉप करेगा तो। ग्रुप डी के 2 मैच अभी खेले जा रहे हैं। पाराग्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच ड्रॉ है 0-0। टर्की और यूएसए के बीच अभी मैच ड्रॉ 2-2। आज ग्रुप आई के मैच खेले जाएंगे रात्रि के 11 बजे। नॉर्वे वर्सेस फ्रांस, सेनेगल वर्सेस इराक। और कल सुबह 4 बजे ग्रुप एच में केप वर्दी वर्सेस सऊदी अरेबिया और उरुग्वे का मुकाबला स्पेन से। कल सुबह 7 बजे ग्रुप जी में इजिप्ट ईरान और न्यूजीलैंड बेल्जियम। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच कल रात क्रोएशिया वर्सेस गाना, पनामा वर्सेस इंग्लैंड और संडे सुबह कोलंबिया वर्सेस पोर्टुगल, जॉर्डन का मुकाबला अर्जेंटीना से। यहां पर ग्रुप स्टेज समाप्त। संडे को ही लास्ट 32 मतलब नॉकआउट राउंड शुरू। साउथ अफ्रीका का मुकाबला कनाडा से होगा 11 बजे और सोमवार मंडे मैच ब्राजील वर्सेस जापान 9 बजे। फ्रांस न्यूज, एलियट एंडरसन मैनचेस्टर सिटी में जा रहा है। सिटी और नॉटिंगहम फॉरेस्ट के बीच सौदा तय हो गया। खबर है दाम 130 मिलियन तक जा सकता है जो एक ब्रिटिश रिकॉर्ड होगा। आर्सेनल की नजर न्यूकासल यूनाइटेड के मिडफील्डर ब्रूनो गुमारेस पर है और सांड्रो टोनाली के लिए न्यूकासल यूनाइटेड 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग मांग रहा है। टोटनहम हॉटस्पर का दूसरा बिड भी ठुकरा दिया गया। लिवरपूल जियोमांडे के लिए अभी लेप्ज़िग को 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार है पर लेप्ज़िग ने प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया। आइवरी कोस्ट के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ साथ जियोमांडे का दाम डायमंड की भांति बढ़ता जा रहा है। क्रिकेट, विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने कल बांग्लादेश टीम को हराया 5 विकेट की जीत और टीम इंडिया सेमीफाइनल के करीब है। भारतीय टीम का अगला मैच इस संडे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। अभी भारतीय महिला टीम बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका से 2 अंक आगे है। ग्रुप में से केवल 2 टीमें क्वालिफाई होंगी सेमीफाइनल के लिए। इंग्लैंड में छोटे बच्चों को बड़ों के ड्रेसिंग रूम और चेंजिंग रूम में जाना मना है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी, जो केवल 15 साल का है, उसके लिए आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के दौरान अलग प्रबंध किया गया है। आज या संडे को वैभव पहली बार के लिए टीम इंडिया के लिए खेलेगा। वो यंगेस्ट इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेगा। लेजेंड सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है। मॉरिशस की रेस्ट जुनो वेटरन टीम सेशेल्स में एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही है। सेशेल्स के 50वें इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन 50th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के तहत ये टूर्नामेंट आयोजित की जा रही है। पहला मैच इस संडे को रेस्ट जुनो का मुकाबला प्रालें इन आइलैंड से है। फिर दूसरा मैच होगा 1 जुलाई को, यह है सेशेल्स लेजेंड्स के खिलाफ। और घुड़दौड़ में मॉरिशस टेलीकॉम बाबे कप सीजन की दूसरी क्लासिक रेस 1600 मीटर में इस कल दौड़ी जाएगी। इसमें मेरिजुस, आत्माई कुमान

0: good counsel, Seluque, Underworld, Xavion, Portly, Captain Lannister, Zilmoris, Rapid Dash, or Boogalux, Bhaglenge, Emergency Acceptor, Give Me Another Chance Hai. So that's it, the latest from the sports world. I'll catch you at 8:30 for the World Cup cuisine. Till then, enjoy the music on Radio Masti. Bye bye.
1: थैंक यू सो मच अरविंद सारी स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपीए सेल्स लो ग्रानिट एंड क्वार्ट्ज प्री कासे लो लावो ला लुमिएर मॉडर्न प्री शॉक

0: છે.
1: RM2 Radio Mystery.
2: The time is brought to you by McDonald's.
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
1: Radio Musti.
4: North. South.
1: 103.5.
4: East. West.
1: 96.4.
4: Center.
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Le le hamar jaan, tu le le hamar jaan.
7: जब थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे ऐसे कार्यक्रम को. वैसे तो आपको बता दें कि 26 जून है, फ्राइडे का दिन. टाइम चेक एग्जैक्टली 8 AM.

आठ बजे के समाचार में आप सब लोग की स्वागत करल जाता है। सब लोग के नमस्ते आप प्रणाम। सबसे आगे देश के बारे में बताओ। अब जहाँ सिंथेटिक ड्रग्स के खतरा लगातार बढ़त जाता, एक चपेट में आई हुला युवा और छोटा छोटा लड़का लोग की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ते जाता। हर एगो आंकड़ा के पाछे एगो परेशान लड़का, संघर्ष करत एगो परिवार, जोखिम में परत एगो भविष्य छिपल बाटे। नशीला पदार्थ के लत नए खाली एगो एक जना के स्वास्थ्य के प्रभावित करेला, बल्कि समाज आर पारिवारिक जीवन पर भी एकर बहुत गंभीर असर पड़ेला। नशीला पदार्थ के दुरुपयोग आर अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ इस समस्या के लेके गंभीर चिंता व्यक्त कर ले हवन जा। सार्वजनिक जुटाव से संबंधित नियम के उल्लंघन पर बहुत हाली जस्ती कड़ा सजा के प्रावधान लागू होई। वित्त बरिस 2026-2027 के बजट में सरकार पब्लिक गैदरिंग एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव रखले बाटे। प्रस्तावित बदलाव के चलत सार्वजनिक जुटाव से जुड़ल अपराध खातिर सबसे जस्ती जुर्माना 25,000 रुपया से बढ़ा के ओकरा 1,00,000 रुपया यानी कि 100,000 करल जाए, जबकि सबसे जस्ती कैद के सजा के जो अवधि रहल 4 बरिस से बढ़ा के ओके 5 बरिस करल जाए। ई प्रस्ताव ट्रेड यूनियन जगत में चिंता पैदा कर ले बाटे। काहे कि ट्रेड यूनियन नेता नरेंद्र नाथ गोपी मानेलन कि कानून के आर सख्त

बनैला से यूनियन के स्वतंत्रता प्रभावित हो सकी आर विरोध प्रदर्शन आर जन आंदोलन के हताश के हतोत्साहित यानी कि जे कोई ई आंदोलन करे खोजी या प्रदर्शन करे खोजी उ लोग के निराश हो के परी ई सब जुर्माना आर कैद के अवधि बढ़ला के बाद। मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल गाविन ग्लोवर काल बजट पर जारी बहस में भाग लेलन। अटॉर्नी जनरल कार्यालय की उपलब्धि पर उबतैलन और बरिस 2026-2027 के बजट में घोषित प्रमुख कानून उपाय पर भी प्रकाश डालन। उबोलन की समाप्त भल वित्तीय बरिस के दौरान 20 से जस्ती विधेयक पर के मसौदा तैयार कर गल रहल। ई में लॉ रिफॉर्म कमीशन एक्ट आ सर्टिफिकेट ऑफ करैक्टर एक्ट भी शामिल रहल जो प्रमुख रहल। गाविन ग्लोवर ई भी बोलन कि सरकार संविधान के आधुनिकीकरण करे के निर्णय ले ली बाटे। ई भी बोलन कि बहुत हाली संसद में पर पेश करल जाए होला क्रिमिनल कोड बिल में वैवाहिक बलात्कार आर महिला लोग संगे हत्या के जो कांड होवेला ओ के कानूनी प्रावधान में शामिल करल जाए। बजट पर बहस आज दिन के यानी कि आज सांझ के 3 बजे फिनो से शुरू होई। बहस पूरा होइला के बाद कमिटी ऑफ सप्लाई के कार्य के काम शुरू होई। शागोस द्वीप समूह के संप्रभुता के मुद्दा ब्रिटेन में लगातार चर्चा के विषय बनल बाटे। ग्रेट ब्रिटिश यानी कि पॉलिटिकल एक्शन कमिटी PAC के एग्जीक्यूटिव चीफ क्लेयर बुलिवान पूर्व ब्रिटिश मंत्री एलकॉन के एगो पत्र लिख ले रहल जेकर में शागोस द्वीप समूह के संप्रभुता मॉरिशस के सौंपे के प्रस्ताव पर उनकर पक्ष जाने के मांग कर गल। एलकॉन हाल में ब्रिटेन के सशस्त्र बल मंत्री के पद से अपन इस्तीफा दे हवन। गल 13 जून के द टेलीग्राफ में निकलल एगो लेख में एलकॉन बोलन कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सुदृढ़ बनाए खातिर ब्रिटेन के अपन शासन व्यवस्था की समीक्षा करे के पड़ी। क्लेयर बुलिवान अपन चिट्ठी में ई भी पूछलन कि शागोस द्वीप समूह के संप्रभुता कोनो हस्तांतरण से आगे का शागोस वासी लोग के जनमत संग्रह के अधिकार दे के चाही। उलोग समझौता के चलत प्रस्तावित वित्तीय प्रावधान के उपयुक्तता पर भी सवाल उठैलन जा। एकर संगे उ ई भी माने जाने खोजलन कि शागोस पर ब्रिटेन के संप्रभुता समाप्त करे के निर्णय का वास्तव में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत करी कि नहीं। बात अब सीबी के बारे में। मॉरिशस के ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन ई आरोप लगैली हवन कि आगे के सरकार के कार्यकाल में देश के पेंशन निधि आर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पेंशन कोष के कुप्रबंधन करेगा यानी कि निमन से ओकर उपयोग नहीं करेगा। राष्ट्रीय सभा में काल बजट पर भइल बहस के बखत उ बोलन कि सीबी के दोनों पेंशन कोष घाटा में बाटे। उ बतैलन कि सीबी स्टाफ पेंशन फंड में 121 मिलियन मॉरिशन रुपया और सीबी मैनुअल वर्कर्स पेंशन फंड में 64 मिलियन रुपया के कमी दर्ज करेगल बाटे यानी कि पैसा कमती बाटे उ दोनों फंड में। पत्रिका सेवादेन बरिस 2026-2027 के बजट में घोषित पेंशन सुधार के बचाव करत ई भी बोलन कि प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम देश के हित में पेंशन व्यवस्था के समीक्षा के साहसी निर्णय ले ली हवन। उनकर अनुसार भावी पीढ़ी खातिर पेंशन प्रणाली के वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करे खातिर ई उद्देश्य ई सुधार के लागू करे के आवश्यक है यानी कि ई उद्देश्य से ई सुधार करे के आवश्यक है। अब नर्सिंग के बारे में बताया जाए। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि राम नौजादी का बोलन कि नर्स लोग के प्रशिक्षण खातिर एगो समर्पित कैंपस की स्थापना करे के बखत चलाल बाटे। उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य के जरूरत के पूरा करे के और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करे खातिर ई कदम बहुत जरूरी बाटे। वो आगे ई भी बोलन कि डॉक्टर लोग के सरकारी स्वास्थ्य सेवा में बना के रखे खातिर बेहतर कार्य परिस्थिति और सुविधा उपलब्ध कराए के चाहिए। ई मांग एगो ऐसा बखत पर अलबटे जब बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था में
कम करवा लोग के कमी दूर करे खातिर 2220 गो स्वास्थ्य पेशेवर के भर्ती करल जाए, उन लोग के काम पर रखल जाए। सरकार ये भी घोषणा कर ले बाटे कि जन जन क्षेत्र में विशेषज्ञ लोग की कमी बा, हुआ परी विदेशी विशेषज्ञ लोग के काम पर रखल जाए। एकर संगे चिकित्सा और नर्सिंग अफसर लोग खातिर जस्ती स्पेशलाइज प्रशिक्षण यानी कि विशेषीकृत प्रशिक्षण ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू करल जाए।

दूसरी देश के समाचार देने बढ़े से आगे आप लोगन के याद दिला देवी लाजा कि मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर के चार गो में से एक गो पवित्र महीना मानल जाला और एकर चलत इस्लामी नवबरिस नववर्ष 1448 के दसवां दिन पर दुनिया भर के मुसलमान यौमे अशूरा मनावत हवन जा और ई दिन इबादत और दुआ

0: दुआ और धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले हुए लग जा। दूसरा देश के समाचार देने बढ़ब जा। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में आज दूगो शक्तिशाली भूकंप के चलत बचाव काम अभी जारी बाटे और हुआ परी बचाव काम के चलत 188 जना की मौत की जानकारी दर्ज कर गल बाटे जबकि 1500 से जस्ती आदमी के घाव लगल बा। काराकास और तटीय शहर में ढहल सब इमारत के मलबा के नीचे फसल आदमी लोग के मदद पहुंचावल जाता। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार पहला 7.2 तीव्रता के भूकंप आल जेकर बाद कुछ ही सेकंड में 7.5 तीव्रता के एगो दूसर भूकंप आल बाटे। फुटबॉल के बारे में बतियाला जा। फुटबॉल विश्व कप जोन रात 12 बजे जोन टीम खेल गया ग्रुप ई में एगो अद्भुत प्रदर्शन लग कल इक्वाडोर जर्मनी के हरे लग पूरा से यानी कि ओके बहुत ही गोल डाल के हरैलक 2-1 से। आइवरी कोस्ट जोन बाटे ओ क्यूरासाओ के हरैलक 2-0 से और एक चलत जोन क्वालिफाई टीम बाटे आइवरी कोस्ट जर्मनी आगे और आइवरी कोस्ट पहला इक्वाडोर जोन बाटे ओ बेस्ट थर्ड यानी कि जोन तीसर का सबसे बेहतरीन टीम है ओकर श्रेणी में आल बाटे राउंड ऑफ 16 का तीर। फजीर आज 3 बजे ग्रुप एफ में नेदरलैंड चुनिजिया के हरैलक 3-1 के स्कोर से। जापान और स्वीडन ड्रॉ कर लन जा और राउंड ऑफ 16 का तीर नेदरलैंड आगे फिर दूसर का स्थान पर जापान और फिर स्वीडन आल बाटे। और आपकी याद दिला दिला जा कि तुर्की और USA जोन बाटे ओ 2-1 के स्को करलक। याद रखिए कि ई में राउंड ऑफ 16 खाते USA जोन बाटे ओ अगते से क्वालिफाई हो गल बाटे। ते ही संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भय। ध्यान से साथ दे लो का खाते धन्यवाद। संगे रह अभी सुनना अब जा मंडी की समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV.
2: आरम टूबर शोक समाचार 9 बजे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

इसलिए कहते हैं कि रोड पर दो पूरा पूरा ध्यान कहीं चली ना जाए जान इसलिए जजमान भी वे वे केयरफुल मौसम ऐसा ही स्लिपरी रोड्स एंड काफी बारिश यू आर लिसनिंग टू मॉर्निंग बीट और ये सिलसिला चलेगा 9 बजे तक

0: 92 Radio Musti. It's the weather broadcast with winners.
1: On est tous winners.
2: मौसम का हाल आम हालत दक्षिण पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रही हैं। फिलहाल हमारे इलाके पर अस्थिर बादलों का असर है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर सुबह के समय बादल घिर आएंगे और वर्षा होती रहेगी। कभी कभार बारिश तेज होगी और बादल भी गरजेंगे। चंद इलाकों में कोहरे छाएंगे और दृश्यता कम होगी। दिन के दौरान बारिश कम होगी पर ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होती रहेगी। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और दक्षिण पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके खुली जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं, विशेषकर बारिश के समय। प्रवाह रेखा के पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण की ओर से 3 मीटर की लहरें उठेंगी। खुले समुद्र में विशेषकर दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। दिन के दौरान बाद में समुद्र में सुधार आएगा। तापमान अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। चंद जरूरी सलाह, जब बादल गरजे जनता को सलाह दी जाती है कि आप घर के अंदर रहें, खुले मैदानों में तथा समुद्र में न निकलें और पेड़ों के नीचे भी पना न लें। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर।
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
3: Fin de mois. Et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. Café, produits du quotidien, entretien, vos essentiels sont là, mais moins chers. Profitez-en pour faire le plein de bonnes affaires pour toute la famille. Et ne manquez pas notre grand déstockage à Goodlands, samedi le 27 juin de 9h à 17h, avec des prix exceptionnels toute la journée. Pas oublier, Excan to pay te gagne plus points WIV.
4: On est tous Winners!
0: RM2
1: Radio Musti.

0: जिंदगी जैसे एक फिल्म की तरह है, जहाँ एक मूवी हर सीन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर सीन कुछ नया जरूर सिखा जाता है। जो बीत गया उसे कहानी बनने दीजिए, और जो आने वाला है उसे अपनी मेहनत से यादगार बनाइए। आज किसी से मुस्कुराकर मिले, शायद आपकी वही मुस्कुराहट किसी का पूरा दिन बदल दे। शिकायतों का बोझ हल्का कीजिए, उम्मीदों का आसमान बड़ा रखिए। काम छोटा हो या बड़ा, दिल लगाकर कीजिए, पहचान अपने आप बन जाएगी। याद रखिए, सूरज हर सुबह इसलिए नहीं निकलता कि कल अंधेरा था, बल्कि इसलिए कि आज एक नई शुरुआत हो सके। तो खुद पर भरोसा रखो, सफर का मजा लो और हर पल को दिल से जियो। आपका दिन खुशियों, कामयाबी और अच्छे म्यूजिक के साथ हमेशा भरा रहे, यही कामना है। आज नया दिन, शुभकामना है।
1: Avant de défis, de longues shifts, de premiers pas qui capavent sens tous audi, il y a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé First. Après tout fait une différence. Il pas une simple tasse, il y a un nouveau départ, un nouveau l'énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, ton long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.

0: Radio Musty.
1: Tu aimes jouer au foot?
2: Tu es dans un club où tu as des amis avec lesquels tu peux former une équipe d'au moins 10 joueurs?
1: Tu es dans la catégorie U13?
2: Alors inscris ton équipe U13 vite pour le tournoi Les Petits Champions organisé par Redo le samedi 4 juillet au terrain de foot de la MFA à Trianon. Pour l'inscription et les conditions de participation, dis à tes parents ou à ton coach de se rendre sur la page Facebook de Do.
1: Attention, seules les 16 premières équipes inscrites pourront participer au tournoi Les Petits Champions de Do.
2: Le samedi 4 juillet de 8h30 à 14h sur le terrain de foot de la MFA
1: à Trianon. Viens te battre pour tenter de lever la coupe de la victoire
2: et remporter des cadeaux.
1: Udo, le super-héros de tous nos plats.
3: Conditions applicables.
0: RM2
4: Radio Musty.
5: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
6: Get ready for the biggest World Cup ever.
7: 2026 FIFA World Cup.
6: पहली बार होंगी 48 टीम्स 104 मैचेस रेडियो मस्ती की टीम के साथ
7: चलिए
6: यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा और मेक्सिको
7: रेडियो मस्ती के साथ
6: वर्ल्ड कप मैगजीन
8: भैया लो साहब नहीं हो रहा अगले स्टेज के लिए कौन क्वालिफाई हो गया क्या स्कोर है क्या क्या हो रहा है व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स सब जाने के लिए बिल्कुल तैयार ये है स्पेशल आगे अरविंद कुछ स्पेशल बताने के लिए ही
9: स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन ग्रुप डी के मैच आज सुबह खेले गए मेजबान टीम होस्ट टीम यूएसए की पहली हार टर्की ने अंकल साम की टीम को 3-2 से हराया गुलर यिलमाज और एहान टर्की के स्ट्राइकर रहे ऑस्ट्रेलिया और पाराग्वे के बीच मैच ड्रो गया 0-0 द सकरूज और पाराग्वे दोनों नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई हुए दोनों के पास 4 अंक हैं जीत के बावजूद टर्की की टीम घर लौट रही है टर्की का गोल डिफरेंस -2 है केवल 3 अंक ग्रुप ई में कुरासाओ को 2-0 से हराया आइवरी कोस्ट ने जियोमांडे और संगारे का 1-1 गोल कुरासाओ को बाय बाय इक्वाडो ने जर्मनी को 2-1 से चौंकाया फिर भी जर्मनी अपने ग्रुप में टॉप आया इक्वाडो के पास 4 अंक हैं जो क्वालिफिकेशन के लिए काफी हो सकता है अगर इंग्लैंड अपने ग्रुप में पहला स्थान लेगा तो नॉकआउट राउंड में उसका मुकाबला इक्वाडो से होगा ग्रुप एफ में भी 3 टीमें क्वालिफाई हुई नेदरलैंड्स ने ट्यूनिजिया को 3-1 से हराया एक ऑन गोल फिर ब्रोब्रे और वन हे के स्कोरर रहे इसी ग्रुप में जापान और स्वीडन के बीच मैच ड्रॉ 1-1 स्वीडन का गोल इलांगा ने स्कोर किया युक्रेन के पास पर जापान और स्वीडन दोनों नॉकआउट राउंड में पहुंचे इस प्रकार राउंड ऑफ 32 16वें दे फाइनल में जापान का मुकाबला ब्राजील से होगा मोरक्को नेदरलैंड्स अगर स्कॉटलैंड क्वालिफाई हुआ तो उसका सामना मेक्सिको से होगा और फ्रांस वर्सेस स्वीडन अगर फ्रांस अपना ग्रुप टॉप करता है तो आज के मैचों पर एक नजर डालते हैं ग्रुप आई

0: में कौन ग्रुप टॉपर बनेगा आज पता चलेगा। दोनों पहले से ही क्वालिफाई है नॉकआउट राउंड के लिए। एक ड्रॉ फ्रांस के लिए काफी होगा ग्रुप टॉप करने के लिए। किलियान एम्बापे की एक तरफ, दूसरी ओर अर्लिंग हालैंड, दिमाग की बैटल। दोनों अब तक 4 गोल स्कोर कर चुके हैं। नॉर्वे ने इराक को 4-1 से और सेनेगल को 3-2 से हराया था, जबकि फ्रांस ने इराक को 3-0 से और सेनेगल को 3-1 से हराया था। फ्रांस टैक्टिकल बैलेंस और एक्सपीरियंस से फेवरेट है। खिलाड़ियों का रोटेशन होगा। अगर फ्रांस ग्रुप टॉप करता है तो नॉकआउट राउंड में स्वीडन से टकराएगा। सेनेगल वर्सेस इराक वर्ल्ड कप सर्वाइवल की बात है। ड्रॉ हुआ तो दोनों आउट। जो जीतेगा गोल डिफरेंस हाई होना चाहिए, क्योंकि केवल 3 अंक वाली टीमें गोल डिफरेंस पर क्वालिफाई होंगी। सो अर्जेंटीना, बोस्निया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, इक्वाडोर, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मोरक्को, मेक्सिको, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूएसए, पाराग्वे और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई हो चुके हैं। अभी बाकी क्वालिफाइंग स्पॉट्स आज और कल और परसों के मैचों के बाद फाइनलाइज होंगे। बेस्ट थर्ड प्लेस से 8 टीमें क्वालिफाई होंगी। और कल सुबह 4 बजे ग्रुप एच में केप वर्दे का मुकाबला सऊदी अरेबिया से होगा। यूरुग्वे का सामना स्पेन से। कल सुबह 7 बजे ग्रुप जी में इजिप्ट वर्सेस ईरान और न्यूजीलैंड वर्सेस बेल्जियम। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच वीकेंड में खेले जाएंगे। कल रात क्रोएशिया वर्सेस गाना, पनामा का मुकाबला इंग्लैंड से। संडे सुबह कोलंबिया वर्सेस पोर्टुगल, जॉर्डन वर्सेस अर्जेंटीना। संडे को ही लास्ट 32 मतलब नॉकआउट राउंड शुरू। साउथ अफ्रीका का मुकाबला कनाडा से 11 बजे और मंडे मैच ब्राजील वर्सेस जापान। सो वीकेंड में ही नॉकआउट राउंड शुरू। मुक्के लगेंगे, कुछ टीमें क्वालिफाई होंगी, कुछ बाहर जाएंगी। आना और जाना होता रहेगा, पर इन सब पर आपको जानकारियां हम लोग देते रहेंगे RM2 पर।
1: आपको बता दें कि अगर आप MBC प्ले पर इन मैचेस का आनंद ले रहे हैं तो आपको जाना होगा न्यू वर्ल्ड चैनल 1 और न्यू वर्ल्ड चैनल 4 पर, यानी कि ये दो चैनल्स हैं जहां पर मेन मैचेस दिखाए जाते हैं ये MBC प्ले के लिए। सो डोंट फॉरगेट न्यू वर्ल्ड चैनल 1 और न्यू वर्ल्ड चैनल 4, ये है MBC प्ले के लिए। कीप ऑन एंजॉयिंग द म्यूजिक, कीप ऑन लिविंग द एक्साइटमेंट वर्ल्ड कप।
2: इट वॉज द वर्ल्ड कप मैगजीन ऑन RM2 विद माइटी।
3: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: tune.
1: Traffic update.
2: मालूम है ट्रैफिक ब्रांच से और खबर आती है कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट की रिपोर्ट नहीं है और अभी जहां पर रोड थोड़ी सी स्लिपरी है तो सिटी सेंटर्स में ट्रैफिक थोड़ा रुक रुक कर वहीं पर एट द यूजुअल कंजेशन पॉइंट्स तहवूज में बात करें या फिनिक्स पर या इवन हम बात करें क्यूपेब होजल कैथबोन की तरफ थोड़ा थोड़ा रुक के ट्रैफिक बट गुड न्यूज़ कि कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट की रिपोर्ट नहीं है. टेक योर प्रिकॉशंस, डिस्टेंस मेंटेन करके, नो स्पीडिंग, नो जिगजैगिंग, ट्रैफिक कंट्रोल.

वहीं पर कुछ खबर कि पानी कहीं कहीं पर थोड़ा सा एक्युमुलेट हो गया है और वहीं पर राउंड अबाउट हो या फिर कोदो की तरफ काफी पानी नोटिस किया गया है. टेक योर प्रिकॉशंस. और मौसम के चलते गला तो हो ही रहा है.

तो जैसे बताया कि कोदो की तरफ काफ़ी पानी वाटर एक्युमुलेशन और वहीं पर तूफानी हालत है, सो इवन जो टू व्हीलर्स हैं बी वेरी वेरी केयरफुल, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, बी वेरी केयरफुल।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जी हाँ, मौसम के चलते कुछ तबीयत भी लोगों की काफ़ी ख़राब हो रही है, इंक्लूडिंग मी। ओ माय गॉड, नॉट इजी है ऐसा मौसम जहाँ पर बारिश तूफान और उसमें काम पर जाना हो, तो काफ़ी लोगों के दिमाग में आया कि पोर्टलू की तरफ क्या हालचाल है। हाँ, ऐसे ही फिसल रहा है सब कुछ। वैसे ये है कि काम तो चालू है, बट प्लीज़ टेक योर प्रिकॉशंस। वहीं पर आगे कहते हैं हेलो गुड मॉर्निंग, प्लीज़ एक प्यासा गाना स्पेशली गोज आउट टू माय गर्ल कुंजना, उनको हैप्पी बर्थडे पूरी फैमिली की तरफ से। ममाशा है डॉट विमल एंड सिस्टर श्रेया की तरफ से भी। और यहाँ पर आरती, उन्होंने कहा कि आज मौसम इतना गंदा, माई गॉड, फिनिक्स से होते हुए आगे हाईलैंड्स की तरफ ही काफ़ी ट्रैफिक होने लगा था, एंड आगे अब जाकर थोड़ा सा मौसम खुला है, ट्रैफिक खुला है। थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट्स। और कहते हैं गुड मॉर्निंग, पोरिंग डाउन हेवली एंड होशनुआ की तरफ। थैंक यू सो मच श्वेता, रविश, विशाल, लविशा है, दाखिन, अपाडू फैमिली एंड वीना आगे हमारे साथ। एंड कहते हैं कि रेडियो पर गाने चल रहे हैं, बस लवली वॉइस, ऐसा लग रहा है कि बस सुनते चल जाएँ। थैंक यू सो मच। तो चलिए, कोई अपडेट है देना चाहते हैं, डू मेक श्योर कि आप अपडेट्स देकर बाकियों को भी सतर्क करें।

जाने के वक्त अब थोड़ी देर में निर्मणी आपके साथ निभाने के लिए एंड दैट्स गोना बी अ मस्ट मॉर्निंग शो लेडीज एंड जेंटलमैन बी वेरी केयरफुल

0: बताते चलिए इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आई मिलते हैं आशिता रघु से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आशिता।
1: नमस्कार विदिता, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरिशस के अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने कल बजट पर जारी बहस में भाग लेते हुए अटोर्नी जनरल कार्य लय की उपलब्धियों और वर्ष 2026-2027 के बजट में घोषित प्रमुख कानूनी उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समाप्त हो रही वित्तीय वर्ष के दौरान 20 से अधिक विधेयकों का मसौदा तय किया गया है और संसद में पेश किए जाने साथ में इनमें लॉ रिफॉर्म कमीशन एक्ट और सर्टिफिकेट ऑफ करेक्ट एक्ट प्रमुख है। गाविन ग्लोवर ने कहा कि सरकार ने संविधान के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही संसद में पेश किए आने वाली क्रिमिनल कोड बिल में वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या यानी फेमिसाइड को भी कानूनी प्रावधानों में शामिल किया जाएगा। बजट पर बहस आज दोपहर 3 बजे फिर शुरू होगी। बहस पूरी होने के बाद कमिटी ऑफ सप्लाई की कार्रवाई आरंभ की जाएगी। और इसी सिलसिले में हम आपको याद दिला देते हैं कि 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम में मुख्य मेहमान होंगी दूरदर्शिनी रूप सुधा बसगीत। और आज वेदिता जो है आज की चर्चा कार्यक्रम में घरेलू हिंसा विषय पर चर्चा करेंगी। और आपको बता देते हैं कि दूरदर्शिनी रूप सुधा बसगीत वकील हैं, तो इसी सिलसिले में आप ये प्रोग्राम सुन पाएंगे। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि राम नौजादी का कहना है कि नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित कैंपस की स्थापना अब समय के आवश्यकता बन गई है। उनके अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। ये मांग ऐसे समय में सामने आई है जब बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 2,220 से पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। मॉरिशस के ऊर्जा मंत्री पत्रिक सेवादेन ने आरोप लगाया है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में देश की पेंशन निधियों तथा सेंट्रल एलएसटी बोर्ड के पेंशन कोषों का कुप्रबंधन किया गया। राष्ट्रसभा में

0: कल बजट पर हुई बहस के दौरान उन्होंने कहा कि सीबी के दोनों पेंशन कोष घाटे में हैं। उन्होंने बताया कि सीबी स्टाफ पेंशन फंड में 131 मिलियन रुपए मोशन रुपए और सीबी मैन्युअल वर्कर्स पेंशन फंड में 64 मिलियन रुपए की कमी दर्ज की गई है। उनके अनुसार भावी पीढ़ियों के लिए पेंशन प्रणाली की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो सुधार लाया गया है वो लागू करना आवश्यक है। और मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर के चार सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस्लामी नववर्ष 1448 के दसवें दिन दुनिया भर के मुसलमान यौम अशूरा मना रहे हैं और इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत, दुआ और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। बात करते हैं हम फुटबॉल के बारे में। कल रात खेली गई मैचों के बारे में, ग्रुप ई में कल 12 बजे अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 के स्कोर से हराया। आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को हराया है 2-0 के स्कोर से। और इस ग्रुप में जो क्वालिफाई हुआ है राउंड 16 के लिए, सबसे पहले जर्मनी है, फिर आइवरी कोस्ट और फिर इक्वाडोर जो कि थर्ड बेस्ट की श्रेणी में है। 3 बजे खेले गए मैच में ग्रुप एफ में ने ट्यूनीजिया को हराया है 3-1 के स्कोर से। जापान और स्वीडन ने ड्रॉ किया है और राउंड 16 के लिए सबसे पहले नेदरलैंड, फिर जापान और फिर थर्ड बेस्ट जो है वो स्वीडन है। और जो सुबह खेले गए मैच रहे उसमें 6 बजे खेले गए मैच में ग्रुप डी में पैराग्वे ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये गेम खेला और स्कोर रहा ड्रॉ। तुर्की ने यूएसए को हराया 3-2 के स्कोर से। और राउंड 16 के लिए हम आपको याद दिला देते हैं कि यूएसए ऑलरेडी जो है वो पहले से ही क्वालिफाई हो चुके हैं। और आज रात खेले जाने वाले मैच जो है वो 11 बजे सेनेगाल खेलेगा इराक के खिलाफ। फ्रांस जो है वो भी मैदान पर उतरने वाला है नोवे के खिलाफ। और हम आपको याद दिला देते हैं कि फ्रांस और नोवे जो है वो ऑलरेडी जो है वो पहले से ही राउंड 16 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला की राजधानी कराकास के निकट आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 188 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Well, well, Friday आ गया है और वीकेंड की खुशबू अभी से महसूस होने लगी है। आज का फॉर्मूला काफी सिंपल है, काम थोड़ा, गाने ज्यादा और स्माइल सबसे ज्यादा। गुड मॉर्निंग, इट्स Nilmani और आप कनेक्टेड हो चुके हो चियो मस्ती मॉर्निंग। तो यही पर साथ दीजिए क्योंकि कुछ ही देर में होने वाला है आपका होरोस्कोप, लाइफस्टाइल टिप्स और ढेर सारे खूबसूरत गाने। स्टे सेफ, ड्राइव सेफ अगर अभी आप रस्ते पर हो।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Well, महफिल तो सच चुकी है, बस आपके आने की देर थी और आपने वो भी पूरा कर दिया. वेलकम बैक, इट्स योर मस्टी मॉर्निंग. एंड मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग्स में हमेशा खुद को हाइड्रेट करना पड़ता है, स्पेशली सर्दी और बारिश के मौसम में. हॉट वाटर तो गजब होगा. अगर घर से निकलते ही आप भूल गए वाटर को, नो वरीज, ऑफिस में डिस्पेंसर तो जरूर होगा, वहाँ से लेना ना भूलें. हाइड्रेट योरसेल्फ. एंड अगर पानी से काम नहीं चल रहा है तो चाय या कॉफ़ी ही सही, लेकिन डू ड्रिंक योर हॉट बेवरेजेस ताकि आपका गला वर्किंग कंडीशन में रहे. हम तो यहीं पर है गर्मा गर्म गानों के साथ ही आएंगे 12 बजे तक, तो यहीं पर वाइब करते हैं साथ में. एंड ऑल्सो कुछ ही देर में लेकर आने वाले हैं आपके राशिफल को. अभी के लिए म्यूजिक को एंजॉय करते हैं. नेक्स्ट फ्राइडे को बनाते हैं फन डे.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: Yes, it's your horoscope time. वक्त हो गया है ये जानने के लिए कि आज के सितारे आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं. तो शुरुआत करते हैं with
2: Aries मेष राशि.
1: आज किसी नए आइडिया पर काम शुरू करने का सही वक्त है. कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी. लकी कलर आज आपका है रेड और नंबर है 9.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस रखिए. छोटी सी सेविंग भी फ्यूचर में बड़ा फायदेमंद हो सकती है. लकी कलर आपका है ऑलिव ग्रीन और नंबर है 6.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: कम्युनिकेशन से आज आपकी हर समस्या सॉल्व होने वाली है. दिल की बात कहने से भी हिचकिचाइएगा मत. लकी कलर आपका है स्काई ब्लू और नंबर है 5.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा. इमोशनल बैलेंस भी आपको बनाए रखना चाहिए. लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 2.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी सबको इम्प्रेस करेगी. बस ईगो को थोड़ा साइड में रखिए. लकी कलर आपका है गोल्डन येलो और नंबर है 1.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: ऑर्गेनाइज्ड रहने से आज का दिन प्रोडक्टिव बनेगा. हेल्थ को भी इग्नोर ना करें. लकी कलर आपका है एमराल्ड ग्रीन और नंबर है 8.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: रिलेशनशिप्स में अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस दोनों जरूरी होंगे. स्माइल सब कुछ आसान बना देगी, तो स्माइल करना ना भूलें. लकी कलर आपका है पिंक और नंबर है 7.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए. किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन में दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करें. लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 4.
2: सजिटेरियस धनु राशि.
1: ट्रैवल या फ्यूचर प्लानिंग का योग बन सकता है. पॉजिटिव थिंकिंग आपको आगे बढ़ाएगी. लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 3.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: हर वक्त का रिजल्ट धीरे धीरे मिलना शुरू होगा. पेशेंस ही आपकी असली पावर है. लकी कलर आपका है ग्रे और नंबर है 10.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि.
1: आपके जो क्रिएटिव आइडियाज है आज आप उनसे सबका टेंशन खींच सकते हैं. कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा. लकी कलर है ट्यूक्वाज और नंबर है 11.
2: पाइसेस मीन राशि.
1: दिल की शांति के लिए थोड़ा वक्त खुद को दीजिए. मेडिटेशन या म्यूजिक आपके मूड को अपलिफ्ट कर सकता है. लकी कलर आपका है लैवेंडर और नंबर है 12.
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती.

0: 9:50 हुए हैं और मौसम का क्या हाल है ये तो कुछ ही देर में पता लग जाएगा संक्षिप्त समाचार में। अभी के लिए वी फोकस, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं एंड एंजॉय करते हैं द म्यूजिक ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: चिर सुंदर संक्षिप्त समाचार आपसे अर्शिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलवानी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी का स्वागत किया जाता है। मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल गेविन ग्लोवर ने कल बजट पर जारी बहस में भाग लेते हुए अटॉर्नी जनरल कार्यालय की उपलब्धियों और वर्ष 2026-2027 के बजट में घोषित प्रमुख कानूनी उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के दौरान 20 से अधिक विधेयकों का मसौदा तय किया गया है। इनमें लॉ रिफॉर्म कमीशन एक्ट और सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट प्रमुख हैं। गेविन ग्लोवर ने कहा कि सरकार ने संविधान के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही संसद में पेश किए जाने वाले क्रिमिनल कोड बिल में वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या को भी कानूनी प्रावधानों में शामिल किया जाएगा। बजट पर बहस आज दोपहर 3 बजे फिर शुरू होगी। बहस पूरी होने के बाद कमिटी ऑफ सप्लाई की कार्यवाही आरंभ की जाएगी। मॉरिशस ने संपत्ति घोषणा और वित्तीय अपराधों की रोकथाम के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता अफ्रीकी देशों के साथ साझा की है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बुधवार 24 जून को अपने रिजवी के मुख्यालय में अफ्रीका के कई देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इन प्रतिनिधिमंडल में बुर्किना फासो, माली, कोमोरो, मडागास्कर, केप वर्दी और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रतिनिधि शामिल थे, जो अध्ययन दौरे के तहत मॉरिशस की प्रणाली का अनुभव प्राप्त करने पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से आयोजित इस पहल के माध्यम से प्रतिनिधियों को मॉरिशस में संपत्ति घोषणा से संबंधित कानूनी ढांचे तथा निगरानी और नियंत्रण तंत्र को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला है। सिंथेटिक ड्रग्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में आने वाले युवाओं तथा किशोरों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। हर आंकड़े के पीछे एक परेशान किशोर, संघर्ष कर रहा एक परिवार और जोखिम में पड़ा एक भविष्य छिपा हुआ है। नशीले पदार्थों की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उसके सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर भी गंभीर असर डालती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिंथेटिक ड्रग के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए जागरूकता, रोकथाम, समय पर उपचार और परिवार तथा समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को इस खतरे से बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला की राजधानी काराकास के निकट आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में युद्ध स्तर पर जुटे हैं। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 235 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि

0: 4,300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राजधानी काराकास और तटीय शहर ला ग्लोइरा में ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे फंसे लोगों की मदद की पुकार सुनाई दे रही है। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद कुछ ही सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया। आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, जबकि कई लोग क्षतिग्रस्त और असुरक्षित इमारतों में लौटने के बजाय सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। मेलिश स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड में 71 साल की 71 ईयर्स की श्री सतीश लाल बिहारी जिन्हें सीता रामदास के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे मनवीर सिंह लाल बिहारी के घर फॉरेस्ट साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीघा शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Welcome to RM2.
2: Musty Mornings, Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: एंड यस आई एम बैक टू आपके ही मस्ती मॉर्निंग में 10:10 होने को है तो अपने विशेज को मेमोराइज कर लीजिए. नर्मने यही पर है 12 बजे तक आपके साथ में इस फ्राइडे को द बेस्ट डे बनाने के लिए. ऊपर से आपको पता है आज है ड्रीम बिग डे, तो पहले विश मांगते हैं फिर उसे पूरा करते हैं आपके ही आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ.
0: वेलकम टू आरएम2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: M2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। Oh, oh, oh.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: एंड यस, आप कनेक्टेड हो चुके हो आरएमजू रेडियो मस्ती के साथ. एंड टाइम हो गया है आपके साथ एक लाइफस्टाइल टिप शेयर करने का. बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, नमनी कैसे हम दिन भर अपनी एनर्जी को मेंटेन करें. सिंपल सा जवाब है, अगर दिन भर एनर्जेटिक रहना है तो ब्रेकफास्ट कतई ही स्किप नहीं करना है. हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके ब्रेन और बॉडी को दोनों को फ्यूल देता है. एंड अगर फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो बॉडी फुल स्पीड कैसे चलेगी. लेकिन अगर आज सुबह जल्दी में ब्रेकफास्ट मिस हो गया आपसे, नो वरीज, अभी भी टाइम है आपके पास. एक हेल्दी स्नैक ले सकते हो आप, जैसे कि एक फ्रूट, थोड़े से नट्स या फिर योगर्ट. बेटर लेट देन नेवर. वैसे याद है मूवी कोई मिल गया का जादू, धूप के बिना उसकी पावर्स काम नहीं करती है. और आज तो वेदर भी क्लाउडी है, इसलिए आज का बोनस टिप है, चाहे धूप कम हो आज हर एक घंटे बाद 2-3 मिनट के लिए उठकर थोड़ा वॉक जरूर कीजिएगा और पानी पीते रहिए. कभी कभी एनर्जी की कमी भूख से नहीं, डिहाइड्रेशन और कंटिन्यूसली बैठने से भी होता है. तो ख्याल रखिए अपना, हेल्दी रखिए एंड हाइड्रेटेड रखिए खुद को. एंड एंजॉय कीजिए म्यूजिक को आपकी आरएमजू रेडियो मस्ती पर.
0: वेलकम टू आरएमजू
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
1: वैसे डांस पे चांस आपने मार लिया है क्योंकि इस आओ में ढेर सारे टिप्स हैं और चलिए अभी बात करते हैं आज के फैशन टिप्स का। दोस्तों, स्टाइलिश दिखना सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनने से नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी कभी कभी आपका बेस्ट आउटफिट हो सकता है। एंड आज का फैशन मंत्रा है लेस इज मोर। अगर आपका आउटफिट कलरफुल है तो एक्सेसरीज को भी सिंपल रखिए, एंड अगर आउटफिट बेसिक है तो एक स्टेटमेंट वॉच, इयररिंग्स या फिर सनग्लासेस आपका पूरा लुक एलिवेट कर सकते हैं। और एक छोटा सा टिप, कपड़े हमेशा वेदर के हिसाब से ही चूज़ कीजिएगा। एंड आज जब मौसम थोड़ा क्लाउडी है, बारिश भी हो रही है, तो लाइट लेयर्स या एक स्टाइलिश जैकेट ना सिर्फ फैशनेबल लगेगी बल्कि कम्फर्टेबल भी रखेगी आपको। तो आज अपना लुक कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कीजिए और मुस्कुराना मत भूलिएगा।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. RM2 Radio Musti.

0: वैसे बिजली है या फिर कट होगी, आई डोंट नो, लेकिन ये पता है कहीं जगहों पर इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, लेकिन यू स्टे सेफ अगर आप घर पर हो, म्यूजिक को एंजॉय कीजिए, अगर गड्डी चला रहे हो वाइब कीजिए, अगर बाहर वॉक या काम कर रहे हो तो बो को गाश चाहिए।
1: RM2 Radio Musti

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: नसीब से मिला है आपका साथ एंड कनेक्टेड रहने के लिए शुक्रिया. आप अभी सुन रहे हैं अपना मस्ती मॉर्निंग शो एंड इट्स निर्मनी एंड आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं. आप है यश एंड आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हैं वाइब को एंड डेडिकेट करना चाहते हैं कभी कभी आदित्य तो यू ब्यूटीफुल एंड ऑसम बेस्टी जरूर जी. आपके लिए गाना जरूर चलाएंगे. मिलते हैं नेक्स्ट आवर में. अभी के लिए एंजॉय करते हैं.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
3: सुबह के 11 बजे हैं. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे अर्चिता नमस्कार.
4: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में हम सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. स्थानीय स्तर पर मौसम के बारे में बात करते हैं. पूर्व से आने वाली बादलों का असर फिलहाल हमारे इलाके पर पड़ रहा है. इन पिछले 24 घंटों के दौरान विशेषकर सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच बगातेल में 45 मिलीमीटर वर्षा हुई, पोविदौंस में 50 मिलीमीटर, वाकुआ में 33, वूटन में 36 और विशेषकर सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर ज़्यादा बारिश हुई और जहाँ पर पानी जमा होने का खतरा है वहाँ पर पानी जमा हो रहा है और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, विशेषकर जब आप उन इलाकों से गुजरे. नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि राम नौजादिक का कहना है कि नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित कैंपस की स्थापना अब समय की आवश्यकता बन गई है. उनके अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है. ये मांग ऐसे समय में सामने आई है जब बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 2,220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है. सरकार ने ये भी घोषणा की है कि जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी है वहां विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी. इसके साथ ही चिकित्सा और नर्सिंग अफसरों के लिए अधिक विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे. मॉरिशस के ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन ने आरोप लगाए हैं कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में देश की पेंशन निधियों तथा सेंट्रल एलएसटी बोर्ड के पेंशन कोषों का कुप्रबंधन किया गया. राष्ट्रसभा में कल बजट पर हुई बहस के दौरान उन्होंने कहा कि सीबी के दोनों पेंशन कोष घाटे में हैं. उन्होंने बताया कि सीबी स्टाफ पेंशन में 131 मिलियन मॉरिशन रुपये और सीबी मैनुअल वर्कर्स पेंशन फंड में 64 मिलियन रुपये की कमी दर्ज की गई है. पत्रिका सियावादेन ने वर्ष 2026-2027 के बजट में घोषित पेंशन सुधार का बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने देश के हित में पेंशन व्यवस्था की समीक्षा का साहसी निर्णय लिया है. उनके अनुसार भावी पीढ़ियों के लिए पेंशन प्रणाली की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस सुधार को लागू करना आवश्यक है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ओर जहां पर वेनेजुएला में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है और 400 से अधिक हो चुकी है तथा घायलों की संख्या भी बढ़ रही है, वहीं पर यूरोप के कई देश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं. स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में कई दिनों से जारी लू की स्थिति अब पूर्वी यूरोप की ओर बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर जर्मनी और चेक गणराज्य के मौसम विभागों ने अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की है. पूर्वानुमान है कि जर्मनी के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि आज देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है. चेक गणराज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भी अत्यधिक गर्मी को लेकर विशेष चेतावनी लागू की गई. फ्रांस में वहां के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोनी ने स्वास्थ्य चेतावनी स्तर को उच्चतम श्रेणी तक बढ़ाने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य अस्पतालों में अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करना और संवेदनशील वर्गों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. सात रही सुन पाएंगे शोक समाचार.

0: years old की श्री ननराज सिंह दीनू, श्री ननराज सिंह दीनू जिन्हें पोम्पे के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर प्लैंड ऑश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियुलिक शमशान भूमि में ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM। श्वाजी रोड पोस्ट द फ्लैक में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती निराधा रामा पैदाश नाम सिमुची और जिन्हें दिलावती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल 2 बजे उनकी बेटी सनयु बंदीप के घर पोस्ट द फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशोंग शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमारो 2 PM। सैक्वा रोड सैक्वा में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री रेशन चिकोरी जिन्हें चंग के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनके भाई विशाल चिकोरी के घर सैक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाली दीपात की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। कालीलेन बॉम्बू में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री हरिबस थूप सिंह जानकी जिन्हें दो दो के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल 12 बजे उनके घर बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोता एसएपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति मारी गहरी संवेदना है।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 11:10 हो चला है। वैसे गाने का नाम है सारी और धमाल आचार के मूवी से लिया गया है। नया गाना फॉर यू टू वाइब ऑन, क्योंकि आपके लिए सिर्फ द बेस्ट ही लाते रहेंगे टिल 12। इस नलमनी स्वागत है आपका तीसरे और आखिरी आओ में। एन एस आखिरी आओ को बनाएंगे धमाल साथ में, बिकॉज यू आर द बेस्ट।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Well, देसी गर्ल का तो पता नहीं, लेकिन जब हम नॉर्मल लोगों को भूख लगती है तो जो पाक से हम चिप्स का पैकेट खोलने लगते हैं। लेकिन यारो, जब भी हल्की भूख लगे, जैसे कि अभी हो रहा है, हाँ, ऑफिस में बैठे बैठे भूख होती है, लेकिन चिप्स या गातों की जगह आप फ्रूट्स या नट्स ट्राई कीजिए। डू गिव इट अ ट्राई, क्योंकि हेल्दी स्नैकिंग से एनर्जी भी बनी रहती है और क्रेविंग्स जो है हमारी वो भी कंट्रोल में आती है। अभी के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अगर चिप्स खाने का इतना ही मन है तो बैलेंस कीजिए उसे फ्रूट के साथ, क्योंकि बैलेंस होता है की।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: Cheddar, chicken crimpy, nacho cheese, barbecue, pizza, tout ça vient nous n'a pour faire vous content. Oh chips, tout programme Djibout.
4: Chips, chips, chips, allez, allez, allez. Chips, chips, chips, ça c'est nos biscuits.
3: Chips, ça nos biscuits.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: इस चलती फिरती फास्ट ट्रैक की जिंदगी में लोग आजकल बहुत स्ट्रेस्ड हैं, एंड अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हो, स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, तो अपना फेवरेट बॉलीवुड गाना हमें भेज दीजिएगा 54991294 पर, क्योंकि कभी कभी बेस्ट थेरेपी एक अच्छा गाना होता है, एंड आप तक खुशियां और गाना डेलीवर करना हमारी जिम्मेदारी है। बिग हेलो टू कमलदीप जी, आप विश कर रहे हैं हैप्पी फ्राइडे सभी लोगों को, तो हो जाए नेक्स्ट सॉन्ग आपके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए।
0: वेलकम टू आर एम टू
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: लग जा गले से था करके वैसे गलत गाना चला दिया मैंने क्योंकि मेरे जाने का टाइम हो गया है और लग जा गले का वो वर्शन चलाना चाहिए था। वैसे साथ तो आपका कतई ना छोड़ेंगे क्योंकि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आपसे जो नाता जुड़ चुका है, जाने से पहले एक आखिरी टिप है आपके नाम, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। हर किसी का जर्नी अलग होता है। फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट कंपैरिजन। एंड इसी नोट पर हैव अ ग्रेट फ्राइडे एंड कीप वाइबिंग विद योर आरएमजू रेडियो मस्ती।
0: वेलकम टू आरएम2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: सभी को नमस्कार अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से आशिता आपको नमस्कार
1: नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है सिंथेटिक ड्रग्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में आने वाले युवाओं तथा किशोरों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है हर आंकड़े के पीछे एक परेशान किशोर संघर्ष कर रहा एक परिवार और जोखिम में पड़ा एक भविष्य छिपा हुआ है नशीले पदार्थों की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उसके सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर भी गंभीर असर डालती है विशेषज्ञों का कहना है कि सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के अवसर पर रोकथाम दिवस के अवसर पर जागरूकता रोकथाम समय पर उपचार और परिवार तथा समुदाय के योगदान के सहयोग की आवश्यकता है उन्होंने युवाओं को इस खतरे से बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया मौसम के बारे में बात करें पूर्व से आने वाले बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है और यदि बारिश के बारे में बात करें तो पिछले 24 घंटों में विशेषकर सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच आज बगातेल में 45 मिलीमीटर पोविदौंस में 50 मिलीमीटर वाकुआ में 33 वुटन में 36 मिलीमीटर बारिश हुई है सेंट्रल प्लेटों पर ज़्यादा बारिश हुई है जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पर पानी जमा होने का खतरा बना रहेगा और बादल के गरजने की भी संभावना रहेगी शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता का मुद्दा ब्रिटेन में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है ग्रेट ब्रिटिश यानी कि पॉलिटिकल एक्शन कमिटी पीएसी की चीफ एग्जीक्यूटिव क्लेयर बुलिवान ने पूर्व ब्रिटिश मंत्री एल कॉन्स को पत्र लिखकर शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर उनका पक्ष जानने की मांग की है एल कॉन्स ने हाल ही में ब्रिटेन के सशस्त्र बल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था गत 13 जून को द टेलीग्राफ में प्रकाशित एक लेख में एल कॉन्स ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रिटेन को अपनी शासन व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए क्लेयर बुलिवान ने अपने पत्र में ये भी पूछा है कि शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता के किसी भी हस्तांतरण से पहले क्या शागोस वासियों को जनमत संग्रह का अधिकार दिया जाना चाहिए उन्होंने समझौते के तहत प्रस्तावित वित्तीय प्रावधानों की उपयुक्तताओं पर भी सवाल उठाया नर्सिंग के बारे में बात करें नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि राम नौजादिक का कहना है कि नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित कैंपस की स्थापना अब समय की आवश्यकता बन गई है उनके अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के लिए ये कदम बेहद ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन में जून महीने की अभूतपूर्व लू और भीषण गर्मी का दौर आज भी जारी है मध्य दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के लिए रेड एक्सट्रीम हीट चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग ने वहां ने अत्यधिक गर्मी से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ने और बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका भी जताई है और अंत में वेनेजुएला के बारे में बात करें वहाँ

0: के राजधानी काराकास के निकट आए दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में युद्ध स्तर पर जुटे हैं। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 235 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4,300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राजधानी काराकास और तटीय शहर में ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे फंसे लोगों की मदद की पुकार सुनाई दे रही है। आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं जबकि कई लोग क्षतिग्रस्त और असुरक्षित इमारतों में लौटने के बजाय सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ में सुन पाएंगे शोक समाचार। फ्लाकमें अवेन्यू दे रोजियर सेंट रेमी फ्लाकमें 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री कोलांडे पानिकेन जिन्हें राजन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर सेंट रेमी फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉदमास की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टू डिया 2 PM। रिवरव्यू लेन वेदर में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेश्वरन पीले नालातोंबी जिन्हें इंदिरन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सेवा क्योंवादी नालातोंबी के घर वेदर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपियक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 2 PM। रारुट प्लेन दिगोश में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री ननराज सिंह दीनू जिन्हें पोम्पे के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर प्लेन दिगोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोलिक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज सुबह से मौसम वाह वाह। सुबह उठकर कई लोगों ने यही कहा होगा, वाह क्या मौसम है। और फिर दिल ने कहा होगा, हाय ऐसे मौसम में ऑफिस पे जाना है या काम कैसे करूं। पर लेकिन फिर हमारे रेडियो ने, जो कि आरएम टू रेडियो मस्ती है, उन गानों ने मूड बना दिया होगा। जब सुबह विकास आया, उसने एक गाना चलाया, मैं भी उसको बोल कर आई कि क्या गाना चलाया था। मैंने घर के काम ऐसे किए फटाफट फटाफट। यही तो आरएम टू रेडियो मस्ती के लिए खासियत है कि हम आपको रिलैक्स भी कराते हैं, आपको कहते हैं कि इंजॉय भी करो। और ये टाइम जो है सुहाना सफ़र के जैसे ही है, जैसे कि बस आप आराम से रेस्ट करो। और बाहर देखिए मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तो इंजॉय भी करना है आपको। तो आपको सिर्फ मैसेज करना है 5499124 पर कि आपका मूड क्या चल रहा है। भाई मेरा मूड तो बहुत अच्छा है, आपका कैसा चल रहा है वो भी बताइए। और साथ में इंजॉय करते हैं मोहम्मद रफ़ी, मुकेश की, मेहमान दा की, किशोर दा की और लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाज़ में प्यारे प्यारे गाने 60s, 70s और 80s के। अगर आप भी कोई फरमाइश है तो आप भेज सकते हैं। एंजॉय कीजिए अपना ये प्यारा सा गाना
1: रेट्रो रिदम। RM2

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:29 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं आप ही के प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। और ये पुराने गाने यहाँ जब चलते हैं तो दिल भी बस हल्का हल्का समझ चल जाता है। तो बस आज तो भाई आपको बहुत ही कह सकते हैं हम लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि सुहाना सफ़र की पूरी टीम इस टाइम हमारे यहाँ पर जहाँ पर गए हुए हैं वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। RM3 की पूरी टीम वहाँ पर है, पूरी MBC की टीम वहाँ पर है और जहाँ पर आप जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आप वहाँ पे गाने गा सकते हैं और गाने सुन सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि आप पूरे फैमिली के साथ, परिवार के साथ इंजॉय कीजिए और साथ में ही TikTok में भी आप लाइव देख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम होगा। आप यहाँ पे भी रहें और वहाँ पे भी रहें, इंजॉय करते रहें अपने पुराने गाने।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

सफर हमारे अपनों के साथ एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ। दो घंटों का सुनहरा सफर इस बार मोसलमों सेतांद्रे कम्युनिटी सेंटर में, जहां बेजितोंबो कोई राची और मोसलमों सेतांद्रे एसोसिएशन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 26 जून दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 26 जून को दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मोसलमों सेतांद्रे कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।

रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। 12:41 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपने गानों को, अपने मैसेजेस को। तो काफ़ी लोगों के इंतज़ार है कि उनके मैसेजेस पढ़े जाएं, तो चलिए हम भी शुरू करते हैं। रेशमा जी जो कि गुडलैंड से हैं, वो इन्जॉय कर रही हैं और उन्होंने गाने की फरमाइश की है तो हमने चला दिया था। मोहन, रेखा, अंबिका, प्रमिला एंड मालिनी के लिए एक प्यारा सा गाना मांगा है एक हमारे प्यारे से दोस्त ने, तो चलिए हम उनके लिए भी एक गाना चलाते हैं। धनवेश्वर जी अपनी पत्नी सुनीता जी साथ, रानी, संजीव, निशा, मीना, माला, देवदोस फैमिली एंड सुनीचर एंड काउंसलर फैमिली के लिए एक तरह सा गाना सुनना चाहते हैं, तो बस हम वो भी चलाने वाले हैं। साथ में फिया जी, आप कहाँ थी इतने दिनों से, आपके भी गाने बिल्कुल रेडी हैं, आपने भी बड़े प्यारे से गाने की फरमाइश की है। तो ये तो गाने आपके होते हैं, पर मैं सच बताऊँ तो मुकेश जी की आवाज़ कहें या मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ कहें, कहते हैं ऐसे ही किसी के गाने नाम के पीछे साहब नहीं लग जाता, वो ये रिस्पेक्ट उसने कमानी पड़ती है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें तो एक बार जब वो गाना गा रहे थे तो उन्होंने ऐसे गाया कि वो वहाँ पर गिर गए और उनके गले से खून आने लगा। जब खून आने लगा तो सबने बोला ये क्या हुआ, तो उन्होंने जब उन्हें थोड़ा सा होश आया तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इतना मतलब डिवाइन होकर उस गाने को गाया था और गाते गाते वो बेहोश हो गए थे और उसके बाद काफ़ी दिनों तक वो गा नहीं पाए। पर उन्होंने एहसास किया कि कहते हैं कि गाने सिर्फ गले से नहीं गाए जाते, कभी कभी रूह अपने आप गाना गाती है और वो चुनती है उन इंसानों को जिनसे वो एक प्यारे से गाने की फरमाइश करते हैं। तभी तो आज देखिए ये गाने आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल बहुत ही दिल से। तो चलिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना सुनते हैं और फिर उसके बाद और बातें करते हैं। क्यों, इंजॉय करो।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत ही क्वाइटली से आते हैं और दिल में खास जगह बना लेते हैं और ये तो उनकी खासियत होती है, पर हमारी ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं बहुत से प्यारे से गाने, तो भाई हम उन गानों को कहाँ जाने दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं प्लीज़ हमारा मैसेज पढ़ दो, तो बिल्कुल पढ़ देते हैं जी। कृष्टि जी अपने हस्बैंड के लिए, विक्रम जी जिनका नाम है उनके, और उनके दो ट्विंस हैं कौशिक एंड कुशाल, उनके लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। और कृष्टि जी विक्रम जी को सिर्फ इतना कहना चाहती है, थैंक यू आपने इतने प्यारे दो अनमोल रतन मुझे दिए, उसके लिए थैंक यू, और अपने प्यार के लिए, और जो तुम मुझे इज्जत और मान सम्मान देते हो उसके लिए, सब चीज़ों के लिए थैंक यू। क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। उसके साथ में यलेश साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं पुराने गाने हो या नए गाने हो, बस रेडियो मस्ती चलनी चाहिए। क्या बात है, थैंक यू यलेश, आप तो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और साथ में इस समय तनवीर जी, आयशा, तेजल, रायना, रायन, करुणा, कामिनी, तरसचंद, कमला, गंगू, बिसुन एंड अनिष्ठा जो कि काथरबोन से हैं, वो भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इन्जॉय कीजिए अपने गानों को, और हम इतना ही कहेंगे चाहे गाने कैसे भी हों, हमेशा दिल से जुड़े होने चाहिए और आप इन्जॉय करते हैं, इससे बढ़कर बात क्या होगी। तो इन्जॉय कीजिए आपका ये प्यारा सा गाना,
0: रेट्रो रिदम।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके

0: सभी को नमस्कार अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से अदिति आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम श्रोताओं को भी नमस्कार पूर्व से आ रहे बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है 24 घंटों के दौरान खासकर सेंट्रल प्लेटो और देश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों पर काफ़ी बारिश हुई है बगातेल में सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच 45 मिलीमीटर और पोविदौंस में 50 मिलीमीटर पानी वर्षा दर्ज की गई है नर्सिंग एसोसिएशन का कहना है कि नर्सों की प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित कैंपस की स्थापना अब समय की आवश्यकता बन गई है एसोसिएशन का कहना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है ये भी कहा गया है कि डॉक्टरों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा में बनाए रखने के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां और सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ये मांग एक ऐसे समय पर सामने आई है जब बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 2200 से ज्यादा स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता का मुद्दा ब्रिटेन में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है ग्रेट ब्रिटेन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी की चीफ एग्जीक्यूटिव ने पूर्व बरतानी मंत्री अल्कॉन को पत्र लिखकर शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर उनका पक्ष जानने की मांग की है अल्कॉन ने हाल ही में बरतानी सशस्त्र बल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही वेनेजुएला की राजधानी काकास के करीब पेश आए दो शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य जारी हैं मलबों में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 235 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है 4000 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं मरने वालों की संख्या और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार नंबर 136 शातुदू स्ट्रीट थोंगबो पोर्ट लुइस में नंबर 136 शातुदू स्ट्रीट थोंगबो पोर्ट लुइस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री विजय रामनाथ जो विजय नाम से ज्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे इनकी पत्नी श्रीमती दमयंती रामनाथ के मकान नंबर 136 शातुदू स्ट्रीट थोंगबो पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना
2: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: हसीन।
1: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ 2 घंटों का सुनहरा सफर, इस बार मोसलमों सैतान्द्रे कम्युनिटी सेंटर में, जहां बेजितोंबो कोईराची और मोसलमों सैतान्द्रे एसोसिएशन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 26 जून दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन ORM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 26 जून को दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मोसलमों सैतान्द्रे कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:09 हो चुके हैं भैया, हो गया 1:10। ऐसे ही होते हैं गाने और टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सेकंड आवर स्टार्ट हो गया, उसके साथ में देखिए कितने सारे आपके पसंद के गाने चला दिए, आपके मैसेजेस पढ़ दिए,

के बाद भी बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, तो हम वो चाहते हैं कि आपको पढ़ के सुनाएं, पर हम आपको इतना गाएंगे कि भाई गाने चाहे कोई भी हो, किसी ने भी गाए हो, बस दिल से गाए होते हैं तो हमारे को भी दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्यारी सी चुभन और ऐसी सीख सी आती है कि हाँ ये गाने हमारे लिए बने। कभी कभी तो हम उन यादों में चले जाते हैं जो हमने कभी वो यादें बसाई होती हैं अपने दिल में, और कभी कभी नई नई प्यारी प्यारी सी

0: जिंदगी में भी कोई ऐसा गाना है जो सच में रियल स्पेशल आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई जगह रखता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5499-1294 पर। मैं हूँ आपके साथ पूनम और आप इंजॉय कर रहे हैं आपके गाने। तो चलिए भाई दो तीन प्यारे से मैसेज ले लेते हैं। उषा जी ब्रह्मस्थान से जुड़ी हुई हैं और इनका प्यारा सा निकनेम है परी और मुझे बड़ा प्यारा लगता है। थैंक यू उषा जी आपके जुड़ने का। साथ में USA से ललित जी जुड़े हुए हैं और उनका पूरा स्टाफ जुड़ा हुआ है। थैंक यू आप सभी का, आप काम कर रहे हैं बट हम आपको इतना ही कहेंगे, बस आप काम कीजिए, इंजॉय कीजिए, ये रेडियो मस्ती आप सबके लिए है। चाहे मॉरिशियस हो या पूरा वर्ल्ड हो, सभी इसको सुनते हैं तो इंजॉय करना जरूरी बनता है। अनिता जी फ्लैग से हैं आई थिंक सो, और वो भी इंजॉय कर रही हैं अपने गानों को। और गीतांजलि शिवानी हिशा ये भी गाने को इंजॉय कर रहे हैं और प्यारे से उन्होंने अपनी बड़ी सी प्यारी सी लिस्ट भेजी है, तो हम बिल्कुल चलाएंगे। ज्योति आशनी रेखा सुरेखा AMD मधुप फैमिली इंजॉय कर रहे हैं अपने गाने, और अगर आपके भी दिल में कोई हैं गाने तो बताइए, हम इंजॉय कराएंगे आपको आप ही के गानों के साथ। तब तक ये मस्ती भरा ये प्यारा सा गाना है, आप सुनिए।
1: रेट्रो रिदम RM2

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:32 हो चुके हैं और गाना बहुत ही प्यारा था, क्योंकि हम सबको एक दूसरे से प्यार होता है तभी तो कनेक्ट होते हैं, नहीं तो कहाँ कौन याद रखता है। तो चलिए भाई, हमारे पास भी बहुत सारे लिसनर्स की लिस्ट इकट्ठी हो चुकी है और एक प्यारा से लिसनर है जिन्होंने हमें मैसेज किया है। उनका नाम है सत्यन गुरिया, जो कि मैसेज इसी से ना आया है, और आज उनकी बिटिया रानी का बर्थडे है, जबकि वो अपनी बिटिया रानी का नाम बताना भूल गए। उन्होंने कहा है कि मेरी बिटिया को बहुत सक्सेस मिले, खुश रहे, एजुकेशन मिले, प्यार मिले, मोहब्बत मिले, सब कुछ मिले। हम तो यही पूरा चाहते हैं अपने बच्चे के लिए। हमेशा हर माँ बाप अपने माँ बाप बच्चों के लिए यही सब कुछ दुआ करते हैं, पर ये जो ज़िंदगी है ना, इसे खुले आज़ाद छोड़ना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना जाने जैसे आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा वो बच्चा छलांग मारे और पता ही ना जाने इस दुनिया के लिए क्या कर बैठे। तो आप भी बहुत दुआओं के साथ ये अपने बच्चे को जो दुआ दे रहे हैं, मैं तो कहती हूँ बहुत हमारी तरफ से भी दुआ है, बट हम इतना ज़रूर कहेंगे कि बच्चे को बस बहुत प्यार से पालते हैं माँ बाप। आपने भी बहुत प्यार से पाला होगा, बट उसके लिए जब कुछ खरीदने जाए तो उससे ज़रूर पूछेगा कि क्या चाहिए। और आज हम यही कहेंगे कि उनके लिए आपने नाम तो नहीं बताया, आप शायद बताना भूल गए, पर हम इतना ही कहेंगे जब आप उनके लिए कुछ स्पेशल कुछ खरीदने जाए तो हमें ज़रूर याद करिएगा। हमारी पूरी MBC टीम उनको विश करती है और उनके लिए प्यारा सा एक गाना भी बजाएगी, जो कि आपकी फरमाइश का ही है। माँ आशा, डैड विमल, सिस्टर श्रिया एंड एंटायर फैमिली उन्हें विश कर रही है। उसके साथ में ही एक प्यारा सा मैसेज है अनीता प्रताप जी के लिए, जो कि अपने हस्बैंड राज और बेटे आंतिश, अनुष्का, मनीषा, आशिमा, हिमेशा एंड अध्या आंच सबके लिए एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं। राजन रघुपत जी, जो कि लंदन से इस समय जुड़े हुए हैं, और बस वो कहते हैं मेरा दिल ही नहीं करता कोई फरमाइश करने का, गाने रेडियो मस्ती पे इतने अच्छे चलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच। माधुरी जी साथ दे रही हैं हमारा और वो भी इंजॉय कर रही हैं अपने गानों को, और हम आपको भी इतना ही कहेंगे कि आप अगर इंजॉय कर रहे हैं तो बस इंजॉय करते रहे। ये वाला गाना आप सबके लिए,
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: एक बजकर 48 मिनट हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ यानी कि रेट्रो रिदम के साथ। रेट्रो रिदम में हम आज चलाते हैं आपके प्यारे से गाने 60, 70, 80 के दशक के, जो कि बहुत ही प्यारे और हिट होने चाहिए। तो ये सारे गाने आपकी पसंद के थे, हमने आपकी पसंद के गाने चलाए। इस समय हमारे साथ एक ऐसे लिसनर है जिनका नाम है करिश्मा और आज उनके पापा यानी कि विनय सुनकर जी का बर्थडे है और बस उनकी वाइफ बबीता जी, बेटा खुशहाल, दामाद कुणाल एंड सिद्धि उन्हें विश कर रहे हैं और उन्हें बहुत सी दुआएं दे रहे हैं। उनको कह रहे हैं भगवान हमेशा उन्हें खुश रखे, वो हमेशा मुस्कुराते रहे, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं और मैं चाहती हूं कि हर किसी को ऐसे ही पापा मिले और हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने पापा के लिए ऐसे ही दुआएं प्रार्थनाएं करता रहे। तो मैं तो कहूंगी कि बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे मैसेज पढ़कर भी दिल खुश होता है और हम यही चाहते हैं कि अंकल हमेशा खुश रहें और प्यार आपका ऐसे जैसे आज मिल रहा है उनको वैसे ही मिलता रहे। तो बस आपको हैप्पी बर्थडे अंकल, इंजॉय कीजिएगा। हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपके लिए स्पेशली और स्पेशली अभिजीत एंड मिस नील को भी थैंक यू और सभी उन लिसनर्स को, चाहे उन्होंने मैसेज किया या नहीं किया, हम उन्हें कहेंगे थैंक यू बहुत बहुत आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतना प्यार और विश्वास देने के लिए। ये आपके लिए अंकल, स्पेशली हमारी पूरी टीम की तरफ से।

0: और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे आरम टू पे. नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा आने वाले सारे प्रोग्राम्स जो भी होंगे इस मेरे बाद आने वाली हैं पर ही आपके साथ, तो एंजॉय कीजिएगा लेटेस्ट हिट सॉन्ग.
1: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। फेडरेशन ऑफ पब्लिक सर्विस सेक्टर एंड अदर यूनियंस ने बेसिक रिटायरमेंट पेंशन यानी यूनिवर्सल पेंशन बनाए रखने का समर्थन किया है। आज सुबह पोर्ट लुइस में लगे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष ने बजट 2026-2027 में प्रस्तावित कई कदमों पर बात की। विजय बंधन ने सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े पब्लिक गैदरिंग एक्ट में प्रस्तावित सुधारों की भी आलोचना की। मॉरिशस नेशनल फिनटेक स्ट्रेटजी 2026-2030 का मकसद लाइसेंस पाने में आसानी और डिजिटल एसेट्स विकसित करके अफ्रीका में मॉरिशस को एक प्रमुख फिनटेक हब के तौर पर मजबूत करना है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका की तकनीकी मदद से तैयार की गई इस दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर कल लॉन्च किया गया। ये रणनीति 6 स्तंभों पर आधारित हैं: रेगुलेशन, मूल ढांचा, प्रतिभा, निवेश, सहयोग और समावेश। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, कई अन्य यूरोपीय देशों की तरह यूके भी भीषण गर्मी का कहर झेल रहा है। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आज उत्तरी वेल्स में बारिश पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में बिजली की आंधियों का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया। दीजिए नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: More music in the mix.
4: Aaj Azadi hai.
5: Bombay Talkies.
6: Radio Musti.
7: Radio Musti.

0: Talkies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: तो चलिए दोस्तों आई ना जग से लाज मुझे तो लग रहा था कि इसमें पीछे ऐड करेंगे ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए लेकिन ये गाना वो नहीं है हमें ऐसा लगा कि ये गाना वही है लेकिन ये वही नहीं है। चलिए दोस्तों एक बार फिर आपका वार्म वेलकम करने विद कॉकटेल 2 का गाना आई एम पेरी आपके साथ। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज एंड वेल फ्रेंड्स आज है फ्राइडे। यस थैंक गॉड इट्स फ्राइडे TGIF। अब फ्राइडे आता है तो इतनी खुशी क्यों होती है आई डोंट नो लेकिन ये फ्राइडे हमेशा खुशियां लेकर आता है। कल रात मौसम एकदम भयंकर है लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा ठीक ठाक है मौसम का हाल। एंड वेल फ्रेंड्स अगर आप भी हमारा साथ दे रहे हैं तो इस सर्दियों वाले मौसम में आपका तो हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मंडे टू फ्राइडे आपके लिए बी टाउन की गर्मा गर्म अपडेट्स होती है 2 से लेकर 4 बजे तक। सो मैं हूं परी आपके साथ और आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस का इंतजार ऑन 5499-1294। कॉकटेल 2 का गाना और वंस अगेन कॉकटेल 2 बिकॉज ये फिल्म मचा रही है धमाल और हो रहे हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स माला माल। मेकिंग गुड मनी एट द बॉक्स ऑफिस दैट्स कॉकटेल 2 आपके लिए। रश्मिका मंदन आकृति सनन एंड शाहिद कपूर चलिए वी हैव बंधु आपके नाम एंजॉय दिस वन।

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti
2: Radio Musti
3: तो चलिए दोस्तों 2:16 हो चुके हैं एंड इट्स टाइम कि हम कुछ बॉलीवुड अपडेट्स आप तक पहुंचाएं। सो अक्षय कुमार की वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट वेलकम टू दी जंगल या फिर कह सकते हैं वेलकम 3 आज यानी कि फ्राइडे 26 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इस मल्टी स्टार फिल्म में अक्षय कुमार तो वापस नजर आए हैं लेकिन नाना पाटेकर और अनिल कपूर वेलकम 3 से गायब है। ऐसे में अब अक्षय ने खुद इस पर चुप्पी तोड़ी है और एक्टर ने बताया है कि ये दो स्टार्स नजर क्यों नहीं आए हैं। बता दिए कि वेलकम फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2007 में आई थी, वो एक कल्ट क्लासिक बन गई थी। वेलकम में अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर और परेश रावल खास किरदारों में नजर आए थे और वो अपनी शानदार केमिस्ट्री से दर्शकों को खूब मनोरंजन यानी कि उनका जो मनोरंजन है वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया था। इसके सीक्वल कम बैक वेलकम बैक अगेन में नाना पाटेकर और अनिल कपूर तो नजर आए थे लेकिन अक्षय कुमार वो गायब थे और उनको रिप्लेस किया था जॉन इब्राहिम ने। हालांकि लोगों को अक्षय की कमी जरूर खली थी और वहीं अब वेलकम टू दी जंगल में अक्षय ने वापसी जरूर की है लेकिन इस बार अनिल कपूर और नाना पाटेकर फिल्म में नहीं नजर आ रहे हैं। इस पर अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि वेलकम एक पूरा परिवार है, इसमें नाना और अनिल ये और बाकी सारे लोग भी शामिल है और ये एक फैमिली की तरह है, हम एक परिवार की तरह है और कभी वेलकम फॉर बनी तो इसमें आप इन्हें जरूर देख पाएंगे। कभी कभार होता है ऐसा कि स्टार्स के पास या तो डेट्स नहीं होती है या फिर वो अवेलेबल नहीं होते हैं और उसी के चलते वो फिल्में नजर नहीं आते या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्क्रिप्ट जो है वो काफी दिलचस्प नहीं लगती और इसी के चलते वो फिल्म से किनारा कर लेते हैं। सो यहाँ पर एग्जैक्ट रीजन तो अक्षय ने हमें नहीं बताया लेकिन ये जरूर बताया है दैट अगर कभी वेलकम फॉर बनी तो इसमें हम नाना पाटेकर और अनिल कपूर को जरूर देख पाएंगे। हालांकि वेलकम टू दी जंगल में अनिल कपूर और नाना पाटेकर दोनों के किरदार नहीं है लेकिन फिल्म में दर्शकों को उनके भाई बंधुओं अन्ना येड़ा और रोमियो से मिलवाया गया है और इसका किरदार सुनील शेट्टी या नर्शद वारसी ने निभाया है और अन्य कलाकारों में दिशा पाटनी, रवीना टंडन, श्रेयस तलपड़े, परेश रावल, राजपाल यादव सहित कई और सितारे शामिल है। तो चलिए दोस्तों ये फिल्म तो आज रिलीज हो गई है वेलकम टू दी जंगल और इसके बाद जिस फिल्म का हमें रहेगा इंतजार वो है धमाल 4 जो भी जल्द रिलीज होने वाली है। सो रिलीज तो होगी थोड़े ही दिनों में लेकिन रिलीज हो गया है उसका एक गाना जो आजकल हो रहा है वेरी पॉपुलर। So well, from the film Dhamaal 4, upcoming film Dhamaal 4, we have this dhamakedar tadke wala gana. To everyone who's connected hamare saath, chaliye dosto, main hu Pari aapke saath and it's time for your Bombay Talkies, B-Town ki updates aapke liye.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: फ्रेंड्स इट्स 2:35 एंड फ्राइडे की आफ्टरनून. वेल आपको बता दें कल 25th ऑफ जून थी और 25th ऑफ जून 1992 वो तारीख है जब बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक शाहरुख खान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की थी. शाहरुख खान ने बॉलीवुड में फिल्म दीवाना से अपना डेब्यू किया और अब उनको हिंदी सिनेमा में 34 ईयर्स कम्प्लीट हो चुके हैं और इस खास और यादगार पल का जश्न उन्होंने मैंगलोर में मनाया. एक इवेंट में वो अपने फैन से रूबरू हुए और स्टेज पर शाहरुख खान ने अपने हिट सॉन्ग्स पर डांस भी किया. शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी से की थी और फौजी और अन्य शोज में वो नजर आ चुके हैं. इसके बाद उन्हें सबसे पहली फिल्म दिल आशना है के लिए साइन किया गया था, लेकिन उनकी पहली रिलीज फिल्म रही दीवाना. इस फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर और दिव्या भारती जैसे स्टार्स नजर आए थे. सो वेल 34 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं बॉलीवुड के किंग खान और अभी के लिए तो बस सेलिब्रेट करते हैं उनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स के साथ. एंड वेल फ्रेंड्स आप भी साथ दे रहे हैं तो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499129.

0: Lolo Hypermarché, Low Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentina Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही है? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: RM2 Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well, it's 247 connected हैं आप हमारे साथ Friday afternoon में B Town की latest updates के साथ आपके messages आपके dedications भी यहाँ पर विजया जी हमारा साथ दे रही हैं warm welcome आपका on the waves of Radio Musti next track होगा आपकी नाम सात समंदर पार से आई है big hello के साथ हमारी प्यारी सी जीना जोयसरी गाना होगा आपकी नाम and लाल माटी से we have Devison प्यार भरा welcome आपका भी on Radio Musti चलिए दोस्तों इतने ही प्यार से आप हमारा साथ देते रहिए और आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5491294 पर प्रवीण यहां पर साथ दे रहे हैं आप रिवर्जो गांव पास से और कहती हैं फॉर लवली वाइफ काजल डेडिकेट करना चाहता हूं अगला गाना बिल्कुल जी ऐसे ही कुछ प्यारे डेडिकेशंस आपके लिए होते रहेंगे एंड नॉट टू फॉरगेट साथ दे रहे हैं आप सो आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस ऑन आवर मैजिकल नंबर थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर लौट कर आएंगे विद द लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स एंड साथ में कुछ लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स

0: listening to Radio Masti. The time is brought to you by McDonald's.
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Masti.
3: North. South.
4: 103.5.
3: East. West.
4: 96.4.
3: Center.
4: 99.4.
5: RM2, Radio Musty.
2: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
6: Time check, exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार. डीपीपी दफ्तर ने इंटरमीडिएट अदालत के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के उस फैसले के खिलाफ आधिकारिक तौर पर अपील दायर की है जिसमें डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी गई है. ये अपील 14 आधारों पर की गई है जिसमें अदालत के कानूनी तर्क और उसके निष्कर्ष दोनों को चुनौती दी गई है. डॉक्टर नवीन राम गुलाम के वकीलों को अपील के नोटिस की कॉपी मिल चुकी है. डीपीपी ने ये भी संकेत दिए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई तय करने का अनुरोध करेंगे क्योंकि अपील की तेजी से समीक्षा करना न्याय के हित में है. फेडरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड अदर यूनियंस ने बेसिक रिटायरमेंट पेंशन यानी यूनिवर्सल पेंशन बनाए रखने का समर्थन किया है. आज सुबह पोर्ट लुइस में लगे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष ने बजट 2026-2027 में प्रस्तावित कई कदमों पर बात की. विजय बंधन ने सार्वजनिक प्रदर्शन

संगठनों से जो रिपब्लिक गैदरिंग एक्ट में प्रस्तावित सुधारों की आलोचना की। मॉरिशस नेशनल फिनटेक स्ट्रेटजी 2026-2030 का मकसद लाइसेंस पाने में आसानी और डिजिटल एसेट्स विकसित करके अफ्रीका में मॉरिशस को एक प्रमुख फिनटेक हब के तौर पर मजबूत करना है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका की तकनीकी मदद से तैयार की गई इस दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर कल लॉन्च किया गया। ये रणनीति 6 स्तंभों पर आधारित है, रेगुलेशन, मूल ढांचा, प्रतिभा, निवेश, सहयोग और समावेश। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, कई अन्य यूरोपीय देशों की तरह यूके भीषण गर्मी का कहर झेल रहा है। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आज उत्तरी वेल्स और उत्तरी यूके में बारिश की चेतावनियां जारी की गई हैं। कई इलाकों में बिजली की आंधियों का अनुमान है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार।

शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड बेल्वेडेयर में, रॉयल रोड बेल्वेडेयर में 42 साल की 42 इयर्स ओल्ड श्रीमती ज्योति चतुआ पैदाशी नाम सुकन, जो करिश्मा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के सवा ग्यारह बजे इनके पिता श्री राजेंद्र सुकन के मकान रॉयल रोड बेल्वेडेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन को निवास की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट क्वार्टर पास्ट 11 AM। कालीमाई रोड रोशनोमी 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड श्री कृपाचार्य ठाकुर सिंह, श्री कृपाचार्य ठाकुर सिंह, जो मेतानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती देवयानी ठाकुर सिंह के मकान कालीमाई रोड रोशनो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। मामबहाल रोड बुआ शेरी में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड श्रीमती भानुमती माताओ, जो भानु नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके भाई श्री विजय माताओ के मकान मामबहाल रोड बुआ शेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गाँव बुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

So well friends, warm welcome. कुछ latest tracks आपके लिए and B-Town की updates आप तक पहुंचा रहे हैं. 3:08, एक फिल्म जिसने हर कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया एंड दैट्स धुरंधर. उसी फिल्म का ये गाना, खान साहब की आवाज़ और आप सभी के लिए जो हमारा साथ दे रही हैं. वॉर्म वेलकम, फ्राइडे आफ्टरनून है एंड कुछ ब्यूटीफुल लेटेस्ट ट्रैक्स लेकर आए हैं आपके लिए. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस इन दिस आवर 5499-1294 पर.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: फ्रेंड्स 3:18 हो गए हैं बी टाउन की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म चौहान का पहला टीजर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है। इसे लेकर इंटरनेट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है और ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई है और टीजर को लेकर चलिए जानते हैं लोगों की क्या राय है। फिल्म के टीजर को लेकर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। एक यूजर ने लिखा, चौहान अनाउंसमेंट टीजर बवाल मचा रहा है और सारे सोशल मीडिया पर इंस्टा एडिट्स तो भर भर कर बन रहे हैं, अजय देवगन अब आएगा मजा। एक यूजर ने लिखा, चौहान का टीजर बेहतरीन है और एक्शन भी जबरदस्त है। और एक यूजर ने लिखा, हम आपसे यही चाहते हैं और क्या शानदार टीजर बनाया है, असली एक्शन हीरो वापस आ गया है, उम्मीद है ये ब्लॉकबस्टर बनेगी। सो यहाँ पर काफी सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं अजय देवगन की इस फिल्म के साथ, एंड दैट्स चौहान। किसी ने लिखा है, दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू अजय देवगन, व्हाट अ टीजर, ओजी एक्शन हीरो इज बैक एंड होपफुली एक ब्लॉकबस्टर बनने वाली है, सो लेट्स वेट एंड वॉच। मिक्स्ड रिव्यूज तो आ रहे हैं इसको लेकर, एंड ये तो है कि जब भी अब कोई एक्शन फिल्म बनेगी उसे जरूर कंपेयर किया जाएगा धुरंधर के साथ, लेकिन अजय देवगन वी नो ही इज अन ओरिजिनल, सो लेट्स वेट एंड वॉच कि उनकी ये फिल्म क्या कमाल दिखाती है। अभी के लिए टीजर तो आ रहा है, लोगों को काफी पसंद।
4: لا سهر لم يمون العلب وزع

0: Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: फ्रेंड्स अक्षय कुमार रवीना टंडन और कई बड़े कलाकारों से सजी कॉमेडी फिल्म वेलकम टू दी जंगल आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और चलिए जानते हैं लोगों के क्या रिव्यूज आ रहे हैं। किसी ने लिखा है अनबायस्ड ओपिनियन वेलकम टू दी जंगल इज आउट एंड आउट एंटरटेनर हैवंट लाफ्ड लाइक दिस इन इयर्स इन अ बॉलीवुड मूवी तलविंदर का गाना क्यों इज अ ट्रीट टू वॉच ह्यूज ब्लॉकबस्टर लोडिंग कुड बी अक्षय कुमार वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर्स ये लिखा है एक यूजर ने और यहाँ पर और भी सारे रिव्यूज आ रहे हैं। किसी ने लिखा है जस्ट वॉच्ड वेलकम टू द जंगल इट्स सुपर एंटरटेनिंग फर्स्ट हाफ इट्स गुड एंड सेकंड हाफ इज ब्रिलियंट एंड एज ऑलवेज अक्षय कुमार वाज सुपर गुड एंड रेस्ट ऑल डिड अ परफेक्ट जॉब दिस इज अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर एंड ग्रेट कॉमेडी एंड एक्शन टोटल पैसा वसूल डोंट मिस इट गाइज। वहीं धैवत रावल एक और यूजर है जिन्होंने लिखा है दैट वेलकम टू द जंगल इज टोटल पैसा वसूल मूवी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फैमिली एंटरटेनमेंट आई है और इसे जाकर आप थिएटर्स में जरूर देखें विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड साथ ही साथ आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं इन्हें लेकर जाएं ये लिखना है इनका। एंड किसी ने लिखा है ये है शिवम झा उन्होंने लिखा है वेलकम टू द जंगल इज एब्सोल्यूट हिलेरियस राइड टिल द इंटरवल ऑडियंस हैज बीन लाफिंग नॉन स्टॉप ड्यूरिंग मेनी सीन्स आई कांट वेट फॉर द सेकंड हाफ। तो चलिए यहाँ पर आ रहे हैं गुड गुड रिव्यूज लेकिन हो सकता है देखिए दोस्तों आजकल क्या होता है पेड रिव्यूज भी होते हैं और हम तो बस यही कहेंगे कि अगर आपको फिल्म देखनी है फिल्म को देखिए और हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। दैट्स वेलकम टू द जंगल मच अवेटेड

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: It's 3:51 and well friends, it's time for Pari to say goodbye. लेकिन जाने से पहले जो वादा किया है वो तो जरूर निभाएंगे, यानी कि आपके messages, आपके dedications जो आ गए हैं on 5499-1294. So well, कहते हैं that enjoying the songs. और आज nephew Ashweer अपना birthday celebrate कर रहे हैं. So wishing him loads of love. उनके लिए wishes आई हैं from mommy baby and मामू संजय, सभी गुजादर परिवार जो उनको भेज रहे हैं प्यार all the way from Milano. So उनके लिए प्यार and special wishes. और चलिए यहाँ पर कुछ और messages that's coming from सीतोहल परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. Have a wonderful time. And यहाँ पर super long message. Hope you are keeping well. Enjoy कर रहे हैं program. And well, आज beloved daughter Harsha अपना 20th birthday celebrate कर रही है. So happy wala birthday to you, Harsha. Dedicating एक beautiful गाना उनके नाम. And wishing her loads of love and special wishes. Special wishes, love and blessings. ये है from mom Asha, dad Vimal, sister Shreya और उनका पूरा परिवार. And well, कहते हैं that जब यहाँ पर हिंदी सुनते हैं इतना अच्छा लगता है. And हिंदी सुनने के बाद आपको लगता है that maybe आप you are a teacher and आप कह रहे हैं that जो भी आपके students हैं when they speak good Hindi you feel really proud. So thank you so much for sharing and thank you so much for this beautiful message. तहे दिल से आज वर्षा हर्षा को हम celebrate कर रहे हैं उनका birthday, यानी कि उनका 20th birthday. So उनके लिए बहुत सारा प्यार and special wishes. ये हमारे पूरे टीम की ओर से, RM2 Radio मस्ती टीम की ओर से. एंड वेल, अक्षय कुमार की बात की है, सो अक्षय कुमार का गाना तो बनता है. बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं बनता है. उनके सभी फैंस जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, सो आप भी हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए. और आपकी स्वीट मैसेजेस आप हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294. हमारे अपारू परिवार आप भी हमारा साथ दे रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम होशनुआ. आपने भेजा है बहुत सारा प्यार. सो वेल दोस्तों, नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. और मेरे बाद आ रही है गिनिशा लेकर योर फ्राइडे मैशअप. सो हैव अ वंडरफुल टाइम. छोड़े जा रहे हैं आपको विद दिस ब्यूटिफुल रोमांटिक गाना. मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. तब तक के लिए एंजॉय योर फ्राइडे, एंजॉय योर वीकेंड.

0: रेडियो मस्ती।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: The time is brought to you by McDonald's.
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
1: Radio Musti.
4: North. South.
1: 103.5.
4: East. West.
1: 96.4.
4: Center.
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check 4 PM. आइए सुनते हैं समाचार अदिति के साथ। नमस्कार।
7: नमस्कार गिनीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार। अटॉर्नी जनरल दफ्तर के स्तर पर कई विधेयकों पर काम किया जा रहा है। इनमें प्रोविजनल चार्ज यानी अस्थाई आरोप खत्म करना और मानवाधिकार आयोग में सुधार करना शामिल है। राष्ट्रीय सभा में कल अटॉर्नी जनरल ने वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों के पक्ष में बात की। डीपीपी दफ्तर ने इंटरमीडिएट अदालत के फाइनेंशियल क्राइम्स विभाग के उस फैसले के खिलाफ आधिकारिक तौर पर अपील दायर की है, जिसमें डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई है। ये अपील 14 आधारों पर की गई है, जिसमें अदालत के कानूनी तर्क और उसके निष्कर्ष दोनों को चुनौती दी गई है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम के वकीलों को अपील के नोटिस की कॉपी मिल चुकी है। डीपीपी ने ये भी संकेत दिए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई तय करने का अनुरोध करेंगे, क्योंकि अपील की तेजी से समीक्षा करना न्याय के हित में है। इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस ने आज एक प्रेस सम्मेलन के दौरान बजट में जनरल इंश्योरेंस पर 5% टैक्स लागू करने के फैसले पर चर्चा की। संगठन के महासचिव वशिष्ठ रामखिलावा ने उम्मीद जताई कि ये नया टैक्स मेडिकल इंश्योरेंस पर लागू न हो। उन्होंने पोर्टेबल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड पर भी बात की। फेडरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड अदर यूनियंस ने बेसिक रिटायरमेंट पेंशन यानी यूनिवर्सल पेंशन बनाए रखने का समर्थन किया है। आज सुबह पोर्ट लुइस में एक प्रेस सम्मेलन के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष ने बजट 2026-2027 में प्रस्तावित कई कदमों पर बात की। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में स्विट्जरलैंड और मैक्सिको की कई राहत और बचाव टीमें मदद के लिए वेनेजुएला पहुंची हुई हैं, जहाँ कल पेश आए दो सिलसिलेवार भूकंप में मरने वालों की संख्या 235 पार कर गई है और 4,300 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शुभ समाचार सुनिए। मैडम लोलो रोजबेल में 75 साल की 75 years old श्री मुनेश्वर रामनोहर, श्री मुनेश्वर रामनोहर जो ईश्वर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके भतीजे श्री महेंद्र रामनोहर के मकान मैडम लोलो रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांगी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: तो चलिए जी, तौबा तौबा करते करते हम तो पहुंच गए हैं यहाँ पे ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती आपका साथ देने के लिए। माय डियर लवली पीपल आउट देयर, कैसे हैं सभी लोग? ऑफ कोर्स आप तो कहेंगे हम गिरीशा जी, हम तो बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि इट्स फ्राइडे। तो चलिए जी, लेट्स किक स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीकेंड विद दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गाने के साथ। जी हाँ दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, दैट्स आवर एंटी रेडियो मस्ती, नो डाउट। हम हैं गिरीशा जो साथ देने आ गए हैं रात के 7 बजे तक, एंड आई गोना बी हियर विद सम धमाकेदार गाने, बिना तर्क मार के सुनाएंगे आज, मजबूर करेंगे कि आप भी नाचे गाएं और झूमे हमारे साथ। ऑफ कोर्स जब भी वीकेंड आते हैं तो ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं और हम तो खुशियां बांटने आ जाते हैं जी। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी और गिनिशा का प्रणाम। सो गेम चो बिल्कुल ठीक है ना? ऑफ कोर्स। सो व्हाट्स द प्लान फॉर द वीकेंड? 5499-1294 पर डू लेट मी नो एंड टेल दोज हु आर ऑलरेडी हिटिंग द रोड। ड्राइव केयरफुली, ड्राइव सेफली, मेंटेन डिस्टेंस वाइल ड्राइविंग। और आपको तो पता है कि पूरी रात से ही बारिश हो रही थी और फिलहाल रुक सी गई है, लेकिन रोड जो है काफी स्लिपरी होती है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, एंड हियर वी गो, लेट्स किक स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल शो।

0: Well, guys, that was such a beautiful track, especially for you, taken from the movie Animal, Jamal Kudu. और वैसे भी मुझे पता है जो लोग बस में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, चारों तरफ देख ही रहे हैं कि अरे यार हमारा भी मन कर रहा है नाचने का. चलो हाथ पैर तो हिला ही सकते हैं, अरे कौन आपको देख रहा है, की फर्क पैदा है जी, कोई देखे या ना देखे आप बस एंजॉय कर लीजिए हमारे ये खूबसूरत खूबसूरत गाने जो आपके लिए हम लेकर आए हैं अनारंटी रेडियो मस्ती. तो फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, 4:15 तो बज चुके हैं. इट्स फ्राइडे 26th of June 2026. टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग the birthdays, hello ji, I just want to wish you a magical birthday on RNT Radio Masti. And आई हूँ तो खाली हाथ थोड़ी आई हूँ. I've got you a cadeau. Yes, I've got you a gift right now. अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे, you would love to be my lucky winner right now, right away. Very easy. आपको क्या करना है, पूछेंगे एक सवाल, आपको देना है सही जवाब on 5499-1294 पर. Send me the right answer right away with your full name and full address के साथ. और आज के लकी विनर को मिलेगा अ वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड. जी हाँ दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं द परफेक्ट गिफ्ट आइडिया, सो यू कैन जस्ट गेट इट ऑन द मिस्टिक वर्ल्ड .mu. डिस्कवर द एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स, गोल्ड एंड इवन सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टनिंग होम डेको भी आपको मिल सकता है. सो मिस्टिक वर्ल्ड .mu हैज एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. विजिट देयर वेबसाइट आज ही ऑन मिस्टिक वर्ल्ड .mu, या आप सीधे फोन कर सकते हैं ऑन 5887-6652 पर. और फिलहाल के लिए आप आराम से सुन लीजिए, हम पूछेंगे एक सवाल, आपको सही जवाब देना है, हम आपको सुनाएंगे अ डायलॉग. यू जस्ट हैव टू टेल मी दिस डायलॉग इज टेकन फ्रॉम विच मूवी.
1: मोगेम्बो, खुश हुआ?
0: बिल्कुल जी, हम भी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे अगर आप हमें भेजेंगे द राइट आंसर ऑन 5499-1294 पर. क्या हुआ, आपने ठीक से सुना नहीं? लीजिए फिर से प्ले करती हूँ.
1: खुश हुआ?
0: बिल्कुल जी, अगर आपको भी ये वाउचर मिलेगा वर्थ 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड .mu, हम वेरी मच श्योर कि आप भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे. सो ट्राई योर लक राइट नाउ, यू नेवर नो, हो सकता है आज का लक आपका साथ दे दे और आप बन जाए लकी विनर ऑन आवर एंट्री रेडियो मसी 5499-1294. सेंड मी द राइट आंसर राइट अवे, फुल नेम फुल एड्रेस के साथ एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू.

0: It's not just about the music, it's about the feeling.
1: Friday Mashup. Friday Mashup.
0: RM2, Radio Musty, in the mix.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: हम भी तो बैठे बैठे हाय हाय तो कर रहे हैं यहाँ पे तो स्टूडियो में अकेली बैठी हूँ बट स्टिल फुल ऑन मजा ले रही हूँ क्योंकि द वीकेंड इज हियर एंड वी आर हियर टू किक स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल एंड लवली वीकेंड आप लोगों के साथ और ढेर सारा प्यार लेकर आए हैं थ्रू आउट दिस ब्यूटीफुल लवली लवली गानों के साथ। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए 4:23 हो चुके हैं गणेश ऑन द माइक साथ देने के लिए। सो आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली एंजॉयिंग ईच एंड एवरी बीट जो लेकर आए हैं जस्ट फॉर यू ऑन दिस फ्राइडे आफ्टरनून। और पूछा गया था एक सवाल, जी हाँ दोस्तों हमने आप लोगों से पूछा था एक सवाल जहां पे सही जवाब देने पर आपको मिल सकता है अ वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफ टू यू बाय योर मिस्टिक वर्ल्ड। और सवाल ये था,
1: मोगेम्बो खुश हुआ?
0: बिल्कुल जी, ये बहुत ही ज्यादा हम भी खुश हुए क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे सही जवाब आए, एक भी गलत जवाब नहीं आया। थैंक यू सो मच टू ऑल दोस जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है। लेकिन आपको तो पता है द रूल ऑफ द गेम, ऑफ कोर्स वी मस्ट हैव ओनली वन लकी विनर। लकी ड्रॉ हमारा हो चुका है एंड आज का लकी विनर है, मैंने बताऊंगी तो चलिए जी, आज का लकी विनर है मिस्टर मुताई अनुप और आप रहते हो कॉटेज NHDC के 14। कांग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर, यू आर विनिंग अ वाउचर वर्थ 500 rupees offered to you by a mystic world. Thank you so much for participating and congratulations once again to you. You are Ajkal lucky winner. The real the answer is Mr. India. Exactly. This is the dialogue is taken from the movie Mr. India. Magembo khush hua. Hum bhi bade khush hue ji. To chaliye ji, thank you so much to all those jinhone participate kiya hai. Jaise ki hum hamesha kehte hain ki dil chota nahi karte hain ji, kyunki aaj nahi jeeta to kya hua? You can win some other time. We are always here with so many cadeaux for you on our end to Radio Masti. To chaliye ji, Mugambo khush hua.
2: Hawa hawai.
3: Oh, wee.

0: हवा हवाई आप लोगों के लिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में क्या बिल्कुल टेकन फ्रॉम मूवी क्या फ्रॉम द मूवी मिस सैंडी आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली लविंग एंड एंजॉयिंग ईच एंड एवरी सॉन्ग जो लेकर आए हैं टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग ड्राइव केयरफुली बाबा तो चलिए जी वन मोर ब्यूटीफुल ट्रैक जस्ट फॉर यू
1: RM2 रेडियो मिस्ट्री

0: such a lovely track taken from the movie Tenu with Manu too, especially आप लोगों के लिए on RM2 Radio Mastij. बन्नो तेरा स्वैगर लगे सेक्सी, लेकिन जो हमारे स्पोर्ट्स गुरु हैं उनके स्वेटर काफी सेक्सी हैं आज.
1: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: Sports News.
3: Radio Mastij in the mix.
0: फ्राइडे मैशअप में ऑफकोर्स हमारे स्पोर्ट्स गुरु तो आ ही गए हैं. आपका स्वेटर वाकई में काफी सेक्सी लग रहे हैं आज.
4: नहीं, ढका हुआ है, लॉन्ग लीव्स है.
0: नहीं, स्वेटर इज लुकिंग सेक्सी. वेरी गुड आफ्टरनून टू यरविन जी.
4: थैंक यू. सो गुड आफ्टरनून आपको. बहुत कुछ होने वाला है आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, क्योंकि ग्रुप आई में इट्स अ डायरेक्ट शो डाउन फॉर द टॉप स्पॉट. फ्रांस और नॉर्वे जो ग्रुप आई में पहले से ही क्वालिफाई हो चुके हैं. फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराया था और इराक को 3-0 से. नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया था और सेनेगल को 3-2 से. करेंटली फ्रांस ग्रुप में पहले है गोल डिफरेंस पर +5, नॉर्वे का +4. तो अगर फ्रांस आज अपना मैच जीतता है दे विल विन द ग्रुप, या ड्रॉ के साथ भी आगे निकल जाएंगे. नॉर्वे के लिए दे मस्ट डिफीट फ्रांस टू एडवांस एज ग्रुप विनर्स. एक ड्रॉ करेंगे तो सेकेंड प्लेस गारंटी. सेनेगल और इराक के लिए दोनों के पास अभी 0.1 भी अंक नहीं है, और जिसकी भी जीत होगी गोल डिफरेंस हाई स्कोरिंग विक्ट्री होना चाहिए, क्योंकि सेनेगल का है अभी -3, इराक का -6. सो थर्ड प्लेस टीम रैंकिंग्स में इनको आने के लिए एक हाई स्कोरिंग मैच होना जरूरी है. ग्रुप एच में आज ये कुछ भी हो सकता है, कंप्लीटली ओपन, क्योंकि स्पेन ग्रुप इस ग्रुप में 4 अंक लेकर आगे हैं. यूरुग्वे और केप वर्दे के पास 2 अंक है, सऊदी अरेबिया के पास 1 अंक. स्पेन की टीम क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन फर्स्ट टॉप स्पॉट लॉक कर लेंगे यूरुग्वे को हराकर. एक ड्रॉ होगा तो टॉप टू फिनिश में आ जाएंगे. यूरुग्वे क्वालिफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर वो स्पेन को हराता है. अगर वो ड्रॉ करते हैं और फिनिश ऑन 3 पॉइंट्स तो सऊदी अरब को इंतजार करना होगा, सऊदी अरब के वर्दे को रोके, या फिर एक ड्रॉ हो या फिर एक नारो विन. के वर्दे टॉप टू फिनिश हो सकता है अगर वो सऊदी अरब को हराते हैं और यूरुग्वे स्पेन को नहीं हराता. सो दैट विल बी समथिंग ग्रेट अगर ये के वर्दे क्वालिफाई हो जाए. सऊदी अरब के लिए मस्ट विन टू स्टे अलाइव. जीत कर 4 अंक पर आ जाएंगे और दे कैन पुश फॉर द ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन स्पॉट्स अगर स्पेन यूरुग्वे को हराता है. तो इस ग्रुप में चारों टीमें, इनमें से 3 टीमें क्वालिफाई हो सकती हैं. फिर ग्रुप जी में इजिप्ट ग्रुप जी में आगे हैं विद 4 पॉइंट्स +2 गोल डिफरेंस. इनके पास ईरान के करीब है 2 अंक, बेल्जियम ऑन 2 पॉइंट्स, न्यूजीलैंड ऑन 1 पॉइंट. बेल्जियम डेंजर में है. इजिप्ट एक ड्रॉ या फिर एक जीत उनके लिए क्वालिफिकेशन और टॉप टू. ईरान वो क्वालिफाई हो जाएगा अगर इजिप्ट को हराता है तो,

0: अगर ड्रॉ करता है ईरान तो तीन अंक होंगे सो दे विल हैव टू वेट फॉर द मैच बेल्जियम न्यूजीलैंड वेट नहीं क्योंकि एक ही समय ही खेला जाएगा सभी मैच बेल्जियम को न्यूजीलैंड को हराना है टू सिक्योर ऑटोमेटिक सेफ्टी अगर ड्रॉ होगा सो दे विल बी हैविली वल्नरेबल थर्ड प्लेस मिनी टेबल में क्योंकि एक हार हुई तो इमीडिएट elimination or New Zealand they can also qualify automatically agar Belgium ko harate hain aur Egypt Iran ko harata hai by a large margin to bahut kuch hoga idhar third place ke liye ant tak intezar karna hoga kaun si wo teamein hain jo qualify hongi so as you can see agar magar bahut kuch hai aaj ke matchon ko lekar so aaj ke fixtures kya hain let me check aaj सुबह तो काफी मैच खेले गए ग्रुप आई में नॉर्वे वर्सेस फ्रांस ये मैच 11 बजे खेला जाएगा सेनेगल वर्सेस इराक ये मैच भी 11 बजे और कल सुबह 4 बजे केप वर्दे सऊदी अरब यूरुग्वे स्पेन फिर कल सुबह 7 बजे इजिप्ट ईरान न्यूजीलैंड बेल्जियम सो कैन यू इमेजिन रात्रि के 11 बजे मैच फिर सुबह 4 बजे मैच फिर सुबह 7 बजे मैच लगता है कि फ्राइडे सैटरडे तक सोना मना है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मैच जो खेले जाएंगे तो इन सब पर कल सुबह आपको डिटेल्स देते रहेंगे और ये भी बता दें कि क्रिकेट जो है क्रिकेट T20 मैच इंडिया और आयरलैंड के बीच अभी शुरू हो गया है आयरलैंड की टीम बैटिंग कर रही है दो ओवर में 20 रन बना चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर मैं देख रहा था इसमें जो खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी को इस मैच के लिए नहीं रखा गया है परहैप्स सेकंड T20 मैच में उसे रखा जाएगा और इट विल बी हिस्ट्री इन द मेकिंग द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले फॉर इंडिया इन एन इंटरनेशनल मैच 15 साल का वैभव सूर्यवंशी कम से कम आज ये रिकॉर्ड तो टूटेगा नहीं Let's see what will happen. Or kal Shaun de Bas mein, we are having the second classic race jisme 11 ghore bhag lenge aur good horses umeed ki ja rahi hai that will have a great race in Shaun de Bas kal subah aur jankariyan denge in sabhi par aaj ke matchon par kal ke matchon par every detail right so abhi tak kuch ek do match dekha aapko kya lagta hai France kaun si team
1: वेल बहुत सारे जो मैं मिली हूँ बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं बोल रहे हैं कि दे वांट ब्राजील टू विन
0: ब्राजील हाँ ब्राजील के बहुत फैंस हैं
1: बहुत ज्यादा इवन मेरी बेटी भी है
0: हाँ ब्राजील ब्राजील के साथ एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो जाता है इवन ब्राजील
1: एक्चुअली आप मुझे बताए ना हूम आर यू सपोर्टिंग
0: मैंने कहा था मैंने FB में भी पोस्ट किया था दिल से ब्राजील
1: और दिमाग से
0: फ्रांस अर्जेंटीना
1: इवन आई कैन से अर्जेंटीना इज डूइंग वेल बट लेट्स सी यू नेवर नो क्योंकि ये गेम है हर मिनट में बोलते हैं ना हिस्ट्री बदल जाती है यहाँ
0: और जैसे जैसे मैच आगे होते हैं यू विल सी अब बाकी टीमें असली तेवर दिखाना शुरू कर देते हैं लाइक पोर्टुगल पहला मैच ड्रॉ किया था दूसरे मैच में बमबारी की सो एज द टूर्नामेंट गोज तब पता चलेगा जैसे अगर अर्जेंटीना को लें दे वन बोथ मैचेस लेकिन दोनों मैचों में 5 गोल लियोनेल मेसी ने स्कोर किया नाउ एक सिनेरियो अगर देखते हैं एक टीम अगर लियोनेल मेसी को एकदम ब्लॉक करे उसको खेलने का मौका न दे डू वी हैव अदर प्लेयर्स हु कैन स्कोर तो ये परम्यूटेशंस होते हैं इंग्लैंड में हम लोगों ने देखा इंग्लैंड में दे वन कन्विंसिंगली फर्स्ट मैच अगेंस्ट क्रोएशिया लेकिन फर्स्ट हाफ में मैच 2-2 हो गया था सो द डिफेंस इंग्लैंड का जो डिफेंस है कमजोर है और गाना के खिलाफ हमने देखा कि अटैक जब एक सॉलिड डिफेंस है तो उसका जो अटैकिंग लाइनअप है थोड़ा कमजोर पड़ जाता है ये बात अलग है कि गाना वाले कह रहे हैं कि हमने जादू टोना किया था इंग्लैंड पर कि वो गोल स्कोर ना करें बाकी टीमों को देखें पोर्टुगल धीरे धीरे दे आर गेटिंग टू द समम फ्रांस आज पता चलेगा ए रियल टेस्ट आज फ्रांस और नॉर्वे के बीच दोनों टीमें अच्छा फुटबॉल खेल रही हैं सो वीकेंड के बाद विल गेट अ क्लियर पिक्चर of what is expected
1: aur jo monday ko aap sab kuch dikhayenge the clear picture
0: yeah
1: thank you so much arvind ji
0: welcome
2: this magazine was brought to you by quality decor the floor expert
3: Mega promo code quality déco. Tiles 30x30. Mega deal, low tiles 60x60. CPS sales, low granite quartz.

0: tune.
1: Traffic update.
0: तो चलिए जी चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 4:50 होने को है और चलिए खेत ऑल दोस वो हिटिंग द रोड यानी दे मिस्टर एंड मिसेस ड्राइवर्स जस्ट पे अटेंशन क्योंकि ट्रैफिक अपडेट हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। सो फ्राइडे आफ्टरनून हो चुका है और वीकेंड मूड ऑफिशियली ऑन हो चुका है, ऑफिस से लोग निकल चुके हैं और इसी वजह से रोड्स पर पीक आवर ट्रैफिक शुरू हो गया है। सो ऑफकोर्स अगर आप कैपिटल से नॉर्थ या साउथ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो दोनों डायरेक्शंस में ट्रैफिक जाम बिल होना शुरू हो गया है मेरी जान, प्लीज एक्सपेक्ट लॉन्गर ट्रैवल टाइम्स। रेजवी से फिनिक्स और फिनिक्स से साउथ की तरफ भी स्लो मूविंग ट्रैफिक देखने को मिल रहा है और रोजिल और कैटरबोन की बात अगर हम करें वहां पे भी एज यूजुअल ट्रैफिक काफी स्लो है ड्यूरिंग दिस बिजी इवनिंग रश। सो गुड न्यूज ये है कि अभी तक किसी भी मेजर एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है विच इज अ गुड थिंग। सो लेट्स होप इट स्टेज दैट वे फॉर दिस फ्राइडे आफ्टरनून। और चलते चलते एक छोटी सी रिक्वेस्ट सभी ड्राइवर्स के लिए, पीक आवर में थोड़ा एक्स्ट्रा पेशेंस रखे, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, लेन डिसिप्लिन फॉलो कीजिए और मोबाइल फोन से थोड़ा दूर रखे ठीक है। और जो मोबाइल फोन है उसको थोड़ा कम यूज कीजिए और जो बगल में है उससे पूछे कि क्या मैसेजेस आए हैं आपके एंड सेफ ड्राइव करें क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है आपकी ब्यूटीफुल फैमिली। मैं हूं आपके साथ विशिंग यू अ सेफ एंड अ स्मूथ जर्नी। हैप्पी फ्राइडे एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती।

0: Radio Masti. बिल्कुल, जिसमें तो कोई शक नहीं है दैट यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड इट्स रेडियो मस्ती। चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 5:09 हो चुके हैं। वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो दैट्स योर फ्राइडे मशअप मेरी जान। बिल्कुल, जहां पे गिनीशाली कराए हैं कुछ ऐसे धमाकेदार गाने, तड़का मार के सुनाएंगे आप सभी लोगों को, मजबूर करेंगे आप लोगों को टू एंजॉय ईच एंड एवरी वाइब्स जो लेकर आए हैं फॉर दिस ब्यूटीफुल वीकेंड टू किक स्टार्ट इट टुगेदर। तो चलिए जी, फ्राइडे 26th ऑफ जून फॉर दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, आई जस्ट वांट टू विश मैजिकल बर्थडे। आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है। आई हाय मेरी जान, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, हस्बैंड एंड वाइफ। तो चलिए जी, 5499 1294, द मैजिकल नंबर जहां पे आप हमें लिख के भेज सकते हो कि व्हाट्स द प्लान फॉर द वीकेंड, कहां पे हो, कहां से साथ दे रहे हो, ऐसे मॉरिशस में हो, अच्छा नहीं बाहर हो, सात समुंदर पार से भी आप हमें अगर सुन रहे हो, सो डू लेट मी नो ऑन 5499 1294 पर। एंड इफ यू नो समवन सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे, यू जस्ट वांट टू मेक देम फील स्पेशल हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, राइट? तो चलिए, गलियों में लेके जाएंगे आपको, बॉलीवुड की गलियों में, आई मीन।
1: RM2 Radio Masti.

congratulations to you. Have a great one, my dear, and happy married life to all those who are getting married this beautiful weekend. तो चलिए जी फिलहाल के लिए let's check it out your dedications on 5499-1294 पर. Driver जी Mr. Ashmir जो अभी drive कर रहे हैं UBS bus रेजुई से माइबू जा रही है, उसे drive carefully, और आपके जितने भी passengers बैठे हैं आपके bus में, a big hi goes to everyone and especially for you conductor साहब यानी कि Mr. Bachchan के लिए. I have a beautiful message Mr. Arshad के लिए. Never forget how much I love you. अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरी जान आपकी बीवी बोल रही है. आपकी baby Rebecca is telling you that she really loves you. Hi auntie, hi beta, कैसे हो आप? Wishing you happy Friday to you, Coco. Dinesha, अरे इतना प्यार से जब आप बुलाते हैं ना, हम बड़े सेंटी हो जाते हैं, क्या करें. So the next one goes out to you, Yalesha Sham from Suriname. So thank you so much, हमारा साथ देने के लिए on our way to Radio Masti. And Vishal, the bus driver, he's moving from Goodlands to Flag. Drive carefully, G. Yeah, Gragana, aapke liye aur jitne bhi aapke passengers baithe hain aapke bus mein. Hello, G. Enjoy the ride. And किसी ने लिखा है let's rock, we've rock star Guinea. Hey, thank you so much Darren Shweta, Ravish Prisha, Lavisha Apadu families from Rochenor. तो चलिए जी बाकी जितने भी हमारे listeners साथ दे रहे हैं, जितने भी beautiful ladies drive कर रहे हैं जैसे कि पूजा, so the next one goes out to you.

DCY for you playing right now on RM2 Radio. Mercy, I just want to see you pull up, guys. Of course, it's Friday, and that's your Friday mashup happening on RM2 Radio. Mercy with me, Ganesha. बिल्कुल जी, वी've got you the magical number 5499-1294 पर, जहां पे हमेशा आप अपने दिल की बातें लिख के हमें भेजते हो, यानी कि your dedications are the most welcome. To all those who are driving, a big shout out for you guys. Drive carefully, and here we go, the next one. I just want to dedicate it for you. And I have the next song which goes out especially to everyone जो इस वक्त काम पे है. I know सभी लोग घर जा चुके हैं, और एंड यू आर फीलिंग लाइक नहीं जी मुझे भी घर पे जाना है, लेकिन डोंट वरी ना, मैं भी हूँ अभी काम पे आपका साथ देने के लिए. I've got you the best mix of music. तो चलिए जी, नमस्ते, होप यू आर कीपिंग वेल. बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम एकदम मस्त है, वंडरफुल एंड इंस्पायरिंग. थैंक यू सो मच. एक गाना हो जाए हमारी प्यारी बेटी हर्षा, शी सेलिब्रेटिंग हर 20th बर्थडे टुडे. हे हर्षा, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे स्वीटहार्ट.

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, शमेनी मो टू यू माय ब्यूटीफुल हर्ष, इट्स योर बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू यू एंड बेस्ट विशेस आपके लिए, लॉट्स ऑफ लव, हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग्स टू यू माय डियर। एंड किसी ने आपके, किसी ने लिखा है, यानी कि सत्यानंद नगुरिया ने लिखा है कि आई एम ट्रूली प्राउड दैट मेरी है जो छात्र है, दे हैव लर्नड हिंदी सो ब्यूटिफुली थ्रू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड कम्युनिकेटिंग कॉन्फिडेंटली। हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन एंड एफर्ट्स, इट्स ऑल अबाउट रेडियो मस्ती मेरी जान। सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव आपकी मम्मा आशा, डैड विमल एंड जो की सिस्टर है श्रेया एंड फैमिली, दे ऑल आर विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू। तो चलिए जी, वी डू हैव ये अगला गाना, माय स्वीट मीठी गिनी, ओए होय मेरी जान, हैप्पी टू मीट यू टुडे। हां जी, प्रोग्राम वाज फैबुलस एट मोसलमोस सेंट एंड्रे, जहां पे हम गए थे एट द कम्युनिटी सेंटर, जहां पे बहुत सारा प्यार आप लोगों ने बरसाया आज हमारे ऊपर। सो कहा आपको, काम के बाद घर चलो ना, आपने कहा तो था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम के

0: बाद और भी काम क्योंकि इतना प्यार है आप लोगों से कैसे जा सकती हूँ The Friday mashup was still on my mind So my lovely Kumar Debichanji enjoying your program and I'm playing my piano again full on volume लगा के रेडियो मस्ती को enjoy कर रही हैं So the next one goes out to you जाना मेरी जाना इतना लंबा मैसेज होई होई होई कैसे पढ़ूंगी मैं आपकी स्वीट स्वीट जो बातें आप करती होगी नहीं हम वो सुन रहे हैं सो एक रिक्वेस्ट है गाना हो जाए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए और आपकी बेटी के लिए जिसका नाम है रीमा शिस्ता जिनी टांशिनी सिल्विया और युवी खुशी सुसगन परिवार के लिए आई लव यू माई ब्यूटिफुल एंड थैंक यू सो मच आप भी साथ दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड चलिए जी वी हैव हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो गाड़ी चलाते चलाते हमारा साथ दे रहे हैं हम उनको कैसे भूल सकते हैं तो चलिए आई गोना ड्रैग यू बैक इन 1999 सो गेट रेडी टू लीव बैक योर लवली मेमोरीज
1: You're listening to a radio.

0: तो चलिए जी टाइम बीता चला जा रहा है 5:41 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू गणेश राइट नाउ। आई जस्ट रियली होप एवरीवन इज लविंग द गुड मिक्स ऑफ म्यूजिक जो लेकर आए हैं इन योर फ्राइडे मैशअप किक स्टार्ट इन दिस ब्यूटीफुल वीकेंड। गुड म्यूजिक के साथ और क्या चाहिए, बिल्कुल सुनते रहना हमें ऑन आरएनटी रेडियो मस्ती। और फिलहाल के लिए आज हम कुछ ब्यूटी टिप्स लेकर आए हैं, फैशन टिप्स लेकर आए हैं फॉर यू जेंट्स। अक्सर हम लेडीज के लिए लेकर ही आते हैं। वैसे लेडीज आप तो अच्छे ही लगते हो, लेकिन एक्चुअली गाइस को भी अच्छा दिखना है ना। शादी का सीजन है, बिल्कुल जी शादी का सीजन है, तो शादी का हीरो बनो आप, बस बाराती मत बनो भाई। विंटर वेडिंग में सिर्फ गर्म रहना ही गोल नहीं होता, स्टाइलिश भी तो लगना चाहिए। हम तो कहते हैं कि कुछ वेलवेट एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानी या क्लासी इंडो वेस्टर्न आउटफिट एकदम रॉयल वाइब देता ही है। विंटर में डीप कलर्स फुल ऑन हिट करता है, जैसे कि मरून, बॉटल ग्रीन, नेवी ब्लू, चॉकलेट ग्रे या इवन ब्लैक। अगर डे फंक्शन है तो आइवरी या पास्टल शेड्स भी मस्त लगेगा, लेकिन इट डिपेंड्स आपकी अलमारी में क्या है। लेकिन फिर भी हम तो बस इतना कहेंगे कि विंटर का टाइम है, सो डू वेयर सम डार्क कलर्स, यू गोना लुक वेरी हैंडसम एंड डैशी।
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: इट्स नॉट जस्ट अबाउट द म्यूजिक, इट्स अबाउट द फीलिंग।
3: Friday Mashup.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

हम तो चाहते हैं कि ये फ्राइडे आफ्टरनून है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, काम की टेंशन जो होते हैं काम पे ही छोड़ के चले जाइए. एक्चुअली हो सकते हैं दैट यू हैड अ बैड डे, बट आई एम हियर टू चीयर यू अप विद सम गुड गुड म्यूजिक. बोलते हैं कि संगीत के अंदर इतनी ताकत तो होती है ना कि हम आपको मजबूर कर दें मुस्कुराने के लिए. सो माय डियर लवली पीपल, जस्ट लीव एवरीथिंग बिहाइंड, इट्स फ्राइडे एंड वी आर गोइंग थ्रू दिस लवली आफ्टरनून टुगेदर एंड आई हैव गॉट यू द बेस्ट लवली गानों का सिलेक्शन. तो चलिए जी, अभी तो 5:51 हो चुके हैं, द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज बिटवीन You and me on our NTU Radio Masti. थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे समाचार, 6 बजे की समाचार, और उसके बाद we'll be back with some lovely music. तो चलिए जी, फिलहाल के लिए I've got you the next one जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर यू, ललिता जीतन जी जो रहते हैं I guess, हाँ जी वहीं से है. सो आई गे लाभ से वाला लावंचर. सो ललिता जीतन जी, ये अगला गाना आपके लिए, आप एंजॉय कर रहे हैं गर्मा गर्म चाय या कॉफी, सब कुछ हो रहा है आपके घर पे. ओल्ड सॉन्ग इज रॉकिंग इन, एंड आई एम हियर टू रॉक इट. थैंक यू सो मच जी. हे, हाउ आर यू डूइंग? नाइस टू हियर यू लव योर वॉइस, एंजॉइंग योर वंडरफुल शो. थैंक यू सो मच जी. राधा फ्रॉम कनाडा, एंजॉइंग द शो. सो द नेक्स्ट वन फॉर योर फैमिली बोथ कनाडा और मॉरिशस में है हमारे लिए, आर एंड टू लिसनर्स के लिए. एंड आई जस्ट वांट टू विश यू अ हैप्पी फ्राइडे. सो हर हर महादेव टू यू एज़ वेल. Yeshna Jaghu from Bouchon. Next one goes out for your loving husband Ashish Jaghu ke liye. Thank you so much my sweetheart, and keep on enjoying the good music. To chaliye ji, I have my next one. I just want to dedicate it specially to wish a very happy birthday to Tessa and Ava. Both are their twins. 6 saal ke ho gaye hain aaj. So congratulations and wishing you a magical birthday, my sweethearts. And best wishes coming from Ramis, our family from Balu. Enjoying your big day birthday, girl. And have a lovely birthday song unke liye. To chaliye ek khas gana ho jaye.

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, हमारे रेडियो मस्ती टीम की तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू एंड ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज। हेलो जी, इट्स योर डे, सो एंजॉय टू द मैक्स। तो चलिए जी, गुड गुड म्यूजिक लेकर हम आए हैं। एंड वेल टू ऑल दोस जो अभी बड़े ध्यान से हमारा साथ दे रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ। इट्स फ्राइडे, द वीकेंड इज हियर। तो चलिए, सिट बैक, रिलैक्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ।

0: तो चलिए जी, द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज आपके और हमारे बीच में ऑन आरएनटी रेडियो मस्ती है। 6 बजे की समाचारों के बाद फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में इट्स एग्जैक्टली 6 PM।
1: आरएनटी रेडियो मस्ती, द टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय मैकडॉनल्ड्स।
2: मैकडॉनल्ड्स आई एम लविंग इट,
1: एंड आरकेजी क्लासिक प्योर काउ घी। शेयर द टेस्ट, शेयर हैप्पीनेस।
3: रेडियो मस्ती
4: नॉर्थ South
3: 103.5,
4: East West
3: 96.4,
4: Center
3: 99.4.
5: नमस्कार, सायंकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। विपक्ष नेता जुलिस रोंगा ने यूनिवर्सल पेंशन से मींस टेस्ट हंसने के बाद बदले बजट अनुमानों का हवाला देते हुए बहस स्थगित किए जाने की मांग की। अटर्नी जनरल ने इसे निराधार बताते हुए कहा कि सेकेंड रीडिंग और कमिटी स्टेज की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। इंश्योरर्स एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के महासचिव ने बजट में सामान्य बीमा पर प्रस्तावित 5% टैक्स को मेडिकल इंश्योरेंस से बाहर रखने का आग्रह किया। उन्होंने पोर्टेबल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड पर भी अपनी राय रखी। ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला में कल पेश आए जोरदार भूकंप में मरने वालों की संख्या 235 पार कर गई। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। विपक्ष नेता जुलिस रोंगा बजट 2026-2027 पर हो रही बहसों को तब तक रोकने की मांग कर रहे हैं जब तक कि बजट के अनुमानों में बदलाव न कर लिया जाए। उन्होंने इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को सही ठहराते हुए तर्क दिया कि यूनिवर्सल पेंशन के लिए मींस टेस्ट खत्म करने के फैसले के बाद अनुमान बदल गए हैं, जबकि अटर्नी जनरल विपक्ष नेता की इस मांग को निराधार मानते हैं और दूसरी परत तथा कमिटी स्तर के बीच स्पष्ट अंतर की ओर इशारा करते हैं। औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकों के लिए पानी के टैरिफ में बदलाव लाए जाने पर अभी विचार किया जा रहा है। खेल मंत्रालय मॉरिशन डायस्पोरा से प्रतिभाएं आकर्षित करने के लिए एक नया कानून ढांचा तैयार कर रहा है। साथ ही थ्रियोले और फ्लाक में स्विमिंग पूल बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में एजेंडा में फिनटेक और डिजिटल फाइनेंस के लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी शामिल है। साथ ही इसमें बैंक ऑफ मॉरिशस कमर्शियल बैंक को प्रीशियस स्टोन्स की बिक्री तथा प्रवासियों को मॉरिशन समाज में शामिल करने से जुड़े एक नए कानून का भी प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय डायबिटीज के इलाज से जुड़ी पहल फिर से शुरू कर रहा है, जबकि अन्य मुख्य परियोजनाओं में ई हेल्थ फ्लक में ड्रग इस्तेमाल करने वालों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर और पॉम्पलेमोसिस में नए SSRN अस्पताल का निर्माण शामिल है। मंत्री अजय गणेश के अनुसार राष्ट्रीय मूल ढांचों के क्षेत्र में पश्चिम में नए

0: ऑटोवे के निर्माण से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि आएगी। उधर कृषि उद्योग मंत्रालय में श्रम शक्ति की कमी पाटने के लिए विदेशी कामगारों की भर्ती 15 जुलाई से शुरू होगी। ये थे बजट बहसों में लिए गए चंद फैसले। और अटॉर्नी जनरल दफ्तर के स्तर पर कई विधेयकों पर काम किया जा रहा है। इनमें प्रोविजनल चार्ज यानी अस्थायी आरोप खत्म करना और मानवाधिकार आयोग में सुधार करना शामिल है। राष्ट्रसभा में कल अटॉर्नी जनरल ने वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों के पक्ष में बात की। मंत्रिमंडल ने पिछले 9 दिसंबर को मेलरोज कैदखाने में कैदी एंडी सेल्मो की हुई मौत के मामले में पूर्व जज पोल्लम शांगलिन की अध्यक्षता वाले जांच आयोग की सिफारिशों का जायजा लिया। कई कमियों की तरफ संकेत किए गए हैं और प्रस्तावित सिफारिशें लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। पेश हैं कैबिनेट की बैठक में लिए गए चंद अन्य फैसले।
1: कैबिनेट ने राष्ट्रीय सभा में क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पेश किए जाने को मंजूरी दी। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार बलात्कार के मामलों में आरोपी ये दलील नहीं दे सकेगा कि घटना के समय वो पीड़िता का पति था, चाहे विवाह सिविल हो या धार्मिक। इसके अलावा घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट 2026 और उससे संबंधित नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। इसके तहत सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर के लिए आवेदन डीपीपी के पास किया जाएगा। कैबिनेट ने यह भी जानकारी दी कि यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 जो 1 जुलाई को लगाया जाने वाला था, अब 6 से 9 दिसंबर 2026 तक मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट ने जायजा लिया कि 23 जून 2026 को सऊदी अरब की मंत्रिपरिषद ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस्लामी मामलों, दावत एवं मार्गदर्शन मंत्री या उनके प्रतिनिधि को मॉरिशस के कला एवं संस्कृति मंत्रालय के साथ मस्जिदों के सहयोग संबंधी एक MOU पर चर्चा और हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की। इस प्रस्तावित समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सऊदी अरब में मॉरिशस के राजदूत और सऊदी अरब के इस्लामी मामलों, दावत और मार्गदर्शन मंत्रालय के बीच बातचीत जारी है। इसके अलावा मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी जुलाई 2026 में दो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सह मेजबानी करेगी। इनका उद्देश्य खतरनाक कचरे के अवैध सीमा पार तस्करी पर रोक लगाना तथा कर और सीमा शुल्क से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच क्षमता को मजबूत करना है। कैबिनेट ने इसका भी जायजा लिया।
0: डीपीपी दफ्तर ने इंटरमीडिएट अदालत के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के उस फैसले के खिलाफ आधिकारिक तौर पर अपील दायर की है जिसमें डॉक्टर नवीन रामगुलाम के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी गई है। ये अपील 14 आधारों पर की गई है जिसमें अदालत के कानूनी तर्क और उसके निष्कर्ष दोनों को चुनौती दी गई है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम के वकीलों को अपील के नोटिस की कॉपी मिल चुकी है। डीपीपी ने ये भी संकेत किए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई तय करने का अनुरोध करेंगे क्योंकि अपील की तेजी से समीक्षा करना न्याय के हित में होगा। इंश्योरर्स एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस ने आज एक प्रेस सम्मेलन के दौरान बजट में जनरल इंश्योरेंस पर 5% टैक्स लागू किए जाने के फैसले पर चर्चा की। संगठन के महासचिव वशिष्ठ रामखिलावन ने उम्मीद जताई कि ये नया टैक्स मेडिकल इंश्योरेंस पर लागू न हो। उन्होंने पोर्टेबल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड पर भी बात की। पेशा रिपोर्ट।
2: सामान्य बीमा पर 5% कर लगाए जाने की घोषणा के बाद इंश्योरेंस क्षेत्र में कई सवाल उठ रहे हैं। इंश्योरर्स एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के महासचिव का कहना है कि नई कर व्यवस्था से मेडिकल बीमा को छूट दी जानी चाहिए।
3: Quand tu dis mon qu'un plan pension la santé, je connais que je peux déduire une partie dans un income tax. Ça veut dire que mes gauches, je peux donner une taxe.

0: हम लोगों को बता रहे हैं कि जब कोई एक हेल्थ पेंशन प्लान लेता हो तो इसका एक भाग इनकम टैक्स में घटाया जा सकता है। एक हाथ में हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, दूसरे हाथ में हम 5% टैक्स लगा रहे हैं। स्वास्थ्य प्रणाली पेंशन प्रणाली के समान ही फंडेड होना चाहिए। इसका बड़ा हिस्सा सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से आएगा, लेकिन रकम का एक हिस्सा निजी क्षेत्र में काम करने वालों की जेब से आएगा। हम आज स्वास्थ्य क्षेत्र में करीब 35 बिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस दुर्भाग्यवश बहुत महंगा है और सबकी पहुंच में नहीं। पोर्टेबल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड पर भी बातचीत चली।
1: PRGF quand nous petit ali nous pervo ali dans NPPF mon pensée li très important qui nous maintenir l'obligation du gratuity mais de l'autre côté ça pour faire tout un employee parce que sinon li prend un gros shortfall.
0: PRGF को निकाल कर MPPF में डाल रहे हैं तो ग्रेच्युटी की अनिवार्यता बरकरार रखनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि MPPF में योगदान देने वाले एम्प्लॉयर को दुगनी रकम चुकानी पड़ जाए। यदि वो पेंशन स्कीम को बरकरार रखकर MPPF और ग्रेच्युटी फंड का भुगतान करे तो 3 गुना हुआ। CSG में 3% और 6% रकम को MPPF में शामिल किया गया है, जो अच्छा कदम है। पेंशन स्कीम वाले मात्र 4.5% का चयन कर सकते हैं और जो पेंशन स्कीम में नहीं है वे 4.5% रकम काट सकते हैं। ये हमारा प्रस्ताव है ताकि कोई असमानता ना हो।
1: êtes capable de déduire la portion qui est ramenée par ça, 4.5%. Ça, c'est ce qu'il nous proposait parce qu'il est là, il y a une fairness to all.
2: Federation of Public Sector and Other Unions ne basic retirement pension, yani universal pension, banaye rakhne ka samarthan kiya hai. आज सुबह पोर्ट लुइस में एक प्रेस सम्मेलन के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष ने बजट 2026-2027 में प्रस्तावित कई कदमों पर बात की। विजय बंधन ने सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट में प्रस्तावित सुधारों की भी आलोचना की।
0: फेडरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड अदर यूनियंस ने बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह लेने वाले स्टेज एज पेंशन के कदम का कड़ा खंडन किया। इंडिपेंडेंट पेंशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी और पेंशन के संचालन के लिए सेंट्रल पेंशंस एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की स्थापना का भी विरोध किया गया। इन संगठनों की क्या आवश्यकता है, इनका काम क्या होगा, पेंशन कैसे निर्धारित करेंगे, बजट में नहीं बल्कि अलग से ही पेंशन पर बातचीत की जानी चाहिए थी, जहां सार्वजनिक क्षेत्र और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों को साथ लाना चाहिए था। हम कोई समाधान लाते। श्रमिक संघ मात्र विरोध प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक कर्मचारियों के हित के लिए भी कार्यरत है। इसके अलावा सार्वजनिक जुटावों से संबंधित पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट पर भी चर्चा की गई।
2: 1986 में स्थापित तेहूश के रिहैब सेंटर के मुख्य रूप से नशीली दवाओं के इस्तेमाल को रोकने, लत से जूझ रहे लोगों की मदद और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के वास्ते संघर्ष किया है। ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सेंटर ने लोगों की बातें सुनने, उन्हें सहारा देने और उनके जीवन को फिर से संवारने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि किसी भी लत के पीछे न सिर्फ एक परेशान व्यक्ति बल्कि अक्सर एक ऐसा परिवार भी होता है जो खुद को बेबस महसूस करता है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, स्विट्जरलैंड और मेक्सिको की कई राहत और बचाव टीमें मदद के लिए वेनेजुएला पहुंची हैं, जहां कल पेश आए 2 सिलसिलेवार जोरदार भूकंप में मरने वालों की संख्या 235 पार कर गई है और 4,300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। कई इमारतें ढह गई हैं और मलबों से लोगों को निकालने की कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज दिन के दौरान एक महिला को मलबों तले से जिंदा निकाला गया। विस्तार विधि मासी बोरन के साथ।
0: वेनेजुएला में आई जबरदस्त भूचाल ने

ने देश को गहरे संकट में डाल दिया है। सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों घायल। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इस बीच मलबे से जिंदा निकाले गए लोगों ने इस भयावह त्रासदी के बीच उम्मीद की नई किरण जगाई है। बुधवार को वेनेजुएला में एक मिनट के भीतर 7.2

0: से अधिक घायल रहे हैं। हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान का सबसे बड़ा केंद्र उत्तरी क्षेत्र लागुआरा बना हुआ है। यहाँ बचाव दल और स्थानीय स्वयंसेवक भारी मलबे के बीच लगातार जीवित लोगों की तलाश में जुटे हैं। खबरों के अनुसार राहत अभियान के दौरान एक ध्वस्त इमारत के मलबे से एक दूध मुहे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। ये भूकंप पिछले 100 वर्षों में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक माना जा रहा है। इसके कारण बड़ी संख्या में इमारतें जमीन में ढंस गई हैं, अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है, बिजली और संचार सेवाएं बाधित हो गई हैं तथा हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। मृतकों और घायलों के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं।
1: और उधर कई अन्य यूरोपीय देशों की तरह यूके भीषण गर्मी का कहर झेल रहा है। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आज उत्तरी वेल्स और उत्तरी यूके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। कई इलाकों में बिजली की आंधियों का अनुमान भी है। आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर आज रात से हमारे इलाके पर पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज शाम ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। देर रात और कल सुबह भी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो वाली इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। कल दोपहर बाद से मौसम में सुधार आने की उम्मीद है। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:45 पर सूर्योदय, शाम को 5:40 पर सूर्यास्त होगा।

मौसम के हाल के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में लीडोविक हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। लाबोद स्ट्रीट बोआ रूज पॉम्पलेमूसेज में लाबोद स्ट्रीट बोआ रूज पॉम्पलेमूसेज में 76 साल के 76 इयर्स ओल्ड श्री मनलाल रामसौ जो आनंद बाली नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री राम सिंह रामसौ के मकान लाबोद स्ट्रीट बोआ रूज पॉम्पलेमूसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉम्पलेमूसेज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। मैडम लेलो रोजबेल में 75 साल के 75 इयर्स ओल्ड श्री मुनेश्वर रामनोहर जो ईश्वर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके पति जय श्री महेंद्र रामनोहर की मकान मैडम लेलो रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांग जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। अवेन्यू माइकल लील पाई में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड श्री कृष्णा गणेश जो माजी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके बेटे श्री आश्ले गणेश के मकान एवेन्यू माइकल लील पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। साइजिन रोड न्यू ग्रोव में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड श्रीमती गौरी गोबिन पैदाशी नाम लुफो जो जामुन

0: ती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके बेटे श्री संदेश गोबीन के मकान साजिन रोड न्यू गोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10 AM। मामबहाल रोड बुआशहरी में, मामबहाल रोड बुआशहरी में 72 साल की 72 years old श्रीमती बानुमती माताओ, श्रीमती बानुमती माताओ जो बानु नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके भाई श्री विजय माताओ के मकान मामबहाल रोड बुआशहरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10 AM। नंबर 136 शातोदो स्ट्रीट थोंगबो पोर्ट लुइस में, नंबर 136 शातोदो स्ट्रीट थोंगबो पोर्ट लुइस में 80 साल के 80 years old श्री विजय रामनाथ, श्री विजय रामनाथ जो विजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 1:30 बजे इनकी अर्थी कल दिन के 1:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती दमयंती रामनाथ के मकान नंबर 136 शातोदो स्ट्रीट थोंगबो पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 1:30 PM। कालीमाई रोड रोशनुआ में, कालीमाई रोड रोशनुआ में 63 साल के 63 years old श्री कृपाचार्य ठाकुर सिंह, श्री कृपाचार्य ठाकुर सिंह जो मितानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती देवयानी ठाकुर सिंह के मकान कालीमाई रोड रोशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10 AM। रॉयल रोड बेलवेदिया में, रॉयल रोड बेलवेदिया में 42 साल की 42 years old श्रीमती ज्योति चातुआ, श्रीमती ज्योति चातुआ पैदाइशी नाम सुकन जो करिश्मा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11:15 बजे इनकी अर्थी कल दिन के 11:15 बजे इनके पिता श्री राजेंद्र सुकन के मकान रॉयल रोड बेलवेदिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 11:15 AM। श्वाजी रोड पर्स डिफ्लैक में, श्वाजी रोड पर्स डिफ्लैक में 81 साल की 81 years old श्रीमती निराधा रामा, श्रीमती निराधा रामा पैदाशी नाम सिमोची जो डीलावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे इनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे इनकी बेटी श्रीमती सनियो बंदीप के मकान श्वाजी रोड पर्स डिफ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 2 PM। काली लेन बॉम्बू में, काली लेन बॉम्बू में 80 साल के 80 years old श्री हरिबस तूप सिंह जानकी, श्री हरिबस तूप सिंह जानकी जो दोदो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान काली लेन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहताज साहब या बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 12:00 PM। रिवर व्यू लेन वेदर में, रिवर व्यू लेन वेदर में 75 साल के 75 years old श्री राजेश्वरन पीले नलातांबी, श्री राजेश्वरन पीले नलातांबी जो इंदिरान नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे इनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती सेवा क्योंवादी नलातांबी के मकान रिवर व्यू लेन वेदन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंस्टांस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 2 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: That's in the lovely voice of Niti Mohan. जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए on RM2 Radio मस्ती फिलहाल के लिए just check your time, 6:29 हो चुके हैं. Welcome on board. Of course, it's a Friday evening with Meghnisha. Good afternoon और प्रणाम.
1: RM2 Radio मस्ती.

Well, guys, I really hope that you are loving these beautiful गानों का selections on this beautiful Friday evening. 6:38 हो चुके हैं गिनेश ऑन द माइक टू ऑल दोज ब्यूटिफुल लवली जेंट्स एंड लेडीज जो किचन में हैं. यू गाइज आर कुकिंग. हियर वी गो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू.

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती
2: क्या बात है क्या बात है मेरी चांदी तू सोना तू हीरा तू पन्ना ऐसा कोई कह दे ना तो बस जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाए और चलिए ऐसे ही हम आपको बल्ले बल्ले कराने के लिए लेकर आए हैं खूबसूरत गाने खूबसूरत का मतलब यही है कि बस रॉकिंग होना चाहिए धमाकेदार होना चाहिए फुल ऑन फ्राइडे वाइब्स होना चाहिए और साथ में कुछ ऐसे गाने होने चाहिए जिनको सुनने के बाद आपको वीकेंड का फील बस आ ही जाए वेल फ्राइडे इवनिंग है और हमने प्रॉमिस किया था कि आज अलग ही मूड के साथ आएंगे तो लो जी हम आ चुके हैं आप लोगों से मिलने के लिए ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती 7:06 हो चुके हैं कैसे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं जरूर बताइएगा कि हाउ यू आर स्पेंडिंग योर फ्राइडे इवनिंग ये तो हम जरूर जानना चाहते हैं क्योंकि बाकी दिनों की तरह आज इट्स टाइम टू ब्रेक योर रूटीन यस रात को कुछ लोग नाइट शिफ्ट करते हैं तो शायद आपका काम अभी जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपने कुछ प्लान किया हुआ है दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे बाहर कुछ लोगों ने शायद सिनेमा का प्लान भी बनाया होगा क्योंकि हर फ्राइडे को मूवी रिलीज होती है और कुछ लोग यही कह रहे हैं कि भाई देखो फाइनली फ्राइडे आ ही गया है तो नो घूमना फिरना बस घर पे खाना खा के सो जाना है और कल अलार्म सेट नहीं करना है दैट इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट इन एनीवनस लाइफ तो चलिए यहाँ पर नोइंग दैट कल आपको काम पर नहीं जाना है यही तो और यही से ही खुशी की शुरुआत होती है तो चलिए जो भी आप इस वक्त कर रहे होंगे बस सब कुछ छोड़ छाड़ के कीप एंजॉयिंग द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती एंड हम यही चाहते हैं कि अगर आप लोग इस वक्त किचन में बिजी है खाना बना रहे हैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर बहाना नहीं बनाना क्योंकि जो लोग ढूंढते हैं या तो आप बहाने ढूंढेंगे या तो आप तरीके ढूंढेंगे तो हम चाहते हैं कि आप तरीके to find some time for yourself or 7 se lekar ratri ke 9 baje tak I just want you to have some me time with us aur bas thoda sa dance kijiye and thode se music pe vibe bhi kijiye aur saath mein aapke messages ka bhi hum intezar karenge on 5499 1294 is the number jahan par aap hame messages bhi bhej sakte hain
0: filmi jam
1: OMG radio musti

0: फिल्मी जाम
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है 7:18 झलक दिखला जा अभी के लिए। तो बस आप लोग इन ऐसे गानों में खोना नहीं, क्योंकि आज प्यार में डूबने का दिन नहीं है, बल्कि कुछ अलग करने का दिन है। अलग करने का मतलब ये है कि आप अपने रूटीन को ब्रेक करो, रोज़ आप रिलैक्स करते हैं और आज थोड़ा सा घूमिए फिरिए और जानिए कि ज़िंदगी सच में बहुत ही खूबसूरत है। यू नीड टू सेलिब्रेट लाइफ एंड यू नीड टू सेलिब्रेट योरसेल्फ। तो चलिए यहाँ पर किसने हमें मैसेज भेजा है एंड अगला गाना गुज़ आउट स्पेशली फॉर यू जानी शाह, बहुत ही प्यारा सा नाम है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद रेडियो मस्ती एंड द नेक्स्ट सेट वाज गोस आउट स्पेशली फॉर विजय और साथ में आपने डेडिकेट किया हुआ है द नेक्स्ट ट्रैक फॉर योर सिस्टर एंड आपकी बहन का नाम है कृति। हे कृति, थैंक यू सो मच और बहुत ही प्यार से आपकी बहन ने आपको याद किया है एंड साथ में द नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट स्पेशली फॉर दरन, श्वेता, रवीश, प्रीशा, लवशा एंड अपादू फैमिली ऑफ होशनो, थैंक यू सो मच। एंड आप कहती हैं रेडियो मस्ती रॉक्स बिल्कुल। नेक्स्ट गाना गुजार फॉर करिश्मा, आए दिन उनके लिए मैसेजेस तो आते ही रहते हैं और चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर एंड जस्ट होप कि आपके मैसेजेस आते रहेंगे, क्योंकि वी नीड टू नो कि आप इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं। और जब आपके मैसेजेस आते हैं ना और आप कहते हैं कि मैं किचन में हूँ या फिर मैं खाना बना रही हूँ या फिर आप लोग डिनर ले रहे हैं या फिर आप हमें मैसेज भेज के ये कहते हैं कि आई एम गेटिंग रेडी, थोड़ी देर में बाहर निकलना है दोस्तों के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो मैं ऑलरेडी बाहर का सीन इमेजिन करने लग जाती हूँ एंड मुझे खुद इतनी खुशी होती है कि बस आपकी खुशियों में शामिल होने का बिल्कुल मन होता है। तो चलिए कीप सेंडिंग।

0: फिल्मी जैम
1: रेडियो मस्ती.
0: Well, don't forget, guys, we are welcoming new messages on 5499-1294. 7:35 हो चुके हैं और आज के दिन नहीं, आज की शाम, I should say, कि बहुत सारे लोग इस वक्त शायद अपना डिनर ले रहे होंगे, नॉट एट होम, मे बी आउटसाइड विद फैमिली मेम्बर्स. तो चलिए आपको बना पीछे शुभाहार. बबीता जी, आप कनेक्टेड हैं पू कुलवील से, रिक्वेस्टिंग द नेक्स्ट वन फॉर योर फैमिली मेम्बर्स. बिल्कुल बिल्कुल, अगला नाम आपका, अगला गाना आपका ही नाम हम ऐड करेंगे एंड आपके परिवार वालों के लिए. यहाँ पर स्वीट हस्बैंड अरशद के लिए, यू हैव अ स्पेशल मैसेज, यू आर स्टिल इम्पोर्टेंट टू मी, विद और विदाउट कन्वर्सेशन यू ऑलवेज इन माई हार्ट. और आप कहते हैं कि आई विल ऑलवेज लव यू सो मच फ्रॉम वाइफ रिबेका. वेल, आपने गाना मांगा है जब कोई बात बिगड़ जाए. आज के लिए तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलग ही मूड के साथ हम आज आए हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए. भाई देखिए, ऐसे गाने तो चलने चाहिए जिनको सुनने के बाद आपको भी लगे कि इट्स फ्राइडे इवनिंग, तो हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए थोड़ा सा वक्त निकालें खुद के लिए. एंड मुझे पता है कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि हम जिम ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और साल की शुरुआत से ही बहुत सारे लोगों के रेजोल्यूशंस रहे होंगे टू स्टे हेल्दी. कुछ लोगों ने मतलब आप लोगों ने कर पाया और कुछ लोग नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम हेक्टिक स्केड्यूल या फिर कुछ अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आ जाते हैं. लेकिन लेकिन यू ऑलवेज ऑलवेज नीड टू फाइंड अ वे, और वो रास्ता है टू स्टे कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती. क्योंकि यहाँ पर आए दिन आप लोगों के लिए इतने धमाकेदार रॉकिंग गाने चलते हैं, आई डोंट थिंक कि आपको टाइम नहीं मिलता है एक या दो गाने में डांस करने के लिए. ऐसे ही आपका एक्सरसाइज हो जाएगा और आपको थोड़ा खुद के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए भी मौका मिल जाएगा. सो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड वंस अगेन. कुछ और खूबसूरत गीत आप लोगों के लिए कमिंग अप योर वे एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू डांस एंड बर्न द डांस फ्लोर. फिल्मी जैम
1: RM2 रेडियो मस्ती.
0: बिल्कुल, इट्स टाइम टू इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम हाई कर लीजिए क्योंकि इट्स टाइम टू गेट द फ्राइडे वाइब्स.

0: सुन लिए आपने यूपी के बोल, आता आयका महाराष्ट्र से ढो
1: आहो।

0: फिल्मी जाम OMG रेडियो
1: मस्ती भाई देखिए हम तो बस एक ही मोटिव के साथ आते हैं एंड दैट इज कि आपके दिल को चुराने के लिए एंड ऑफ कोर्स इन गानों के साथ साथ आपके मूड को एकदम सेट करने के लिए इट्स ऑलरेडी 7:46 वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग और चल रहा है नॉनस्टॉप आप लोगों के लिए धमाकेदार गाने ऐसे ही टिल 9 PM यहां पर आप कहते हैं हाय रेडियो मस्ती टीम वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय हस्बैंड अविनाश भंजन फॉर बेटी सियाना रीतू आप है क्यूबिप से हे रीतू थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए एंड द नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली फॉर मंजू जी जो इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ एंड आप कहती हैं कि अभी तो हम सच में तैयार हो रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए वेरी नाइस टू नो मंजू जी एंड अच्छा उम्मीद करते हैं दैट यू विल बी हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स लगे हाथ आपने अगला गाना डेडिकेट किया है आपके पति के नाम आपकी दो बेटियां हैं शायद उनका नाम थोड़ा सा मिस हो गया है कोई बात नहीं मंजू जी थैंक यू सो मच हमें याद करने के लिए एंड आई जस्ट होप दैट व्हाइल ड्राइविंग आप तब भी RM2 रेडियो मस्ती के साथ कनेक्टेड रहेंगे टू हैव अ गुड गुड टाइम व्हाइल ड्राइविंग तो चलिए जितने भी सारे लोग इस वक्त शायद लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुके हैं आपको भी हम विश करेंगे हैव अ म्यूजिकल ड्राइव विद रेडियो मस्ती एंड चलिए ऐसे ही आप लोग सेफ रहें स्पेशली हर फ्राइडे आपसे हम यही कहते रहते हैं अगर आपको पता है कि आप कहीं पर इन्वाइटेड हैं आप थोड़े पार्टी करने वाले हैं एंड आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनना है डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव ये उसूल हमेशा आपको रखना ही रखना है सो चलिए हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम एंड बस चिल करिए रेडियो मस्ती के साथ
0: फिल्मी जाम
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: सावन का तो पता नहीं लेकिन विंटर सीजन में जरूर ऐसे गर्मा गर्म गाने चला रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपको बस मजा ही आ जाएगा। 8:04 हो चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम एंड इट्स द सेकंड आवर ऑफ योर फिल्मी जाम। यहाँ पर गानों का ट्रैफिक जाम तो बिल्कुल नहीं है और बाहर का

0: हमारा तो आई गेस बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी निकल चुकी हैं और आज फ्राइडे हैं तो वाई नॉट मॉल्स में रेस्टोरों में बहुत सारी जगहों पर लोग ही लोग हैं एंड पीपल आर जस्ट हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स और बस ये नज़ारा कितना खूबसूरत होता है और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइएगा. पलक झपकते ही ये संडे इवनिंग भी आ जाएगा और सब लोग यही चाहते हैं कि फ्राइडे और सैटरडे तक ही रहे एंड क्या करें, लेकिन टाइम तो चलता है और वक्त के साथ साथ सबको चलना ही पड़ता है. वेल वी हैव एक मैसेज और. नमस्ते, आई एम श्वेता हुकुम फ्रॉम बुनाकर. यू वांट टू डेडिकेट अ रोमांटिक सॉन्ग. आज के लिए रोमांटिक सॉन्ग तो नहीं चलेगा, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम फ्राइडे इवनिंग को धमाकेदार गाने चला रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि आप भी अपनी तरफ से फ्राइडे का पूरा पूरा वाइब ले सकें. So you want to dedicate the next gana for hubby Roshan from wife Rani and want to tell him that I love him so much. Husband ji, kya baat hai. Husband ko aise hi pyar karte rahiyega aur unke liye khubsurat messages aise hi bhejte rahiyega. And the next track hum zarur chalana chahenge un tamam logon ke liye jo is waqt connected hain hamare saath. Chaliye, Mauritius ka scene to hamesha hame pata hi hota hai ki kaise hota hai. But agar aap log abroad mein bhi is waqt connected hain hamare saath, do let us know ki Friday mein aap logon ka kya होता है. इवनिंग को क्या आप लोग फैमिली के साथ ही इंडोर चिल करते हैं या फिर आप भी थोड़ा घूमने जाते हैं? बस आपके मैसेजेस का हम इंतजार कर रहे हैं 5499-1294. डोंट फॉरगेट इट्स योर फिल्मी जाम जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM.
1: फिल्मी जाम
2: RM2 रेडियो मस्ती.

बिल्कुल आपका दिल ऐसे ही बेफिक्र होकर उड़ना चाहिए एंड ट्राई टू अनलिश योर विंग्स एंड गिव इट सम ब्यूटीफुल ड्रीम्स ताकि उनको भी थोड़े बहाने मिले उड़ने के लिए और सपनों को साकार करने के लिए. बिनी दयाल की आवाज़ में ब्यूटीफुल सा ये गाना गुजार टू ईच एंड एवरी वन कनेक्टेड विद अस. यहाँ पर अब रोज से ही किसी का मैसेज आया है, हाई क्या बात है, हमने तो अभी रिक्वेस्ट किया और अब रोज से आपने ऑलरेडी मैसेज भेजा ये बताने के लिए कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं. दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. और आप कहती हैं नमस्ते जी, जस्ट बैक होम फ्रॉम वर्क, वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय हस्बैंड सुदर्शन. आपका बेटा है बॉबी, बेटी है ट्विंकल. बिसेस अ फैमिली ऑफ गॉन रिट्रीट लिसनिंग फ्रॉम आयरलैंड फ्रॉम वर्षा. बिसेस हैव अ लवली वीकेंड. आपको भी थैंक यू सो मच वर्षा हमारा साथ देने के लिए. यहाँ पर आप कहती हैं हेलो दी, गुड इवनिंग, लवली सॉन्ग्स एज यूजुअल है, थैंक यू सो मच. इस सर्दी के सीजन में आप गर्मा गर्म अभी दाल पिठा खा रही है, क्या बात है, मेरे मुंह में पानी भर आया. दैट्स माय फेवरेट मील एंड चलिए आपको बना पिची. एंड द नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर योर फ्रेंड्स और आपकी जान के लिए. और साथ में आप कहती हैं कि लकी ऑदोज.

जिनके फैमिली होते हैं अपने तो अपने होते हैं. बस चलिए द वन एंड ओनली आशा जी कनेक्टेड विद RM2. तो चलिए यहाँ पर जो आपने गाना मांगा है इसको चलाने की कोशिश करेंगे. फिलहाल के लिए दिस वन गोज आउट टू ईच एंड एवरी वन कनेक्टेड विद अस. डोंट फॉरगेट इट्स योर फिल्मी जाम जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM.

0: फिल्मी जैम रेडियो
1: मस्ती। बिल्कुल बिल्कुल, मंडे टू थर्सडे लव के बारे में ही बात करते रहते हैं और आज भी हम लव के बारे में ही बात कर रहे हैं लेकिन एक अलग ही अंदाज में। वेल 8:40 हो चुके हैं अभी, शायद आप घर पर होंगे,

0: बहुत ही हट के आपका रूटीन होता है फ्राइडे इवनिंग को, तो चलिए खाना खा लेने के बाद शायद आप ड्राइव पर निकल चुके होंगे एंड कुछ लोग ऐसे ही रिलैक्स करते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं और बस कल की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ लोग शायद अर्ली मॉर्निंग काम पर जाने वाले हैं। यस, सैटरडे के दिन में भी बहुत सारे लोग काम पर जाते हैं और फ्राइडे की रात में भी बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट करते हैं। टू टू ऑल दोज वर्किंग राइट नाउ, आपको हम विश करेंगे बो कुहाज, ऐसे ही काम करते रहिए और हमें सुनते रहिए एंड विल बी हियर फॉर यू टिल 9 PM, जहां पर कुछ और धमाकेदार गीतों के साथ विल कीप यू वेल एंटरटेन्ड। सो डोंट फॉरगेट इट्स योर फिल्मी जैम, जहां पर दिव्या का साथ है।
1: Filmy Jam.
2: RM2 Radio Musti.

फिल्मी जैम OMG रेडियो मस्ती। ऑलराइटी, 8:55 होने को हैं। चलिए इसी अगले गाने के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल फॉर योर सैटरडे। ऑफकोर्स वीकेंड दस्तक दे रहा है तो वीकेंड मूड को भी सेट करने आएंगे एंड इट्स गना बी एज फ्रॉम 4 PM टिल 7 PM जहां पर हमारा और आपका साथ रहेगा। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत। हैव अ ग्रेट ग्रेट फ्राइडे इवनिंग एंड आपको वो वीकेंड। वैसे कल तो हमारी और आपकी मुलाकात तो हो ही रही है तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर। Keep smiling and bye-bye. Filmy Jam.

0: RM2 Radio Musti.
1: ऑफिस का स्ट्रेस या फिर वीकेंड की प्लानिंग, सब कुछ पॉज कर दो क्योंकि अब प्लेलिस्ट करेगी मूड को रिफ्रेश। वैसे हालचाल कैसे हैं? इन द पार्टी मूड एंड म्यूजिक्स फ्रॉम RM2।

0: भाई लाइट चाहे रूम की हो या दिल की, दोनों ऑन रहनी चाहिए। और जब बॉलीवुड का बीट साथ में हो तो लगता है कि एवरीथिंग्स लाइक अ डांस फ्लोर। सो रेडी? अगर हाँ तो शेक लेग विद द नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर हिट।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती,
1: फील द मस्ती।

यस वीकेंड फुल ऑफिशियली गियर में आ चुका है और अभी ड्राइव पर हैं फ्रेंड्स के साथ या फिर घर पर चिल कर रहे हैं। बस एक प्रॉमिस, म्यूजिक रुकेगा नहीं। इट्स गोना बी नॉनस्टॉप म्यूजिक का फ्री फ्लो, घर पर जहां पर भी हो मजे लो।

You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: sera tout.
1: RM2, Radio Mustache.

ladies and gentlemen, फिल्मी जैम और आज का ये सीन यहाँ पर खत्म नहीं होता क्योंकि अब नेक्स्ट गोना बी अनदर रॉकिंग प्लेलिस्ट बस आप ही के लिए. एंजॉय द वीकेंड, एंजॉय द टाइम. म्यूजिक हमेशा आपके साथ 24/7 RM2.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: RM2, Radio Masti.

0: ना
1: भरो इंतजार।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।